मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 41 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातःकाल सूर्य की किरण धरती का स्पर्श कर नई ऊर्जा का संदेश दे रही है। सुरम्य प्रकृति में पंछियों की चहचहाहट मन को शांति प्रदान कर रही है, मानो सुरम्य वातावरण कह रहा हो दिन की शुरुआत सुबह का समय नहीं बल्कि स्वास्थ्य का सबसे सुंदर उपहार है। तो श्रोताओं, उठिए, टहलिए, योग करिए, प्रसन्न मन से जीवन को संतुलित बनाइए, स्वस्थ सुबह को स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी बनाइए। सुबह की सुंदर बेला के साथ हम भी आ चुके हैं लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारे श्रोता रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की

0: प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में हमारे किसान भाई सुनेंगे खरीफ सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं वहां खरीफ सब्जियों की खेती कैसे करें, इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर BP शाही साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ सब्जियों की अगेती खेती करनी है तो अभी से शुरुआत कैसे करें, क्या कुछ करें किसान भाई बहन?
4: नमस्कार किसान भाई एवं बहनों, चूंकि बात होती है खरीफ फसल की, सब्जियों की कैसी फसल लें, तो जैसे ही आप देखते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी उस समय हम नर्सरी पे विशेष ध्यान देंगे कि अगेती हम नर्सरी कौन सी लें।
3: जी, तो शुरुआत करें कि खरीफ में कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती फायदेमंद होगी।
4: किसान भाइयों, खरीफ की बात होती है तो टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, अगेती फूल गोभी है, खरीफ प्याज है और हरी मिर्च है। इसके साथ साथ किसान भाई जो बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी है, करेला है, खीरा है, चिकनी तुरई है, धारीदार तुरई आती है। इसके साथ ही आप लोबिया की फसल भी हम लेते हैं
3: और उनका स्वस्थ और प्रमाणित बीज इस्तेमाल करें बुआई में। अब कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी नर्सरी

0: डालनी होगी तो उसके लिए नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव महत्वपूर्ण है।
1: हाँ किसान भाइयों, नर्सरी का स्थान का चुनाव ऐसे जगह करना चाहिए जहाँ कि हमारा जल भराव ना हो, क्योंकि जब हम नर्सरी का स्थान चुनाव करते हैं तो समतल क्यारी की अपेक्षा हम ऊपर उठी हुई क्यारियाँ बनाते
0: ऊपर
1: हैं,
0: उठी हुई
1: क्यारियाँ बनाते हैं जिससे कि हमारा उसमें पानी ना लगे, जिसमें हमारी नर्सरी ना खराब हो, ये विशेष ध्यान देना है।
0: डॉक्टर साहब, अब जहाँ नर्सरी डालनी है तो उस मिट्टी का, उस भूमि का उपचार भी करना होगा ताकि रोग दो या कीड़ा मकोड़ा न लगे।
1: नर्सरी 10 से 15 दिन पहले उसकी मृदा का सौरीकरण, सॉयल सोलराइजेशन करना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए किसान भाई जुताई करके उसमें फार्मलिन आता है 10 से 15 ml प्रति लीटर पानी में घोल तैयार कर लें, और इसकी मात्रा अगर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 4 से 5 ml 3 से 4 मीटर गहराई पे अगर आप डाल करके ऊपर से सफेद पन्नी 200 गेज की आती है, चारों तरफ से ऐसे दबा दें कि मिट्टी से कि हवा का संचार अंदर न जाए, अंदर का बाहर न जाए, जिसमें क्या होता है इसमें कीट और बीमारियां जो लगभग 1 फीट की 2 फीट की गहराई तक हमारी पूरी मर जाए। और खास बात होता है कि जैसे ही हम नर्सरी लगाते हैं उसमें खर पतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उससे भी हम निताज पा जाते हैं।
0: यानी भूमि उपचार का फायदा होगा कि रोग दो, कीड़ा मकोड़ा और खरपतवार तीनों से मुक्ति हो जाएगी।
1: जी,
0: तो नर्सरी की क्यारियां कैसे बनाएं किसान भाई बहन, उनकी साइज क्या होगी? और आपने शुरू में ही कहा कि उठी हुई क्यारियां होनी चाहिए, तो कितनी ऊंचाई की?
1: देखिए अगर हम बात करते हैं कि नर्सरी की जैसे झाड़े वाली फसल होती है उसमें समतल क्यारी बनाते हैं, और इसमें उठी हुई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पे हम इसकी क्यारी बनाए, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं, लंबाई आप आवश्यकता अनुसार रखें, फिर उसके बाद लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की एक नाली बनाए, फिर दूसरी क्यारी उठी हुई बनाए, और उसमें जो हम खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 2 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद है तो 500 ग्राम डालना चाहिए। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो 2 किलोग्राम रेत आप मिला करके उसमें करें, और चूंकि जब चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा ना रखें, जब 1 मीटर से ज्यादा रखेंगे तो किसान भाई क्या होता है जब निराई गुड़ाई करना होता है तो उसमें दिक्कतें होती हैं, हमारा नर्सरी का नुकसान होता है।
0: फिर जो भी खरीफ की सब्जियां हैं, चाहे वो नर्सरी डालना है या सीधी बुआई करनी है, तो बीज का उपचार भी करना होगा।
1: जी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बीज का उपचार हमको करना बहुत आवश्यकता है, कि अगर हम बीज की बुआई के पहले 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करके ही बुआई करें, जिससे हमारी स्वस्थ नर्सरी होगी।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 87 550 110 86 87 550 110 86 87 550 110 86।
0: डॉक्टर बीपी शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ सब्जियों की उन्नत खेती, इस बारे में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कर्म करो फल की चिंता ना करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते हुए हम शांति, सफलता और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
3: द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में धर्म रक्षार्थ पृथ्वी पर अवतरित हुए कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर नीति परक शिक्षा लोक कल्याण हेतु दी है। इस महासंग्राम में अधर्म की पराजय तथा धर्म की विजय से यह संकेत मिलता है कि धर्म का मार्ग दुष्कर होने पर भी कल्याणकारी है। धर्मानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा सदा सुरक्षित रहता है। इस धर्म के नियंता कोई मानो नहीं अपितु सर्वनियंता साक्षात परमेश्वर हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब समाज में अन्याय की अभिवृद्धि होने लगती है तब धर्म के रक्षणार्थ, सज्जनों के रक्षणार्थ तथा दुष्प्रवृत्तियों के दमनार्थ भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है जब भीष्म कृष्ण से पूछ

0: लिखते हैं कि भगवान, जब आप जानते हैं कि युद्ध से महाविनाश होने वाला है तो आपने युद्ध क्यों नहीं रुकवाया। कृष्ण को यह ज्ञान था कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होना अनिवार्य है, इसलिए कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मैं युद्ध रुकवा देता तो सर्वत्र अधर्म का साम्राज्य छा जाता और धर्म नष्ट हो जाता। कृष्ण भगवान है, वह समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यह शोभा, संपत्ति, ज्ञान और मोक्ष के साधन वैराग्य आदि गुणों से संपन्न है। उनकी वाणी लोक कल्याणकारी है, सच्चित आनंद की वर्षा करने वाली है। उन्होंने अर्जुन को सुपात्र समझकर धर्म का उपदेश दिया, जो नीति परक है, क्योंकि अर्जुन में लोभ नहीं है, वह कर्तव्य परायण है, दूसरों को संकट से उबारने के लिए स्वयं दुख सहने को तत्पर है। राजा का मुख्य धर्म लोक हित है, राष्ट्र रक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना अर्जुन का कर्तव्य था। इसलिए आत्मज्ञान परक नीति का उपदेश जगत गुरु भगवान कृष्ण ने साक्षात अर्जुन को दिया। अर्जुन चूंकि क्षत्रिय थे, इसलिए उनमें रजोगुणमयी वृत्ति होना स्वाभाविक है। उसे दूर करने के लिए युद्ध तो आवश्यक था, क्योंकि क्षत्रिय कुल में जन्मे व्यक्ति का युद्ध करना धर्म है, और उसे युद्ध भूमि में प्राण भी त्यागना पड़े तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को, जो मोहग्रस्त होकर युद्ध न करने का निर्णय ले चुका था, युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, हे परंतप, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण प्रत्येक मानव को सुकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मण नैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता से मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। जीवन में सतत कार्यों में लगे रहने से निस्वार्थ भाव का विकास हो सकता है। कर्म में तत्पर रहने से अभ्यास वशात कर्म कुशलता आएगी, कार्य कुशल होने पर गुणवत्ता दक्षता भी आएगी। इस प्रकार उत्तरोत्तर सक्रियता, कार्य कुशलता तथा सृजनशीलता से समृद्धि का द्वार अनायास खुल जाएगा। कृष्ण ने व्यक्तित्व विकास के लिए गीता में सद्गुणों का संपादन आवश्यक बताया है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जम, अर्थात निर्भयता, सत्व, शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और ऋजुता अर्थात विनम्रता, ये तत्व व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने से जैसे अर्जुन को विजयलक्ष्मी तथा युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी प्राप्त हुई, उसी प्रकार मानव को भी कार्य सफलता रूप विजयश्री तथा समृद्धि रूप राजलक्ष्मी प्राप्त होगी।
1: कृष्ण नीति, ये विषय था आज के सुविचार का। आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ, और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब हृदय में माँ अंबे का वास हो तो जीवन में किसी भी अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं। माँ की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है।

जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंप दें तो चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं सच्चा समर्पण वही है जहां भक्त अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में लीन कर दे।

0: प्रभु का सुमिरन एक अभिवादन नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और मर्यादा का संपूर्ण जीवन दर्शन है।
1: तन तंबूरा तार मन

0: जब मन में व्याकुलता हो तो प्रभु का स्मरण करें, प्रभु के चरणों में रहकर ही कर्म करें और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें।
1: श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात है,

जहाँ पर ईश्वर की छाया हो वहाँ पर प्रभु का सानिध्य मिलता है। ईश्वर अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखते हैं और भक्तजन अपनी खुशियों की प्राप्ति करते हैं। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में ईश्वर का सुमिरन करें।

नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलोहर्ट्ज़ पर। के साथ ही आप आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। अब आइए करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 206 में अपनी सेना और अयोध्या वासियों के संग आगे चलते हुए भरत का कादमगिरी पर्वत के समीप पहुंचने का प्रसंग।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्रीराम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरि पर्वत के समीप पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और शोभना पारगांवकर, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और इस समय प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: आप हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्स पर और कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतं अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च 5-दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे

0: कौशलकेन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सा जून मासस्य एकविंशति दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य त्रयोदश प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66-200 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हैं। श्रोताओं आइए सुन लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी आज की स्वास्थ्य चर्चा में। जानकारी देंगी नीना सोनकर और आज का विषय आपको बता दें, गुणकारी इलायची।
2: श्रोताओं मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी लेकिन बेहद गुणकारी मसाले के बारे में जो भारतीय रसोई में विशेष स्थान रखती है। हम बात कर रहे हैं इलायची की। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है और इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में इलायची के क्या क्या फायदे हैं और इसे हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह उपयोग कर सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें पाचन तंत्र की। इलायची में मौजूद प्राकृतिक तेल पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद करते हैं। जब भी हमें भारीपन महसूस हो या खाना ठीक से पच न रहा हो तो इलायची चबाने से पेट की गैस और अपच की समस्या में राहत मिलती है। इलायची के सेवन से गैस्ट्रिक जूस का स्राव बढ़ता है जो पाचन को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इलायची को चाय में डालकर पीने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और भूख भी बढ़ती है। मुंह की ताजगी के लिए भी इलायची एक बेहतरीन उपाय है। अगर आपको मुंह से दुर्गंध की समस्या हो रही है तो इलायची की एक दो फलियां चबाएं। इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और आपको ताजगी का एहसास दिलाता है। इलायची का ये गुण खासकर सर्दियों में बहुत काम आता है जब मुंह की सफाई में थोड़ी कमी रह जाती है। इसके अलावा ये मसूड़ों की सेहत को भी बनाए रखता है और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इलायची का उपयोग सर्दी और खांसी में भी बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर गले में खराश या खांसी की समस्या हो जाती है। इलायची में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण गले की समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। इलायची को शहद के साथ खाने से गले की खराश में आराम मिलता है और खांसी कम होती है।

0: इसके अलावा इलायची का काढ़ा भी गले को आराम देने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे दिल की सेहत की। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। सर्दियों में जब रक्तचाप बढ़ने का खतरा रहता है, इलायची का सेवन इसे संतुलित रखने में मददगार साबित होता है। इलायची का सेवन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। इलायची का उपयोग मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में भी मददगार होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने वाले तत्व होते हैं, जो मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इलायची की खुशबू तनाव और चिंता को कम करती है और मूड को बेहतर बनाती है। इसके लिए आप इलायची का उपयोग चाय में कर सकते हैं या फिर इसे सीधे चबाकर इसका आनंद ले सकते हैं। इलायची की चाय विशेष रूप से ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। इलायची का सेवन करने के विभिन्न तरीके हैं। आप इसे चाय में डाल सकते हैं, मिठाइयों में इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इसे यूं ही चबाकर भी खा सकते हैं। सर्दियों में इलायची का उपयोग दूध के साथ करने से शरीर को गर्माहट मिलती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा इलायची के पाउडर को खाने में डालकर भी इसके फायदों का लाभ उठाया जा सकता है। ये न केवल स्वाद को बढ़ाता है बल्कि भोजन को भी पाचन के लिए अधिक हल्का बनाता है। श्रोताओं, ये कहना गलत नहीं होगा कि इलायची एक छोटी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मसाले के रूप में हमारे रसोई घर में सदैव मौजूद रहती है। ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभों का आनंद उठाइए। चाहे वो पाचन हो, दिल की सेहत हो या तनाव कम करना हो, इलायची हर जगह काम आती है। श्रोताओं, आज की ये चर्चा जो हमने इलायची पर की, आपको जरूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं को जानकारी दे रही थी गुणकारी इलायची के बारे में। सुबह के 7:05 हुए हैं। आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय होगा विरासत। इस विषय पर बातचीत सुनिएगा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री से। सुबह 10:20 पर आप सुनेंगे एनडीए गवर्नमेंट के 12 साल पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से। सुबह 9:15 का समय होता है जिले की हलचल का। आज के जिले होंगे एटा और गोरखपुर। उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा हमारे मेहमान में मशहूर शायर जौहर कानपुरी से शमशुल आरफीन की गुफ्तगू। पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। आत्मनिर्भर भारत खिलौना व्यवसाय विषय पर सुनना ना भूलें अनिल कुमार सिंह की वार्ता हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान का राग अलहिया बिलावल में सरोद वादन। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का रागपुरिया कल्याण में सितार वादन। सतीश चंद श्रीवास्तव के गाय भोजपुरी लोकगीतों का आनंद आप लेंगे लोक रंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर सरस्वती देवी तिवारी की वार्ता सुनवाई जाएगी बेटी को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। खरीफ में भूमि और बीज शोधन ये विषय है डॉक्टर प्रियंका सिंह से की गई भेंट वार्ता का जिसे आप सुनेंगे।

ज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे वार्ता प्रेम के विविध रूप। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नव दृष्टि क्रम में जानकारी का विषय होगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन विषय पर सुनना ना भूलें। अदिति उमराव से की गई भेंट वार्ता लोकायतन कार्यक्रम में प्रसारण समय होगा शाम 6:30। भेंट करता होंगी ज्योति वर्मा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सुनिएगा डॉक्टर नेत्रपाल यादव से की गई भेंटवार्ता अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई गजलों का लुत्फ उठाइएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर। पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। और सदाबहार नगमों का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:30 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम हमारे श्रोता सुनते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें पूर्वाह्न 11:00 से। और आपके ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे आपके मेल आपके गीत में सुबह 8:45 पर। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की विविधा में। अच्छा बताइए, आपने कल रात खाना खाया और जो बचा वो क्या किया? कूड़ेदान में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया में हर साल अरबों से ज्यादा टन खाना सीधे कूड़े में फेंका जाता है तो, और भारत की बात करें तो हम अकेले हर साल करोड़ों टन खाना बर्बाद करते हैं, वो खाना जो किसी भूखे का पेट भर सकता था। तो आज की विविधा में बात संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी दिवस की, जो हर साल मनाया जाता है 18 जून को। साल 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, हर देश की, हर सभ्यता की पहचान है, और इसीलिए हर साल 18 जून को ये दिवस मनाने की घोषणा की गई। पहली बार ये दिवस मनाया गया 18 जून साल 2017 को। इस दिन यूनेस्को और FAO यानी यूनाइटेड नेशंस के दो बड़े संगठन मिलकर दुनिया को जागरूक करते हैं। सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र को खाने की चिंता हो जाए तो मामला कितना गंभीर है। संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर खाने के शौकीन लोगों के लिए बहुत खास है। गैस्ट्रोनॉमी का सीधा मतलब है खाने की कला। कहां से आया खाना, कैसे बना, कैसे परोसा गया, ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि खाने की तैयारी, उसकी कहानी और उसका महत्व भी है। सोचिए, हर एक व्यंजन का अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी होती है, और जब हम इसको संधारणीय तरीके से बनाते और खाते हैं तो हम धरती की रक्षा भी कर रहे होते हैं। अब इसमें जुड़ा एक शब्द सस्टेनेबल यानी टिकाऊ, मतलब ऐसा खाना जो

न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, बल्कि हमारे किसान, हमारा पर्यावरण सबके लिए अच्छा हो। दुनिया भर में ये दिन मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों को खाने के महत्व और उसकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना, भोजन की बर्बादी को रोकना। ये दिन खासकर उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो खाना बनाने और खाने के तरीके में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ नई क्रांति लाना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि पूरे विश्व में हर साल अरबों टन खाना बर्बाद होता है, और दोस्तों दुख की बात तो ये है कि जब यही खाना सड़ता है, गलता है, तो दुनिया की कुल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 8-10% निकलता है। मतलब हमारी थाली में बचा हुआ खाना जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। दूसरी तरफ न जाने कितने लोग रात को भूखे पेट ही सो जाते हैं। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है? एक तरफ थाली में खाना फेंका जा रहा है, दूसरी तरफ बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। अगर हम संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी अपनाएं तो ये बर्बादी काफी कम हो सकती है। और तो और, स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने से हमारी संस्कृति भी तो बचती है। इसीलिए ये दिन सिर्फ एक दिवस नहीं, ये एक जागरण है।

अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो खेत से थाली तक खाना कहाँ से आया? स्थानीय किसान से या हजारों किलोमीटर दूर से? जितना पास से आएगा उतना कम कार्बन फुटप्रिंट। दूसरा, हमारे देश में सैकड़ों किस्म के अनाज, दालें और सब्जियां हैं। आज हम सिर्फ चंद फसलों पर निर्भर हो गए हैं। तो दोस्तों, पुराने बीजों और देसी फसलों को बचाना भी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी है। और तीसरा है, फूड कल्चर को सम्मान दे। हर क्षेत्र का खाना उस मिट्टी की पहचान है। राजस्थान की दाल बाटी से लेकर केरल के सद्या तक ये सिर्फ खाना नहीं, विरासत है। यूनेस्को ने दुनिया के 36 शहरों को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है।

याद रखें दोस्तों, बदलाव आते हैं छोटी छोटी आदतों से। उतना ही खाना थाली में परोसें जितना हमें खाना हो। पास के किसान का उगाया हुआ सामान ही खरीदें। इससे किसान को फायदा, आपको ताजा खाना और धरती को मिलेगी राहत। मौसमी खाना सबसे सस्टेनेबल होता है। कल की दाल आज का सूप बन सकती है, बचा हुआ चावल कटलेट बन सकता है। बच्चों को सिखाएं खाने की कद्र करना, और ये पाठ स्कूल से नहीं, घर से शुरू होता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता माना जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये हमारी पुरानी संस्कृति की तरफ वापसी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर किसान की मेहनत मायने रखती है, हर बच्चे की भूख मायने रखती है, हर निवाला मायने रखता है, धरती के लिए, हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो दोस्तों, 18 जून संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी दिवस केवल स्वाद का जश्न नहीं, बल्कि धरा, संस्कृति और समाज का उत्सव भी है। आइए इस दिवस पर संकल्प लें, खाएं स्वादिष्ट और सोचें टिकाऊ। आज की विविधा में बस इतना ही। मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। आपको हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वे खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
3: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, MSME लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही कार्ययोजना शासन को भेजी जाए जिससे उन्हें इस माह के अंत तक स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर संवेदनशील है तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: ने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यों में विलंब है या जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किए हैं उनकी जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भारत के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।
1: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में बुटला गांव के पास कल एक ट्रैक्टर व ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे

0: सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कल हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों के बदौलत अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर और 3 गेंद पर 232 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के अंतर्गत कल वाराणसी में योग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत पिछली 13 जून को गंगोत्री से हुई थी। 20 जून को गंगा सागर में इसका समापन होगा। वाराणसी इस यात्रा का एक पड़ाव रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज और कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में पूर्वी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्स पर। आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ मॉर्निंग प्रोग्राम। और अब आइए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान का राग अलहिया बिलावल में सरोद वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान का राग अलहिया बिलावल में सरोद वादन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। श्रोताओं, नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति हमें। आप सभी को नमस्कार। बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति

0: ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन

0: कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: We have a huge pool of talent.
4: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
5: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द है, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका

0: ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
2: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. We have more from our correspondent.
6: President will arrive in Indore and then travel to Betul, where she is

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वजीर आजम की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वजीर आजम ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वजीर आजम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वजीर आजम एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नुमाइंदे से।
1: वजीर आजम ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क्यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का अख्ताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर रसूख को उजागर किया जाएगा। ये वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी रबते के प्रोग्राम के साथ अख्ताम पजीर होगा। वजीर आजम वसी पैमाने पर मुनद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी

0: भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की मरबूत और कसीर जहती हिकमत अमली, जिसमें मुनज़्ज़म सिक्योरिटी कार्रवाइयां, माली वसाइल की बंदिश और तेज़ रफ्तार तरक्कियाती प्रोजेक्टों का नफाज शामिल था, मुल्क को नक्सलिज्म और माओ नवाजों की दहशतगर्दी से पाक बनाने में कामयाब रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा और अब ये हदफ हासिल कर लिया गया है। गुज़श्ता बरसों में कई अहम सिक्योरिटी कार्रवाइयों ने माओ नवाजों के नेटवर्क की कमर तोड़ने में फैसला कुन किरदार अदा किया। 2022 में झारखंड के बुद्धा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन ऑक्टोपस अंजाम दिया गया, जबकि इसी साल फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के जरिए झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातिहार जिलों को नक्सलिज्म से आजाद कराया गया। इसी तरह 2022 में ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, मगरबी सिंहभूम और खूंटी जिलों में माओ नवाजों के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया गया। 2025 में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल तकरीबन 50 किलोमीटर तवील और 37 किलोमीटर चौड़े पहाड़ी इलाके में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बाकी मानदा माओ नवाज कारिंदों को शदीद नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले एक शख्स ने हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने का वादा पूरा कर दिया गया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
1: जमीनी सतह पर इस मरबूत हिकमत अमली के नतायज वाजे तौर पर सामने आए हैं। 2024 में 217 माओ नवाज हलाक किए गए, जबकि 2025 में ये तादाद बढ़कर 256 हो गई। साल 2026 में अब तक 26 माओ नवाज हलाक किए जा चुके हैं। इस दौरान कई बड़े नक्सल रहनुमा भी मारे गए। इन सिक्योरिटी इकदाम के नतीजे में नक्सल से मुतासर इलाकों में तरक्की के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ। झारखंड के जिला गुमला के रहने वाले टेम्बू ओराव ने कहा कि मोदी हुकूमत की तश्कील के बाद नक्सलिज्म बतदरीज खत्म हो गया और आज लोग अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं।
3: एक दशक पहले हमारा गांव क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के गिरफ्त में था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गाँव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है। अभी
1: आज नक्सलिज्म से पाक भारत की कहानी इस बात का सबूत है कि जमहूरियत, तरक्की और आईन ने कई दहाइयों पर मुहित तशद्दुद पर कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से अक्षित वेदियान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजश्कियान ने वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करना, अब नए हुरमुज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी माहदे के लिए 60 रोजा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मुफाहमतनामे पर ज़ाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि मुफाहमतनामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस माहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतल्लिका पाबंदियों को खत्म करने का अमल शुरू करेगा, जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोजा मुद्दत के लिए अब नए हुरमुज से तजारती जहाजों की महफूज और बिला मुआवजा आमद रफ्त को यकीनी बनाएगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
4: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, G7 इजलास में मोदी और ट्रंप की दोतरफा मुलाकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आबनाए हुरमुज का खुला रहना दुनिया के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज़ पर भी जोर दिया। सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी की तारीफ की। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल

0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, विकसित भारत के लिए रियासतों को मरकज की अच्छी हुक्मरानी की पहल को अपनाना चाहिए। इसी अखबार ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के बयान को नुमाया किया है, वजीर आजम ने मोदी ने स्वच्छता को आवामी तहरीक की शक्ल दी। रोजनामा इंकलाब ने फीफा आलमी कप से मुतालिक खबर को शाया करते हुए लिखा है, फुटबॉल के आलमी मेले में सितारे जगमगा उठे।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने 3 1-रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और समय हुआ है सुबह के 8:45 का। ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो पहला मेल है ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से विजयपाल, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश और विजय पांडे जी का है और इन्होंने संदेश भी अच्छा सा लिख भेजा है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। झुकना कमजोरी नहीं संस्कार है। बहुत ही अच्छा सा संदेश है और इसके महत्व को सभी को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी। और ये मेल है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा भाई और राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप जी ने हमें मेल भेजा है। ये हैं गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण, प्रवीण शर्मा, मुनीश, राहुल और इनके बहुत सारे साथी, इन्होंने मेल भेजा है। एक मेल है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल और जगदीश जी का, इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है और आपकी फरमाइश हम ज़रूर सुनवाएंगे। सप्रेम नमस्कार लिखा है। ये पलारी छत्तीसगढ़ से मेल है नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, पुना, कृष्णा देवांगन का और आपको कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं, इन्होंने लिखा है। 67 सेक्टर मोहाली चंडीगढ़ से मेल है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। और आप सभी की फरमाइश है शक्ति फिल्म का गीत सुनने की जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

श्रोताओं, अब जो मेल है हमने लिया है, इसे भेजने वाले श्रोता हैं बलिया उत्तर प्रदेश से फातिमा, वली, सोनम, अस्मा, डब्लू और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, और इन्होंने नमस्कार लिखा है आपको, प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से। ये हैं देवे दत्रेंगी से, भाटापारा से हैं सोनम, फातिमा और फकीर, वलीउल्लाह और सरफुद्दीन और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, इन्होंने हमें मेल भेजा है। ये हैं आपका मेल, आपके गीत कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आता है और नमस्कार भी लिखा है। ये श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू, बबीता, सुभाष, डब्बू, बब्बू और इनके बहुत सारे मित्र बंधु। और ये एक है जनकपुरी सहारनपुर से मेल है जॉन डिकेस्टो, रोजी, पर्ल, विलिस और इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है आपको भी, सुप्रभात हमारी तरफ से। और एक मेल है हमारे श्रोता हैं ये ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरा मर्शेंडे, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं हीरो फिल्म का गीत जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मनहर हुदास ने।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। बहुत ही प्यारा सा संदेश है और इसे लिख भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा जी ने, और इन्होंने हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमस्कार लिखा है। आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और ये हैं हमारे धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से मेल है निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू का, और इन्होंने नमस्कार के साथ लिखा है आपका हर दिन खुशियों भरा हो। तो बहुत बहुत अच्छा सा प्यारा सा संदेश है। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल है हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र नोखे लाल जी का, और इन्होंने गीत सुनना चाहा है आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से। और एक और मेल है हमारे ये श्रोता हैं।

लोगों ने मेल लिख भेजा है। सरगुजा मैनपॉट से हैं सोनम थापा, फातिमा, आदिबा, आसमा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। एक मेल है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम, मुस्कान, मास्टर जीवियम और सरधना मेरठ से ही मेल है आदि अंश और भाव्या का। तो आप सभी की फरमाइश पर आइए सुन लेते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हमारी जनगणना हमारा विकास।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और अब जो मेल भेजा है ये श्रोता हैं हमारे वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील, शहनाज खान और दानिश, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से इन्होंने मेल भेजा है और नमस्कार भी लिख दिया है, नमस्कार आपको भी। और बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मेल है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और इनके परिवार के और भी सदस्यों का। और ये हैं फुलई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा, इन्होंने अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है। और ये हैं, इन्होंने नमस्कार के साथ साथ लिखा है कि पानी बचाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। ये हमारे श्रोता हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, कमरुन्निशा, शबिस्ता, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। और इन सभी ने सुनना चाहा है दूसरा आदमी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। और जो इंसान आपसे नाराज़ होकर भी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो समझ लीजिए वो खुद से भी ज़्यादा आपकी केयर करता है, आपका ध्यान रखता है और आपसे प्यार करता है। ये बहुत ही प्यारा सा संदेश लिख भेजा है नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, कोमल, सियाराम, गौरपुर, बमनाखेड़ा, ज़िला हरदोई से। और इन्होंने अपनी फरमाइश का गीत भी सुनना चाहा है। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का मेल आया है और इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। और अब एक और श्रोता हैं, इन्होंने हमें लिख भेजा है, ये हैं कोथरूड महाराष्ट्र से, स्वास्तिक, देवयानी, शिक्षा, तनु, तान्या और इनके बहुत सारे मित्र बंधु। और बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य नामदेव जी का मेल है और इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। और एक हैं हमारे श्रोता, इन्होंने लिखा है, नमस्कार, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खडसे, विनोद खडसे और इनके परिवार के सदस्य। और आप सभी सुनना चाहते हैं बाजीगर फिल्म का गीत जिसे गाया है विनोद राठौर और अलका याग्निक ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से इजाजत लेने का। तो दीजिए अनुमति हमें, आपको नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एटा के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योजना के प्रथम चरण में 4 मार्गों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से राजा का रामपुर मार्ग पर 2 बसें और अमरोली रतनपुर और बिलसड़ मार्ग पर 1-1 बस चलाई जा रही है। लंबे समय से नियमित सार्वजनिक परिवहन से वंचित ग्रामीणों को इस पहल से बड़ी राहत मिली है। बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को जिला मुख्यालय के अलावा कस्बों तक पहुंचने में सुविधा होगी। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अन्य मार्गों को भी योजना से जोड़ने की मांग की है। परिवहन विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से नए मार्गों पर बस संचालन की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद के सभी 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये मेला बीते रविवार यानी 14 जून को लगाया गया। मेले में कुल 1030 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। सबसे ज्यादा संख्या त्वचा रोगियों की रही। इसके अलावा पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, गैस और कब्ज से पीड़ित मरीजों ने भी उपचार लिया। मेले में 414 पुरुष, 477 महिलाएं और 139 बच्चे पहुंचे। चिकित्सकों ने बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू जांचें भी कराई, जिसमें कोई भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण त्वचा और पेट संबंधी रोगियों की संख्या ज्यादा रही है और लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित 21 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को 7 दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करना है। जनपद में निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए शासन ने 2 बृहद गौशालाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। पहली गौशाला मारहरा क्षेत्र के रहमतपुर माफी और दूसरी सकीट के नगला हरिकिशन में बनाई जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आरपी शर्मा के अनुसार दोनों गौशालाएं 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। इनमें गौशाला शेड, पानी की व्यवस्था, भूसा, गोदाम, कार्यालय कक्ष, सोलर लाइट और सुरक्षा के लिए फेंसिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
3: एक गौशाला हमारी मरहरा ब्लॉक में रतनपुर माफी में, दूसरी गौशाला शकीर ब्लॉक के नगला हरिकिशनपुर में स्वीकृत की गई है। इसकी क्षमता 400 गोवंश की होती है। इसके अलावा भूसा गोदाम, एक ऑफिस बनता है, पानी की टंकी बनती है, उसके अलावा बाउंड्री वाल होती है। इसमें निर्माण किया जाता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आर्ष गुरुकुल एटा में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ बीते सोमवार से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में योग साधकों ने सहभागिता की। योग के प्रशिक्षकों ने

0: कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास किया। तमाम योग के आसनों के लाभ भी बताए। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी प्रभावी माध्यम है। एटा के अलीगंज में महिला सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण पहल की गई है। अलीगंज मैनपुरी मार्ग पर लगभग 3,30,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले महिला थाना भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता, सीओ राजेश कुमार मौजूद रहे। महिला थाना बनने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और न्याय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध होगा। इसी क्रम में जसरथपुर और नयागांव थाना इलाकों में 2 नई पुलिस चौकियों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने जैथरा के मानपुर गाँव में एक प्रगतिशील किसान के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन, गेंदा पुष्प उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती का अवलोकन किया।
1: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
2: 2 जून को गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआ ताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरण में चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकारें अच्छी चीजें लेकर आती हैं। उन्होंने बताया कि चिलुआ ताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआ ताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब लोग चिलुआ ताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआ ताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआ ताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहाँ पर लोग परिवार के साथ आकर आनंद के साथ घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। यहाँ न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।
3: ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है। एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है।
2: 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ से अधिक की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह धरा माँ सरयू के आंचल में है। यहाँ का नौजवान जहाँ भी गया अपनी प्रतिभा व परिश्रम का लोहा मनवाया है। एक समय बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में क्षेत्र के लोग पलायन करते थे। आजीविका के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था लेकिन अब यहाँ के नौजवान को बाहर नहीं जाना होगा, उससे यहीं रोजगार के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। अब सरकार आपके द्वारा चुने गए विधायक सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने का अवसर देने जा रहे हैं। विदेशी लोग आकर आपके यहाँ चाकरी करेंगे। सीएम ने विश्वास जताया कि विकास और विरासत की यात्रा के साथ चिल्लू पार वासी बिना रुके, डिगे, झुके, डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत गरीबों का कल्याण, विकास योजना, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाता है। उन्होंने कहा कि एक समय राम जानकी मार्ग पर आवागमन ठप था, उपचार के लिए लखनऊ जाने को मजबूर होना पड़ता था, कनेक्टिविटी रोडवेज बस व अन्य साधन तक नहीं थे, जैसे तैसे व्यवस्था चल पाती थी लेकिन आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले कोई सोचता था कि धुरियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी प्लांट लगेगा या सहजनवा का गीडा धुरिया पार में आ पाएगा। यहाँ ग्रेटर गीडा बनाने जा रहे हैं हम। अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव

0: गए हैं जिन्हें हमें उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री धुरियापार में लगने जा रही है, पावर प्लांट, आधुनिक पेंट और अत्याधुनिक डिस्टिलरी जहां मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ की दवा भी बनेगी। गोरखपुर जिले में बड़ा मंगल हर मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 16 जून को बड़े मंगल पर शहर के विभिन्न मंदिरों में बजरंगबली की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिले में योग दिवस 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर व गोरखनाथ मंदिर के में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से योग दिवस पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को योग दिवस को लेकर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में योग किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान

0: संगीत स्वर में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें, सुबह 10:20 से आज आप सुनेंगे एनडीए गवर्नमेंट के 12 साल पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाएं कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगी दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर सरस्वती देवी तिवारी की वार्ता का विषय होगा, बेटी को दहेज नहीं, शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप हमारे मेहमान में शायर जौहर कानपुरी से शम्सुल आरफीन की गुफ्तगू। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, आज का हमारा खसूसी उर्दू प्रोग्राम हमारे मेहमान है। हमारे मेहमान में आज शरीके गुफ्तगू हैं बैनुल अक़वामी शायर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब। मोहतरम, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: बहुत शुक्रिया।
1: सबसे पहले मोहतरम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जौहर कानपुरी साहब को दुनिया जानती है, लेकिन जौहर साहब का हकीकी नाम क्या है?
2: इसके पीछे एक वाकया है।
1: जी, आप जरूर बताएं, हमारे समय गौर से सुन रहे हैं आपको।
2: क्या हुआ ये कि 95 में मुशायरा था सऊदी अरब की राजधानी रियाज में,
1: जी,
2: जर्मनी हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में। जर्मनी हॉस्पिटल वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है।
1: जी,
2: कैसर साहब हैदराबाद के थे, वो कन्वीनर थे, गैबी जौनपुरी उसकी निजामत कर रहे थे। तो उन गैबी साहब ने अनाउंस किया थोड़ी देर के बाद कि साहब, जौहर कानपुरी का जो असली नाम बताएगा, एयर इंडिया की तरफ से उसे एक टिकट दिया जाएगा, कहीं से कहीं तक का भी टिकट वो ले सकता है, उसकी अपनी मर्जी पर। और 1 का टाइम दिया गया साहब। 1 पे हाल है बिल्कुल सन्नाटा रहा, कहीं से कुछ जरा सी भी आवाज नहीं, सुनगो नहीं, कुछ नहीं, यानी कि किसी को भी नाम नहीं मालूम था। आखिर में अनाउंसर ने अनाउंस किया कि साहब, नाम कोई नहीं बता पाया, तो अब जौहर कानपुरी साहब अपना खुद असली नाम बताएं और ये टिकट खुद हासिल कर ले। तो मेरा असली नाम अब्दुल वकील अंसारी।
1: अब्दुल वकील अंसारी साहब, अरे वाह।
2: और तखल्लुस मेरा है जौहर कानपुरी।
1: मोहतरम, हम ये जानना चाहेंगे कि शायरी की दुनिया से पहले के एक मरहला होता है कि आपकी जो तालीम और तरबियत, तो आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई और इसकी आखिरी मंजिल क्या थी?
2: तालीम सिलसिले का मामला ये है कि जनाब, इब्तदाई तालीम मेरी कानपुर में हुई, जो प्राइमरी की तालीम थी। उसके बाद कुछ ऐसे हालात हुए कि फिर तालीम का सिलसिला रुक गया। फिर मैंने बस यूं ही उर्दू से, जिसे मैं किसी खाने में नहीं रखता कि अदीब कर लिया, अदीब माहिर कर लिया, अदीब कामिल कर लिया, फिर मुअल्लिम कर लिया, लेकिन मैं इसे तालीम के किसी खाने में नहीं रखता। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मुताले के वजह से हूँ। हाँ, ये मुताला मेरा दिन रात का रहा है।
1: ये बहुत बड़ी बात होती है।
2: आपको ये बताऊं कि मैं बचपन से मुताले का बहुत शौकीन रहा हूं। ये उस जमाने की बात है, मैं बाबूपुरवा कानपुर में रहने वाला हूं। मेरे बचपन में वहां लाइट नहीं थी, तो हम रात में कहां पढ़ने जाएं?
1: हाँ, सही बात है।
2: बड़ा मुश्किल मरहला था, तो हम छत पे निकल जाते थे और चांद की रोशनी में पढ़ा करते थे।
1: ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, यकीन मानिए।
2: तो इस हद तक, दीवानगी की हद तक शौक था पढ़ने का, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हम किसी काली या किसी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमने ही इस तरीके से तालीम हासिल।
1: मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि तालीम के बाद और जिस चीज से आपकी पहचान बनी, यानी शेर व अदब से, शेर व शायरी से, इसका आगाज कब और कैसे हुआ?
2: देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि शायरी कहाँ से शुरू की, ये तो मुझे नहीं मालूम। कैसे शुरू की ये भी नहीं पता। हुआ ये कि बचपन में मेरी उम्र 7-8 साल की

0: गई होगी, यहाँ से याद है जो 6-7 साल की उम्र के बच्चे को याद रहती
1: है।
0: तो मुझे ये याद है कि मैं हमारे घर पे अक्सर नशिस्तें होती थी और हम शायरों की खिदमत करते थे, उनको चाय और उनके पान का इंतजाम सब करते थे। उसी में कब ये जहन में बात आ गई और ये जहन शेर मौजू करने लगा, अभी तक हमें नहीं पता
1: जी।
0: और होते होते मेरी उम्र तकरीबन 14-15 साल की हो गई
1: जी।
0: और अभी तक मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं शेर कहता हूँ। हुआ ये कि बाबूपुरवा में एक बहुत बड़े उस्ताद थे शायरी के, उस्ताद अल्लामा हक बनारसी
1: जी। जी
0: हक बनारसी साहब के बहुत शागिर्द थे
1: जी।
0: एक उनमें से शागिर्द जिनका नाम था फराज कानपुरी
1: जी,
0: वो नात गो तो नहीं नात खां थे, तो वो उनसे लिखवाते थे हक बनारसी साहब से कलाम और जलसों वगैरह में पढ़ते थे। मेरे साथ उनका उठना बैठना था, हम शाम को अक्सर उनके साथ बैठते थे। 70 की दहाई का जमाना जो था, वो आपने भी शायद बचपन का जमाना आपका होगा और आपने ये बात महसूस की होगी या देखा होगा कि जो कव्वालियां होती थी उस जमाने में वो ज्यादातर फिल्मी तर्ज पर होती थी। कव्वाल जो थे वो फिल्मी तर्ज पर कव्वालियां गाते थे और ये चीज वहां से निकल के हमारे जलसों में भी आ गई। तो अब जो नात ख्वां हजरात थे वो भी सब फिल्मी धुनों पर पढ़ते थे, नाते नबी पढ़ते थे। अब हुआ क्या कि हक बनारसी साहब के तो बहुत शागिर थे, ये जो फराज साहब थे इन्होंने एक तर्ज लाकर उनको दी हक साहब को, इस पर नात कह दीजिए। और शाम को उनका एक दूसरा शागिर्द आ गया और उसने भी वही तर्ज रख दी कि इस पर कह दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो मैं कह चुका हूँ फराज के लिए। वो बसीद हो गए कि नहीं ये तो बहुत अच्छी नात हुई है, ये मुझे दे दीजिए आप, और बसीद हो गए वो। और हुआ ये कि वो देना पड़ा
1: जी।
0: फिर वो फराज को मालूम हुई और दूसरी नात उन्होंने दी, जलसे में गए, मुकाबला हुआ
1: जी।
0: मुकाबले में वो नात जीत गई जो फराज के लिए कही थी और दी गई दूसरे को
1: जी।
0: तो फराज से वो नात जीत गई, फराज दूसरे नंबर पे आ गए। तो फराज को यहाँ से
1: बहुत बुरा लगा।
0: हाँ बुरा लगा और उनको
1: और लगना भी चाहिए।
0: तो ये वो हक साहब से नाराज हो गए
1: जी।
0: अब हक साहब से दुआ सलाम तो रही उनकी, लेकिन कलाम का लेन देन बंद कर दिया उन्होंने कि आज के बाद मैं आपका कलाम नहीं लूंगा। तो एक शाम जलसा था बाबूपुरवा में ही, अब वो जलसे में फराज कानपुरी साहब ने मुझसे ये कहा कि एक नात आप कह दीजिए और ये तर्ज दे दी मुझे फिल्मी एक। तो मैंने कह दी नात, उन्होंने वो नात जलसे में पढ़ दी। अब ये चूंकि हक साहब भी उसी महल्ले में रहते थे, उन्होंने वो नात सुनी। अब जब सवेरे हक बनारसी साहब से इनकी फराज कानपुरी की होटल में मुलाकात हुई
1: जी।
0: तो उन्होंने हक साहब ने कहा कल आप नात किसकी पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि वो वकील साहब की। तो कहने लगे कौन वकील? उन्होंने बताया कि बारी साहब के साहबजादे। अच्छा मेरे वालिद को जानते थे वो
1: जी, जी, जी।
0: अच्छा तो उन्होंने कहा शेर भी कहते हैं वो? उन्होंने कहा
1: अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ हमारे सामने ही चाहते हैं कि आप कुछ अपने अशार हमारे सामने की नजर जरूर करें
0: जी। मैं जरूर पेश करूंगा,
1: बिल्कुल
0: कुछ मुतफर्रिक अशार सुन लीजिए मेरे।
1: अता करें मोहतरम।
0: तुझसे मिलता हूँ दिल के कहने पर,
1: तुझसे मिलता हूँ दिल के कहने पर, वाह
0: तुझसे मिलता हूँ
1: दिल के कहने पर
0: जहन तो आज भी मुखालिफ है।
1: क्या बात है भाई, वाह।
0: या एक दूसरा शेर ये कि मुतमईन तू के तेरे पांव से कांटा निकला
1: जी।
0: मुतमईन तू के तेरे पांव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए।
1: वाह वाह वाह वाह वा, क्या बात है भाई, बहुत
0: मुतमईन तू के तेरे पांव से कांटा निकला,
1: बहुत ही खूब।
0: हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से
1: आजाद हुए।
0: अब अगर आप इजाजत दें तो चंद शेर बदल के सुना दूं।
1: बिल्कुल अता करें मोहतरम।
0: मतलब ये है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए,
1: जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए,
0: भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब मोहतरम।
0: ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब
1: अपना दर्द कम करने की है।
0: दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए,
1: क्या बात है।
0: ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें,
1: दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें,
0: दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वा, बहुत ही।
0: शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास।
1: वाह।
0: तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब,
0: बहुत शुक्रिया
1: मोहतरम। आपकी शायरी अक्सर मुआशरे से सवाल

0: करती नजर आती है। ऐसा क्यों? कई बार तो ये भी देखा है कि निजामत की दुनिया में जब कोई भी नाजिम आपको इनवाइट करता है, आपके नाम के आगे एक और लफ्ज जोड़ता है, इनकलाबी शायर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं,
1: जी, जी,
0: तो
1: जी, जी,
0: इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है?
1: देखिए साहब, मैं बचपन से बहुत हसास रहा हूँ
0: जी,
1: और वो मुझमें आज तक है हसासियत। और शायर होता भी ये है कि शायर समाज की आंखें होता है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है सबसे पहले शायर महसूस करता है। तो हमने जिस फतह में आँख खोली वहां पर गरीबी थी, भूख थी, फसादात थे, बेकारी थी, मजलूमियत थी
0: जी,
1: जुल्म थे, तो इन चीजों के दरमियान मेरी तरबियत हुई है। मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, महसूस किया है, खुद भी गुर्बत में बहुत गुजारा है मैंने
0: जी।
1: तो अब मैं शेर कहता हूँ तो मेरे अंदर से वो सारी चीजें खुद ब खुद आती है, मैं सोच के नहीं कहता हूँ
0: जी। जी तजुर्बात,
1: तो ये मेरे मुशाहदात, मेरे तजुर्बात या ये कि जो मुझ पर बीती
0: जी,
1: वो शायरी में ढल के आती है।
0: मोहतरम, आपकी तो मेरे ख्याल से दुनिया फैन है, लेकिन आप किसके फैन हैं और आपकी नजर में आपके पसंदीदा शायर कौन है?
1: दौरे कदीम में आप जाइएगा तो आप मीरो गालिब को नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते, उनके अलावा कोई है भी नहीं
0: मुमकिन।
1: जब तक आप मीरो गालिब का जिक्र ही करें या पढ़े नहीं, उनको समझे नहीं, तो फिर आप शायर नहीं हो सकते।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: मौजूदा दौर में आइए तो मौजूदा दौर में हमें अभी कई लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको समझना भी पड़ता है, जिनको सुनना भी होता है, और जाहिर है कि उन्हीं के फैन भी होंगे हम
0: जी।
1: मेरे पसंदीदा शोरा में फराग गोरखपुरी हैं, फैज अहमद फैज हैं, तो ये चंद लोग हैं जिनसे मैं बहुत मुतासिर।
0: अच्छा, ये भी एक बड़ी बात होती है मोहतरम, जब मुशायरे में पहुंची और कोई बड़ा शायर कलाम पढ़ रहा हो, उसके बाद कोई शायर जो छोटा मोटा हो या जैसा भी हो, तो उसको डर लगता है यार इनके बाद अब मुझे क्या ही मिलेगा। लेकिन मैंने आपको देखा है कई मुशायरे करते हुए, आपके लिए कोई टेंशन की बात होती नहीं है?
1: आप ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जिसके पीछे कोई ना कोई वाकया है मेरा।
0: बिल्कुल, मैं वही
1: जिसके पीछे कोई ना कोई वाकया है मेरा,
0: इसीलिए बात।
1: अब आपने ये बात छेड़ी है तो आप सुन लीजिए। मेरी जिंदगी का पहला ऑल इंडिया मुशायरा, उस जमाने में मैं बम्बई में रहता था
0: जी,
1: और लोकल की हैसियत से मदो किया गया था मैं
0: जी,
1: और बैरूनी शोरा में वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, सागर आजमी साहब, राहत इंदौरी साहब और बड़े बड़े मंदर भोपाली और जितने भी थे, और उसमें निजामत कर रहे थे मोहतरम अनवर जलालपुरी
0: साहब जी,
1: और मेरा पहला ऑल इंडिया मुशायरा था वो
0: जी।
1: तो मैं जाके बैठ गया स्टेज पे, फहरिस्त में मेरा नाम था और मुशायरा चल रहा है। होते होते साहब मुशायरा वहां पहुंचा जहां पर राहत इंदौरी साहब को अनाउंस कर दिया। अब राहत इंदौरी साहब का पढ़ना तो आप समझ सकते हैं कि मुशायरा क्या होगा।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: मुशायरा इधर उधर हो गया। अब जब वो पढ़ के हटे तो अनवर जलालपुरी साहब ने मेरा अनाउंस किया,
0: ये
1: मेरा ऑल इंडिया पहला मुशायरा, इतनी बड़ी टीम का मुशायरा,
0: और फिर
1: इंदौरी साहब पर लाके मारा।
0: बिल्कुल
1: हाँ। और साहब मैं आया और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो हुआ ये कि साहब राहत इंदौरी साहब के बाद मुझे वो दाद तो नहीं मिली
0: जी,
1: लेकिन मैं होड़ भी नहीं हुआ
0: जी।
1: तो फिर वहां पर मैं वहां मतलब पढ़ के और बहुत अच्छी तरीके से मैं वापस आया, मुझे पूरे मजमे ने चीख कर तो दाद नहीं दी जैसे आज देते
0: जी, जी,
1: लेकिन 10-20 लोगों ने मेरी शायरी पर दाद भी दी, और मैं आराम से पढ़ के आया तो अनवर जलालपुरी साहब का एक जुमला था, कहने लगे यार मैं तो आपको ऐसा ही समझ रहा था।
0: मोहतरम, अभी अब बैरून की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने सरजमीन हिंद में जो मुशायरे होते हैं और बैरून ममालिक में, इन दोनों मुशायरे में आपको क्या बुनियादी फर्क महसूस होता है?
1: असल में बाहर के जो मुशायरे होते हैं
0: जी,
1: उसमें जो सामेईन आते हैं वो ये मूड बना के आते हैं कि हम मुशायरा सुनने जा रहे हैं। आज का जमाना बदल गया है, आज मुशायरा लोग देखने आते हैं, उस जमाने में सुनने आते थे। तो बैरूनी मुशायरों का ये आलम आज भी है कि वहाँ लोग मुशायरा सुनने आते हैं।
0: बिल्कुल। एक यूनिक सवाल मेरे जहन में आ रहा है मोहतरम, कि अगर आप शायर ना होते
1: जी जी जी
0: तो क्या होते?
1: मेरा ख्याल है कि मैं अगर शायर ना होता तो भी शायर ही होता। समझे आप? क्योंकि मैं शायरी से पहले बचपन में मैं बिजनेस करता था, मेरे पुश्तैनी काम था, बिजनेस था मेरे, कपड़े का दुकान थी, कपड़े का कारोबार था, तो मैं भी उसी में था। एक वाकया सुन लीजिए, तो जब मैंने शायरी शुरू की थी, जिस जमाने में मैं दूसरों को कलाम लिख के दे रहा था, अभी मैं हक बनारसी साहब का शागिर्द हुआ भी नहीं था
0: जी, जी, जी।
1: तो मेरे वालिद को मालूम हुआ कि शायरी करने लगे, जब तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं शायर हूँ। तो मेरे वालिद को मालूम हुआ, मेरे वालिद ने कहा कि भाई सुना आप शायरी करने लगे? तो मैंने कहा हाँ शौक है ऐसे ही। कहने लगे सुनाओ कोई शेर। तो मैंने सुनाया, तो कहने लगे हाँ शायरी तो तुम ठीक करते हो। देखो मियां शायरी तो ठीक है, लेकिन कभी मुशायरा

0: अरे मत पढ़ना।
1: ताकीद कर दी गई।
0: अब मैं ये 84 में जब आ गया तो कानपुर में रहने लगा। कानपुर में एक जिगर, हाँ, जिगर साहब के नाम से एकेडमी, तो वहाँ उठने बैठने लगा। शोरा वहाँ बैठते थे, बेकार था। तो वहाँ एक मुशायरा, एक साहब ने कहा कि भाई मुशायरा ये है, जौहर कानपुरी, 100 रुपए मिलेंगे तो चलोगे? तो मैंने कहा यार मैं कल बताऊंगा। तो फिर मैं गया घर, मैंने अपने वालिद से कहा, मैंने कहा कि एक मुशायरा मिल रहा है, चला जाऊं? तो मेरे वालिद ने देखा कि अब तो ये बेकार घूम रहा है, तो कहने के जी जाइए। तो मैं चला गया। अब मैं उस मुशायरे में गया, तो फिर उसके बाद दूसरा मुशायरा, तीसरा मुशायरा, बनारस का मुशायरा पढ़ के जैसे ही बैठा हूँ वैसे ही मुझे घेर लिया लोगों ने। अरे साहब क्या सुना, पहली बार सुन रहे हैं आपको? हमारा कल मुशायरा घोसी में है, आप पढ़ दीजिए।
1: मतलब पैर का तिल आपका बड़ा होता गया।
0: हाँ, पढ़ देंगे। कहने क्या लेंगे? हमने कहा 400 रुपए लेंगे। और ठीक है देंगे, घोसी का मुशायरा पढ़ा तुम। घोसी वाले हटे कह के दूसरे लोग आ गए। अरे साहब क्या है वो तारीफ। और 3 दिन के बाद मेरा मुशायरा यही बनारस में है, पितर कुंडा एक जगह है वहाँ है, वो बहुत मशहूर मुशायरा था। तो वो पढ़ दीजिए आप। पढ़ देंगे, क्या लेंगे? मैं 400 लेंगे। मुझे मालूम ही नहीं था कि ज्यादा भी लेना चाहिए। तो मैंने कहा 400 लेंगे तो ठीक है। अच्छा, मैंने घोसी का मुशायरा पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं आ गया बनारस। तो मैं 2 दिन बनारस में रुक गया, और रुकने के बाद मैंने कुछ शेर कहे वहाँ, क्योंकि जो शेर मैं पढ़ चुका था। अब मैंने कहा कि यहाँ क्या पढ़ूंगा, उस जमाने में मेरे पास शायरी मुशायरी की बहुत कम थी। शायरी तो वो थी लेकिन मुशायरे की वाली नहीं थी।
1: जी, जी,
0: तो मैं 2 दिन रुक के वहाँ मैंने शेर कहे। फिर मैंने पितर कुंडे का मुशायरा पढ़ा। बस उसके बाद तो फिर मुशायरों की लाइन लग गई,
1: जौहर कानपुरी।
0: फिर तो फिर मुशायरे यूं इतने के मुझे फुर्सत नहीं। अब मैंने बीच में ये चाहा, आपके सवाल पे जवाब पे आ रहा हूँ कि आपको जो सवाल था कि अगर आप शायर न होते तो क्या होते। तो मैं आ रहा हूँ। अब मेरे पास पैसा भी आया, लेकिन मसरूफियत थी बहुत, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ काम डाल लूँ, क्योंकि मुशायरों का क्या भरोसा है, कब तक पढ़ूंगा, कब तक क्या रहेगा, कब बंद हो जाएंगे। तो मेरा एक काम होना चाहिए, बिजनेस के मुशायरे से हटूं तो वहाँ बैठ जाऊं। तो मैंने पैसा लगाकर एक कारोबार शुरू किया, दूसरों को बिठाया, वो कारोबार फेल हो। फिर उसके बाद चलता रहा, फिर चलता रहा, फिर मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी डाली, दूसरों को बिठाया,
1: वो भी
0: वो फेल हो गया। तो आखिर में मैंने अभी 4-5 साल पहले, कोविड से पहले, एक होटल डाला था, रेस्टोरेंट, जिसमें मुझे 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो भी बंद करना पड़ा, दूसरों के भरोसे में काम नहीं चला।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो मालूम ये हुआ कि अगर मैं शायर न होता तो शायर ही होता, लेकिन बाद में फिर आकर मैं शायरी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे कोई कारोबार नहीं करना है, बस सिर्फ शायरी करूंगा।
1: आपका रिस्क जो है शेर व अदब से ही जुड़ा हुआ है। मोहतरम, चलते चलते जो है कुछ और अपने मुतफर्रिक अशआर, और फिर रैपिड राउंड के बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कुछ मुतफर्रिक अशआर और हमारे सामने को सुना दे।
0: देखिए एक शेर वो सुनाता हूँ।
1: जी जी,
0: वो शेर ये है कि लाश के हाथों में कातिल अपना खंजर दे गया।
1: हाँ, लाश के हाथों में कातिल अपना खंजर दे गया।
0: लाश के हाथों में कातिल
1: अपना खंजर दे गया।
0: अपना खंजर दे गया, कत्ल का इल्जाम भी मकतूल के सर दे गया।
1: आए हाय, क्या बात है भाई, बहुत खूब।
0: कत्ल का इल्जाम भी मकतूल के, ये इब्ने सफी की देन है। ये इब्ने सफी को बहुत पढ़ते थे उस जमाने में,
1: उनके नावल जासूसी होते थे,
0: इसीलिए तो ये सब उन्हीं के नावल में था। ये शेर दे दिया कि लाश के हाथों में कातिल अपना खंजर दे गया, कत्ल का इल्जाम भी मकतूल के सर दे गया। अब कुछ शेर और सुनाता हूँ आपको। एक शेर और है कि पीछे पलट के देखना आता नहीं मुझे।
1: पीछे पलट के देखना आता नहीं मुझे।
0: पीछे पलट के देखना
1: आता नहीं मुझे।
0: मैं सर फिरी हवा नहीं पानी की धार हूँ।
1: वाह क्या बात है, मैं सर फिरी हवा नहीं पानी की धार हूँ।
0: पीछे पलट के देखना आता नहीं मुझे।
1: जी,
0: मैं सर फिरी हवा नहीं पानी की धार हूँ। एक शेर सुनिए आप।
1: जी, अता करें मतलब।
0: गम के दरियाओं मेरे दिल में बहुत उस्वत है।
1: वाह।
0: गम के दरियाओं
1: मेरे दिल में,
0: मेरे दिल में बहुत उस्वत है, मुझ में खो जाओ, समंदर की तरह हूँ मैं भी।
1: आए है, क्या बात है, बहुत
0: मुझ में खो जाओ, समंदर की तरह हूँ मैं भी।
1: जी,
0: मुझ में खो जाओ,
1: समंदर की तरह हूँ मैं भी। वाह।
0: और एक शेर और ये देख लीजिए।
1: जी,
0: के तुम भी 4 आंसू बहालो चल के उसकी लाश पर।
1: वाह, तुम भी 4 आंसू बहालो चल के उसकी लाश पर।
0: तुम भी 4 आंसू बहालो
1: चल के उसकी
0: उसकी लाश पर। ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन
1: कौन है। वाह वाह वाह वाह, बहुत
0: ये न देखो हादसे में
1: बहुत खूब
0: मरने वाला कौन है।
1: मतलब बस इसके बाद चलते चलते एक रैपिड राउंड, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपको उसको हाँ या ना या अपनी पसंद बताना है बस। और आपका पसंदीदा खाना?
0: बिना गोश्त के खाना खाना नहीं समझना।
1: गजल या नज्म?
0: मुझे दोनों अजीज हैं।
1: पसंदीदा नगमा आपका?
0: मुझे पुराने नगमे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: जी, आपकी पसंदीदा

0: क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत आइए सुनते हैं कविता कृष्णन मूर्ति और कुमार सानू की आवाज में।

0: हमका नीक लागे खेत खलिहान हो। अभी आप सुन रहे थे सतीश चंद श्रीवास्तव के स्वर में खेमटा। इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सतीश चंद श्रीवास्तव के गाये भोजपुरी लोकगीत आप सुन सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में। प्रसारण समय होगा दिन में 2:45।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें।

अभी आप सुन रहे थे ओम शांति फिल्म का गीत, जिसे गाया के ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब संपन्न होता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि एनडीए गवर्नमेंट के 12 साल पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुने

0: लगेंगे 10:20 से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप एल में ब्रिटेन ने अपने आरंभिक मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लीड्स में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
3: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
4: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। AI को सुरक्षित, तेजी से और कुशलता से लागू करने पर सत्र में श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानव मस्तिष्क के हर पहलुओं को बदलने की क्षमता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस प्रौद्योगिकी को जीवन मूल्यों, जिम्मेदार डिजाइन और सरदार शासन के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। वहीं लिथियम, निकेल और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई है। नेताओं ने AI और क्वांटम तकनीक से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के लिए भी वैश्विक तैयारी बढ़ाने का आह्वान किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AI

0: या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक रूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुँच मिलेगी।
2: We have a huge pool of talent.
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब समाचार खेल जगत के।
3: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में ग्रुप ए के मैच में भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्र दराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हरा दिया। विश्व दर्पण के लिए मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि संघर्ष जलवायु संकट और धन की कमी के कारण आने वाले महीनों में दुनिया के 13 क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार करीब 26 करोड़ 60 लाख लोग पहले ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। सूडान, दक्षिण सूडान, यमन और फलिस्तीन सबसे अधिक चिंता वाले क्षेत्रों में शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य सहायता के लिए वित्तीय सहयोग में कमी आई है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवरटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप एल में ब्रिटेन ने अपने आरंभिक मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लीड्स में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके

0: साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे, केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के दौरान मेट्रो के विस्तार से भारत के शहरी परिवहन को गति देने के प्रयास पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पिछले 12 वर्षों में भारत के शहरी परिवहन क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। वर्ष 2014 में जहां देश में सीमित शहरों तक मेट्रो नेटवर्क था, वहीं आज मेट्रो भारत के विकास और आधुनिक शहरी जीवन का प्रतीक बन चुकी है। केंद्र सरकार की नीतियों, विशेष रूप से 2017 की मेट्रो रेल नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ लिविंग के विजन में देश भर में मेट्रो परियोजनाओं को नई गति दी है। उत्तर प्रदेश इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है, जहां लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। कई अन्य शहरों में परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में मेट्रो के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार जी। आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर।
4: नमस्कार।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार अभूतपूर्व रहा है, आप इसे भारत के शहरी परिवहन में किस रूप से देखते हैं?
4: देखिए, स्मार्ट मोबिलिटी एक इंटीग्रल पार्ट है जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो शहर हैं उनको सिटी फॉर लिविंग, जो कि इकोनॉमिक्स और प्रोडक्टिविटी के ऊपर थ्राइव करे, इस प्रिंसिपल पे डेवलप करना है। तो उसके लिए माइक्रो प्लानिंग भी करनी है, वर्टिकल सिटी भी डेवलप करना है, स्पॉन सिटीज़ भी बनाने हैं, ग्रीन स्पेसेस भी क्रिएट करने हैं, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोग अपने शहरों का रीडेवलप करें और जो रोड है उनको रिक्लेम करके दोबारा से शहर बनाया जाए। उसके लिए मेट्रो जो है एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम करती रही है। आपने सही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति इस क्षेत्र में हुई है, जहां हम सिर्फ 3 मेट्रो और 350 किलोमीटर का नेटवर्क पहले हुआ करता था, आज की तारीख में करीब 1080 किलोमीटर का नेटवर्क में मेट्रो जो है 24 शहरों में चल रही हैं और करीब 970 किलोमीटर का नेटवर्क जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो चाइना के बाद और यूएसए के बाद में इंडिया में सबसे ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क आज की तारीख में हुआ है, और जिस तेज़ी से हमारे यहाँ देश में जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन है वो बन रहे हैं, तो हम शीघ्र ही यूएस को क्रॉस करके वर्ल्ड में नंबर 2 होने वाले हैं। और अभी इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि 2025-26 में बजट में करीब 3.46 बिलियन INR का प्रोविज़न किया गया था, तो इस पे थ्रस्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए पिछले कुछ टाइम में जो बैकबोन डेवलप किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि मेट्रो पॉलिसी तो केवल आधारशिला थी उस चीज़ को सुदृढ़ करने के लिए जिसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को खड़ा किया जा सके। लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग देखें और सिंपली रिकलेक्ट करें कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो मैं 4-5 चीज़ों को बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम में मेक इन इंडिया से बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट मिला है, करीब 2000 मेट्रो कार हमारे देश में बनी है, और NCM नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड देश में शुरू किया गया, QR और टिकट बेस सिस्टम जो है इस देश में लाया गया। मेट्रो पॉलिसी आने के बाद में अगला जो सुदृढ़ कदम जिसने इसको इंश्योर किया कि मेट्रो के प्रोजेक्ट जो हैं जल्दी पूरे हुए हैं, उसमें गति शक्ति का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। TOD पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की, उत्तर प्रदेश उसमें से पहला प्रदेश में से एक था जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया 2022 में। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेंचमार्किंग की गाइडलाइन निकाली गई, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, टेंडर यूनिफॉर्मली हो सके उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी भारत सरकार की तरफ से डिफाइन किए गए, जिससे कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देश में अवेलेबल है वो लार्ज स्केल पे रिप्लिकेट होकर के जल्दी से जल्दी लोगों की सेवा के लिए मेट्रो शुरू की जा सके।
3: जी, निश्चित रूप से मेट्रो देश में दूसरे नंबर पे आ जाएगी। 2017 में केंद्र सरकार की मेट्रो नीति ने बहुत बदलाव किए, वहीं प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग विजन में ये मेट्रो सिस्टम कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है?
4: इसको देखिए,

0: दो चीजें हैं, एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन से कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, कंस्ट्रक्शन में अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें उनका योगदान और उनका उत्थान दोनों निहित है। उसके बाद में आते हैं जब मेट्रो शुरू हो जाती है, तो शुरू होने के बाद में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलते हैं। केवल ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है बल्कि ईज ऑफ बिजनेस भी है। अपॉर्चुनिटीज जो अपार खुलती हैं, जहाँ पे मेट्रो के तहत एक जगह से दूसरी जगह स्टूडेंट्स जा पा रहे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो जा पा रहे हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो जा पा रहे हैं, और साथ में एक जो नया वर्ग अभी विकसित हो रहा है, जहाँ पे लोग रिटायरमेंट के बाद में कंसल्टेंट्स या दूसरी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वर्ग अभी मेट्रो की सुविधा के तहत जॉब करने जाने लग गया है। जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है, हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इनका डेफिनेटली सड़क पे प्रदूषण पे बहुत फर्क पड़ता है, बट उससे ज्यादा जो मेट्रो ने एक नया आयाम दिया हुआ है कि हमें कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में मिनिमम वेस्ट से काम करना है, बैरिकेटिंग करनी है, मार्शल लगाने हैं चौराहे पे, और एक जीरो डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, साथ में हमें एनर्जी बचानी है, और ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। वो एक कल्चर देश में आया है मेट्रो के आने के बाद में।
1: जी, निश्चित रूप से कल्चर बदला है, लेकिन भारतीय मेट्रो परियोजनाओं में स्वदेशी तकनीक का अगर बात करें तो कितना योगदान अभी हो रहा है उस?
0: भारत सरकार ने जो मेक इन इंडिया पॉलिसी को थ्रस्ट दिया, तो उसका बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। आज की तारीख में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 80% की गाइडलाइन है, और उससे बहुत ज़्यादा आगे है। केवल एक TBM को छोड़ के बाकी सारे काम देश में ही हो रहे हैं। बाकी जो मेजर सब सिस्टम है, उसमें सबसे पहले ट्रेन की बात करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी BML, एस्टम, टीटागढ़ 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। ना केवल हम देश के लिए अभी तक 2000 से ज़्यादा डब्बे बना पाए हैं, बल्कि बहुत सारे कोचेज जो हैं वो देश के बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। उसी तरीके से सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम, इन सब में 60% और 80% के बीच में मेक इन इंडिया का सक्सेस ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है।
1: जी, उत्तर प्रदेश में मेट्रो का विस्तार भी तेजी से हुआ है और कई शहरों में मेट्रो चल रही हैं और अन्य शहरों में परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, तो इस तेज रफ्तार के पीछे UPMRC की क्या रणनीति है, खासकर जो पूरे भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है उसमें 30% उत्तर प्रदेश से है, तो उसके बारे में हमें बताएं।
0: देखिए, उत्तर प्रदेश को अभी मेट्रो का स्टेट भी कहा जाने लगा है, क्योंकि किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मेट्रो उत्तर प्रदेश के शहरों में है, जहां अभी 7 शहरों में मेट्रो चल रही है। इसमें से 3 शहरों में लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो का काम चलाने का और बनाने का वो उत्तर प्रदेश मेट्रो द्वारा किया जा रहा है। और इसमें हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा थ्रस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ाने का है और बजट के अंदर काम करने का है। जब हम लोगों ने लखनऊ का प्रोजेक्ट शुरू किया था, कंप्लीट किया था, तो प्रायोरिटी सेक्शन जो है करीब 3 साल में कर पाए थे। ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्टेड मेट्रो थी। कोविड के बावजूद कानपुर में 9 किलोमीटर का सेक्शन जो है 2 साल 2 महीने में किया गया। ये अगेन फास्टेस्ट था जो हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन जब आगरा का नंबर आया, तो अंडरग्राउंड सेक्शन होने के बावजूद हम लोग 6 किलोमीटर की ट्विन टनल 11 महीने में कर पाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसके बाद पूरा सेक्शन अवार्ड करने से लेकर के खोलने तक का काम 23 महीने में किया गया, जो न केवल फास्टेस्ट इन इंडिया है बल्कि शायद फास्टेस्ट इन वर्ल्ड भी है। तो समय पे करने की कोशिश बिल्कुल होती है, चैलेंजेस इसमें बहुत है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग ग्रीन फील्ड में नहीं काम कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड में काम कर रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन दूसरा चैलेंज है, बहुत सारी क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं, और आगरा जैसी जगह में TTZ होने की वजह से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से और NMA से काफी क्लियरेंसेस ली, जो कि काफी चैलेंजिंग रहा था। लेकिन हम इस चीज पे प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो एक्सीलेंस इन अल्ट्रा मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट है, उसको हमने ONM में भी लाने की कोशिश की है, पैसेंजर सेटिस्फेक्शन में भी लाने की कोशिश की है, और टेक्निकल जो एक्सीलेंस अपनी टीम का है उस पर भी थ्रस्ट दिया है।
1: जी, आपने लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो का जिक्र किया, उन शहरों के बारे में बताएं जहां DPR अप्रूव हो चुकी है या होने वाली है, और उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आने वाले दिनों में हमें मेट्रो देखने को मिलेगी?
0: देखिए, अगर हम विजन 2047 जो स्टेट ने अपने लिए बनाया है उसकी बात करें, तो 60% ऑफ अर्बनाइजेशन के गोल के साथ में 1 ट्रिलियन इकॉनमी 2028 में लाना है, और टारगेट अगर 2047 में 6 ट्रिलियन का है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा की प्लेयर रहेगा ही रहेगा। तो अभी जो प्लानिंग है वो करीब 20 शहरों में मेट्रो को लाने की प्लानिंग हो रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1575 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क फ्यूचर में बढ़ाने की बात है। इसमें से 850 किलोमीटर का नेटवर्क केवल लखनऊ, कानपुर और आगरा में ही बढ़ाने का प्रयास है। इनमें से ज्यादातर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा चुका है, और उनकी DPR बनाने का काम प्रगति पर है। बट इस बीच में जो पहले से काम चल रहा था उसके तहत अभी

0: बरेली, झांसी और प्रयागराज, इन तीन शहरों की DPR एडवांस स्टेज में है। झांसी की सबमिट हो चुकी है, बरेली और प्रयागराज के सबमिट जल्दी ही हो जाएगी, वो फाइनल स्टेज में है। तो इन शहरों में हम लोगों को डेफिनेटली मेट्रो आने वाले समय में दिखाई देगी, लेकिन बाकी और 15 शहर हैं जिनके लिए मेट्रो की प्लानिंग आने वाले समय में की जाएगी।
1: निश्चित रूप से आने वाले समय में मेट्रो का विस्तार होगा। लखनऊ में अगर बात करें तो चारबाग से बसंत कुंज मेट्रो सेक्शन है, उससे पुराने लखनऊ की कनेक्टिविटी कितनी बदलेगी और इसका क्या व्यापक प्रभाव पड़ेगा के बारे में बताएं।
0: देखिए, अभी जो ये इलाका है वॉल्ड सिटी का, हम लोग जैसे पुराना शहर बोलते हैं, इसमें अभी बस भी अलाउड नहीं है, ऑटो टेम्पो भी मुश्किल से जाते हैं, फोर व्हीलर भी अलाउड नहीं है, इतनी कंजेस्टेड शहर की गलियां हैं। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो जब 7 स्टेशन बनेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से मेजर रीडेवलपमेंट उस एरिया का होगा और बिजनेस में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हब पुराने, अब वो चौक और अमीनाबाद में सेंटर्ड थे, जो बाद में आलमबाग और फैजाबाद रोड के ऊपर डेवलप हुए। तो अभी भी हम इन तीनों को एक ट्रायंगल के तौर पे देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी बिजनेस भी डेवलपमेंट होगा, लोगों का ट्रैवल ईज बढ़ेगा और कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्कूल कॉलेज से कनेक्टिविटी बेटर होने से वहाँ के निवासियों को भी बहुत फायदा होगा।
1: जी, ये मेट्रो परियोजनाओं की अगर बात करें, ये सिर्फ ना कि लोगों का परिवहन का एक साधन है बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी जनरेट करता है। तो उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मेट्रो से मिल रहा है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में क्या लक्ष्य रखा गया है?
0: देखिए, कंस्ट्रक्शन के टाइम में एक मेजर थ्रस्ट आता है, जिसमें कि न केवल मेट्रो के अंदर काम करने वालों की संख्या बढ़ती है, बल्कि जो कंसल्टेंट के तौर पर, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर जो लोग काम करते हैं और जो लेबर हमारे यहाँ काम करती है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट में, एक पैकेज में अमूमन 1,500 से 2,000 आदमियों को कार्य करने का मौका मिलता है। और उसके बाद में जब मेट्रो शुरू हो जाती है तो हाउसकीपिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज के अलावा बाकी जो इनडायरेक्ट वे में, जैसे एडवर्टाइजमेंट है और जो लैंड पार्सल्स हैं, उनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारी करीब 60% कमाई जो है वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में है, जो दुकानें स्टेशन पे खुली हुई हैं, जो कियोस्क खुले हुए हैं, जो शॉप्स खुली हुई हैं, या एडवर्टाइजमेंट ट्रेन के अंदर पियर के पास में स्टेशन के अंदर होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप में उन सारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोगों का अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए।
1: जी, मेट्रो की सफलता केवल ट्रैक की लंबाई से नहीं नापी जाती बल्कि यात्रियों की संख्या भी मापी जाती है, तो यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है?
0: देखिए, जो 24 मेट्रो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं वो भारत सरकार का अंडर में एक आई मेट्रो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे करीब 68 KPIs के तहत सारी मेट्रोज को कंपेयर किया जाता है। और उसमें एक क्राइटेरिया है जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन चल रही हैं या ज़्यादा लेंथ है, दूसरी मेट्रोज हैं जो Tier 2 सिटीज़ में हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, कोची, नागपुर, जयपुर की ट्रेन वगैरह वगैरह आती हैं। तो उनका जब कंपेरिजन होता है तो UP मेट्रो या तो नंबर 1 या नंबर 2 पादान पे है, चाहे हम लोग रिलायबिलिटी की बात करें या ऑपरेशन रेशियो की बात करें, नॉन फेयर टू फेयर बॉक्स में बात करें, लेकिन वही चीज़ राइडरशिप पर किलोमीटर में भी आती है। तो Tier 2 सिटीज़ में राइडरशिप में लखनऊ और कोची ऑलमोस्ट बराबर नंबर पे चल रहे हैं अभी। और राइडरशिप बढ़ाने के लिए हम लोग जो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट दिया जाता है वो दो चीज़ों पे है, एक पैसेंजर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, जिसमें हमारी 10 पॉइंट की एक स्कीम है, लेकिन उसके अलावा जो मेजर थ्रस्ट है वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए। हम करीब लास्ट ईयर हमने 302 डिफरेंट इंटरेक्शन किए, जहां हम स्कूल और कॉलेजेस, बैंक्स में जाके बताते हैं मेट्रो को करने से क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम लोग 4 पोस्ट पर डे का टारगेट रखा है, जो हम लोग पूरा करते हैं। FM पे भी हम लोग इस तरह से पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी में और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भारत सरकार ने जब हमको बेस्ट मेट्रो फॉर पैसेंजर सेटिस्फेक्शन का अवार्ड दिया और बाद में बेस्ट मेट्रो फॉर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का भी अवार्ड मिला अमंग दोज 24 मेट्रोज, तो थ्रस्ट हमारा यहाँ कहीं ना कहीं ये था कि हम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के साथ में कनेक्टिविटी ऐसे बनाएं कि तुरंत पास से पास में कनेक्शन हो। पैरेलली बसेस कर और रूट रैशनलाइज करना, प्राइवेट बसेस को जो है फीडर के तौर पर लेके आना, और अभी जो थ्रस्ट चल रहा है वो शहर में जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, खासकर ऐप बेस्ड इंटीग्रेटर को लेके आना। तो हमारा ओला, उबर, रैपिडो, UMT एंड एजिनो, अभी भारत टैक्सी के साथ में भी MOU फाइनल लेवल पे है, तो इन सब लोगों के साथ में करके MOU हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक रीजनेबल रेट पे ये सर्विसेज मेट्रो के अंदर एज ए लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। शटल सर्विसेज हम लोगों ने अभी शुरू की है लेडीज के लिए, पहली बार लेडी ड्राइवर के द्वारा एक EV 2 व्हीलर EV के द्वारा एक सर्विस शुरू की गई है, जिसका माई दीदी ऐप के थ्रू है। ये फर्स्ट तरह की सर्विस है इस प्रदेश में, जहाँ

0: मेट्रो स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर तक आप 2 व्हीलर पे एक लेडी ड्राइवर छोड़ करके आएंगी।
1: जी, आपने यूपीएमआरसी को भी मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन जो अवार्ड मिला उसका जिक्र किया, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसके पीछे प्रमुख क्या प्रयास रहे जिसकी वजह से ये अवार्ड मिला और ये किस चीज के लिए मिला।
0: देखिए, कोशिश ये रहती है कि जो लोड पॉइंट्स हैं, जो मेजर कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ तो बिल्कुल नोन है, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टेशन, इन सबको इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि हम एक बेहतर तरीके से इन दोनों के बीच में पैसेंजर का आदान प्रदान हो सके। लखनऊ में हम लोग चारबाग स्टेशन की अगर बात करें तो छोटी लाइन के बिल्कुल सामने हमारा स्टेशन की एंट्री है, विजिबिलिटी है कि आप निकल करके मेट्रो स्टेशन पे आ सकते हैं। बल्कि अगले स्टेशन पे, चूंकि टर्मिनल स्टेशन है, अगले स्टेशन पे हमने ये भी सुविधा प्रदान की थी कि रेलवे के फुटओवर ब्रिज का कनेक्शन हमारी मेट्रो से किया गया, और फिर उसके बाद में रेलवे ने भी हर लाइन पे जो है लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा प्रदान की, जैसे हम लोगों ने लगाया था। हमने प्लेटफॉर्म का टिकट काउंटर भी अपने स्टेशन पे प्रोवाइड किया। उसी तरीके से जो लखनऊ एयरपोर्ट है उससे कनेक्शन, जो पुराना वाला टर्मिनल था उसमें हम लोग महज 92 मीटर दूर थे अराइवल से, अभी हम करीब 127 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। ये सबसे कम डिस्टेंस वाला मेट्रो स्टेशन है जो किसी भी एयरपोर्ट के साथ में कनेक्टेड है। तो इस तरह के कई प्रयोग किए गए। इसी तरीके से हम लोग अगर लोड सेंटर की बात करें तो आलमबाग बस स्टेशन न केवल हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है बल्कि महज 20 मीटर लंबा एक फुटओवर ब्रिज से वहां का जो मॉल है वो भी हमसे कनेक्टेड है। तो लोड पॉइंट भी कनेक्शन करने की बातें हम लोगों ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की हैं, और शायद इसीलिए भारत सरकार ने इस मॉडल को रिप्लिकेट करने के लिए, बाकी मेट्रोस को प्रोत्साहित करने के लिए हमको पुरस्कृत किया था।
1: जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी आपने अभी जिक्र किया, तो युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, खासकर जो ऐसे यात्री हैं, उनके लिए क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो को अपनाएं?
0: हमारे यहाँ करीब 37% स्टूडेंट्स आते हैं और करीब 32% लेडीज आती हैं। तो जेंडर इक्वलिटी और जेंडर वुमेन सेफ्टी, ये दो एक बहुत बड़े की फैक्टर है। करीब 22% हमारे यहाँ फीमेल काम करती हैं और ट्रेन ऑपरेटर में करीब 25% है, और जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे मेंटेनर्स का लेवल है उसमें करीब 26% महिलाएं काम करती हैं, ऑलमोस्ट 1/4। तो जब पैसेंजर सेटिस्फेक्शन की बात आती है तो हमारा जो 10 पॉइंट का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें हमने बिकॉज वी केयर करके एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, हाउसकीपिंग वाले, सिक्योरिटी वाले, उनको पुरस्कृत करते हैं। जो टिकट काउंटर है वो भी SBI और SDFC चलाता है हमारे यहाँ, उनको भी पुरस्कृत करते हैं हर महीने। और जो स्कीम है जैसे सेलिब्रेशन ऑन व्हील, बर्थडे और किटी पार्टी हम लोग सेलिब्रेट करने का अलाउ करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। शो योर टैलेंट प्रोग्राम हमारा काफ़ी सक्सेसफुल है, जहाँ पे म्यूजिक, ड्रामा, या आप अपना आर्ट कुछ बजाते हैं, कुछ सुना सकते हैं, गाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं हम। बल्कि अब इंस्ट्रूमेंट भी हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, ड्रम, म्यूजिक, गिटार, लाउड स्पीकर, स्पीकर सब हमारी तरफ से, मंच भी हमारी तरफ से, आप आइए बस परफॉर्म करिए। बुक एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, हमारे पास हर दूसरे स्टेशन पे कोई ना कोई बड़ा रेस्टोरेंट है। लखनऊ की बात करें 23 स्टेशन पे करीब 37 सीटिंग पॉइंट है, तो पैसेंजर्स को अवार्ड देते हैं। हैंडी केयर स्कीम में हम अकेली मेट्रो है जहाँ पर डिफरेंटली एबल पर्सन को एक व्हील चेयर, अगर वो हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो हम उनके स्टेशन के नीचे ही मिल जाते हैं लिफ्ट के पास में, और उनको जहां तक गंतव्य स्थान तक जाना है वहां तक छोड़ के भी जा, ऑफकोर्स वो अपने आप भी जा सकते हैं। उस तरीके से बनाया गया है पूरा सिस्टम कि वो अपने आप ग्राउंड से, रोड से आकर के लिफ्ट में चढ़ करके और ट्रेन तक जा सकते हैं और ट्रेन में नॉमिनेटेड प्लेस से ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो एक यूनिक स्कीम है। उसके अलावा हम लोग बिजनेस प्रमोशन कार्ड के थ्रू ग्रो योर बिजनेस का भी काम करते हैं। लर्निंग विद मेट्रो में स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के बच्चों को ना केवल वहाँ जाके बताते हैं बल्कि उनको अपने यहाँ बुला करके भी काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारी एग्जीबिशन लगाते हैं। तो ऐसे करीब 10 प्रोग्राम हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और शायद इसी की वजह से कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट की है वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल की। तो हमारे पोर्टल के थ्रू, हम ईमेल के थ्रू या पेपर पे हमारे स्टेशन कंट्रोलर को भी अपना ग्रीवेंस दे सकते हैं, तो वो और उसका रिप्लाई हम लोग फर्स्ट एंड रिप्लाई जो है वो 24 घंटे के अंदर देना है। कोशिश रहती है कि 48 घंटे के अंदर इश्यूज़ को क्लोज कर सकें। जिसमें कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग कुछ करनी है उसमें 15 दिन या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत सक्सेसफुल रही हैं जिसकी वजह से शायद लोगों का हम पे ऊपर भरोसा बढ़ा है। लेकिन जो बेसिक कोर एक्टिविटी है वो है शायद रिलायबिलिटी की। तो स्टेशन पे जो क्लीनिनेस है, जो सेफ्टी है, रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट 99.97% की है, और हमारी एक ट्रेन लेट मानी जाती है अगर वो 59 सेकंड से ज़्यादा लेट हो जाती है, अगर वो 1 मिनट लेट हो जाती है तो ट्रेन लेट मानी जाती है। तो उसके बावजूद हम लोग 99.97% रिलायबिलिटी ला पाते हैं, पंक्चुअलिटी ला पाते हैं। एक स्टेशन पे करीब 60 से 80 CCTV लगे हुए हैं जिनकी एक कॉमन कंट्रोल सेंटर में यूपी पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग होती है, हम लोग भी मॉनिटर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेफ है, CCTV कैमरे भी लिफ्ट के अंदर लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारे आयाम हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद भी देखते हैं

0: जब ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आजकल ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो राइडरशिप अपने आप ही बढ़ती है।
1: जी जी, निश्चित रूप से बहुत सारी सुविधाएं आपने यात्रियों के लिए की हैं, मतलब लेकिन तकनीक जैसे बदल रही है, AI, डेटा एनालिटिक्स, ऐसे में स्मार्ट टिकटिंग भविष्य को लेकर के, स्मार्ट टिकटिंग को लेकर के मेट्रो सिस्टम कैसे बदलने के लिए आप तैयार हैं और किस तरह से जो नई तकनीक है उसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं?
0: देखिए, भारत सरकार ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लेकर के, और हमें गर्व है कि हम एक पहले मेट्रो थे 2023 में जब ये कानपुर में शुरू किया गया था, पुणे और कानपुर में ऑलमोस्ट साथ साथ ही ये शुरू हुआ था। और इस कार्ड को अभी करीब 36 बैंक ये कार्ड इशू करते हैं, और आप इससे जहाँ जहाँ ये सुविधा मेट्रो में उपलब्ध है, जैसे हमारे तीनों शहरों में उपलब्ध है, लखनऊ, कानपुर, आगरा में, आप उस कार्ड को लेकर के न केवल हमारे यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, जो कार्ड आपने लखनऊ में लिया या कानपुर में लिया, आगरा में लिया, वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सफल प्रयोग रहा है। इसके अलावा ई टिकटिंग में QR बेस्ड टिकटिंग का प्रयोग सभी लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। लखनऊ, कानपुर, आगरा तीनों जगह पर ये सुविधा अवेलेबल है। हम किसी भी ई वॉलेट से, चाहे वो UPI हो या बाकी जो ई वॉलेट्स हैं, उनसे आप टिकट मोबाइल पे इशू हो सकता है। नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जिस चीज़ से चाहें वो कार्ड उससे जो है टिकट इशू हो सकता है। और अब उसके एक स्टेप और आगे जाने की तैयारी है, वो है जहां पर हम ONDC के साथ में इसको इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रयोग अभी 3-4 मेट्रो ने अभी कर भी लिया है, धीरे धीरे हम वहां पे आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर जितने भी बिजनेस के पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे कल को आप ये टिकट जोमेटो, उबर, ओला के प्लेटफॉर्म से भी क्रिएट कर सकते, अभी व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, तो ये एक नई दिशा देने वाला है। जबकि बहुत सारे पोर्टल, आप जहां से खाना मंगाते हैं वहां से टिकट भी बुक कर सकते हैं, जहां से टैक्सी बुक करते हैं वहां से ट्रेन भी बुक कर सकते हैं। तो आने वाले समय में सब ये परिवर्तन बहुत तेजी से सभी मेट्रोज में हो रहा है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा।
1: निश्चित रूप से बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन है। आपने कई मंचों पर सस्टेनेबिलिटी को UPMRC का मुख्य फोकस बताया है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि इस बारे में क्या कर रहे हैं आप?
0: जब हमने ये मेट्रो शुरू की थी, UP मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो पहले LMRC हुआ करता था, तो पहला थ्रस्ट ये था कि हमको जो इस देश का IGBT की प्लैटिनम रेटिंग है, जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा बड़ी रेटिंग है, उसको हमें प्लान करना। ये बहुत टफ काम था, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी वेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करते हुए बहुत सारे फीचर डिजाइन में भी डालने थे, जिससे कि हम लोग प्लैटिनम रेटिंग ले पाए। और हम पहले मेट्रो बने इस देश में जहां पे 100% स्टेशंस पे हमने आज तक IGBT का प्लैटिनम रेटिंग लेके आए हैं। बाकी मेट्रोज में उस टाइम तक जब हमने शुरू किया था 16, तो कहीं 4 मेट्रो स्टेशन, कहीं 10 स्टेशन थे, बट हमने 100% से शुरुआत की। इसके अलावा अभी आई मेट्रो के डेटा के हिसाब से हम मेट्रो की ट्रेन चलाने के लिए और स्टेशन पे एयर कंडीशनिंग करने के लिए सबसे कम बिजली कंज्यूम करते हैं। हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है, और शायद ये रीजन है कि हमें 3 बार मिनिस्ट्री ऑफ पावर से एनर्जी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए अवार्ड मिला है। हमारे 100% LED यूज करते हैं, सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रस्ट है, 0 डिस्चार्ज फैसिलिटी के साथ में हम लोगों ने अपने स्टेशन और खासकर डिपो को बनाया हुआ है, वहां से बाहर कुछ भी सीवेज और रॉयल वगैरह कुछ नहीं जाता है। इसीलिए ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड भी हम लोग को 2020 में मिला था। ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ा ट्राय, जहां पर बड़े जो पेड़ है उनको क्रेन से उखाड़ करके उठा करके विद 92% ऑफ सर्वाइवल रेट हम लोग 500 से ज्यादा पेड़ों को शिफ्ट किया है। लेकिन फोकस जो है वो कहीं ना कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी रहा है। जैसे हर दूसरे खंबे के ऊपर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी दी है। अभी हम लखनऊ, कानपुर, आगरा में करीब 55 लाख लीटर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर साल करते हैं, और ट्रेन भी जो है हमारा ब्रेकिंग करने के टाइम में रेगुलेशन एनर्जी जनरेट करती है, तो वो भी हमारा परसेंटेज बहुत हाई है कम्पेयर टू अदर मेट्रोज। हम करीब 45-47% एनर्जी रीजनरेट कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन पे भी हमारा थ्रस्ट रहता है, हमने उस तरीके के टैप लगाए जिससे पानी वेस्ट ना हो, और मीटर लगाए हुए हैं बहुत सारी जगह पे जिससे कि हम उनको वाटर का कंजम्पशन मॉनिटर करते हैं।
1: जी, आपने बताया जैसे सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लाया गया है, ऊर्जा संरक्षण के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में नेट जीरो मेट्रो नेटवर्क लक्ष्य संभव है?
0: हाँ जी, बिल्कुल लक्ष्य संभव है। इसके लिए अलग अलग मेट्रोज ने अभी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा फोकस, चूंकि बाकी चीज़ों में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी की बात हो या वेस्ट डिस्पोजल की बात हो, हम लोग को इस चीज़ पे भी बहुत प्राउड है कि हम पहली मेट्रो बने हैं इस देश में जहाँ पे हम लोगों ने पान गुटखा मसाला बिल्कुल बंद किया। ये एक बड़ा चैलेंज था लखनऊ में और खासकर, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। अब कोशिश हो रही है नॉन रिलेवेंट एनर्जी से अपना पूरा का पूरा खर्चा निकालने के लिए। हम DMRC के साथ में दूसरी मेट्रो है जिसने कि एनर्जी एक्सचेंज से बिजली लेना शुरू किया था, और जब बिजली बहुत आयत में होती है तो सस्ती होती है, एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेयर मार्केट रहता है, तो बिजली का रेट जब ऊपर ज़्यादा कम होता रहता है, तो जब बिजली सस्ती होती है हम लोग उस एक्सचेंज से बिजली लेते हैं, और हम लोगों ने इसमें काफ़ी सेविंग भी की हुई है। तो यस, आगे कोशिश है कि हम सोलर को और ज़्यादा बढ़ा करके और सोलर पार्क के थ्रू बिजली का कंजम्पशन जो है पैटर्न चेंज करें।
1: जी, आपकी अगर हम आपकी खुद की बात करें तो आप भारतीय रेलवे में से

0: वायदे चुके हैं, दिल्ली मेट्रो में रहे, उसके बाद ये यूपी मेट्रो में है। तीनों संस्थानों में काम करने का आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस करते हैं इनमें, और यूपीएमआरसी का नेतृत्व करते हुए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
1: देखिए, चुनौती तो हर जगह थी। भारतीय रेलवे में अपनी नौकरी शुरू करने के महज 3-3.5 साल के अंदर ही मुझे ये मौका मिला कि लोकोमोटिव की मेंटेनेंस के लिए आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में पहली बार हमारे पास में less than 1% पर लोकोमोटिव था, जो यार डिस्ट्रिक्ट से 10 गुना कम था, लेकिन उस बहाने उस प्रोसेस के थ्रू लार्ज स्केल पे आउटसोर्सिंग का प्रॉपर मिक्स शुरू हुआ, जिससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मौके मिले जिसकी वजह से हम लोग नई चीजें इवॉल्व कर पाए। भारतीय रेलवे में रहने के टाइम में मुझे एक नई कंपनी शुरू करने का मौका मिला, जो कि बिल्कुल जीरो से शुरू कराई हम लोगों ने, रेल एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी, जिसका रजिस्ट्रेशन से लेकर के फिर बायलैटरल और पावर ट्रेडिंग वहाँ से शुरू करा करके करीब 3,000 करोड़ की हम लोग बिजली की सेविंग कर रहे थे उसमें। ये एक नया काम शुरू किया था, और लार्ज स्केल पे सोलर और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन भारतीय रेलवे में जब मैं मिनिस्ट्री में काम कर रहा था तो मौका मिला। ये चैलेंजिंग था और बहुत अच्छा, कुछ बाकी मंत्रालय के साथ में कैसे सहयोग करते हैं इसके बारे में बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे। डीमआरसी में मौका मिला फर्स्ट टाइम इंडिया में, जब हम लोग को ट्रेन की ओवरऑलिंग फैसिलिटी शुरू करनी थी तो मुझे वो दायित्व दिया गया, जो मैं काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ। और हम लोगों ने उस टाइम में कंडीशन मॉनिटरिंग और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की आधारशिला रखी, उसका नतीजा है कि लखनऊ में हम लोग आज बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं। जो जो हमें कॉन्ट्रैक्टर या OEM बताते हैं कि आपको इतना काम करना पड़ने का मेंटेनेंस के लिए, हम उसके जगह पे उस कंडीशन मॉनिटर करते हुए और उसके फोरकास्ट करते हुए कि आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, उसको ऑप्टिमाइज करके उसमें कहीं ना कहीं AI का भी यूज़ होता है, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजली बचा पा रहे हैं और रिसोर्सेज बचा पा रहे हैं और प्रॉपर मिक्स किया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का जो दौर है, जो जो मौके हमें भारतीय रेलवे ने दिए या दिल्ली मेट्रो ने दिए या अभी उत्तर प्रदेश मेट्रो ने दिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचते रहे और शायद इसलिए कर पा रहे हैं, पर इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा। हमने जब ये कंपनी शुरू की थी इसमें केवल कुछ लोग बाहर से, रेलवे से या दूसरी मेट्रो से या BSNL से आए हायर मैनेजमेंट में, लेकिन नीचे के लेवल पे हम लोगों ने मास रिक्रूटमेंट पे एग्जाम के थ्रू किया। आज भी हमारी 8-8.5 साल की इस मेट्रो की लाइफ इस ऑर्गेनाइजेशन की हो गई है, उसके बावजूद हमारी एवरेज एज ऑफ ए एम्प्लॉई इज less than 29 ईयर। तो उन बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा है, हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट एक्सलेंस सेंटर बनाया हुआ है, ह्यूमन कैपिटल पे बहुत फोकस किया है। सारे जो ट्रेनिंग सेंटर हिंदुस्तान में है उनको कंपेयर करने के बाद में DB जर्मनी, जो कि इंडिया में पहली बार काम करना चाह रही थी, उन्होंने उन DB जर्मनी के लोगों ने इवेलुएट करके यूपी मेट्रो को चुना, हमारे ट्रेनिंग सेंटर को चुना और करीब 300 लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की। हम लोग बाकी जगहों को भी, बाकी मेट्रोज को भी कंसल्टेंसी देते हैं, सिमुलेटर्स और AI बेस्ड ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। जो लोग बच्चे आते हैं वो आसपास के शहरों से होते हैं, छोटे कस्बों से होते हैं, उनको सॉफ्ट स्किल की डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत भी होती है, केवल इंग्लिश स्पीकिंग या PPT बनाना ही नहीं, उसमें और बहुत बृहद सब्जेक्ट को कवर किया, जिसके लिए हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कोलाबरेट किया हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंग्लिश सिखाने का काम हमारे यहाँ US एम्बेसी करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जान के ये शायद ताज्जुब होगा कि हमारा जो ड्राइवर है, हमारा जो ट्रेन ऑपरेटर है और जो रिलेटेड स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग हम उसी एकेडमी से कराते हैं जो एयर होस्टेस की एकेडमी चलाती हैं, क्योंकि वो लेवल से ही लोगों को, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है और वो हमारी सोच के भी परे जा करके डिलीवर कर पाए हैं।
0: तो बहुत ही अद्भुत काम आप लोग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी सरकार के जो 12 वर्षों में भारत ने मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया और एक नई पहचान बनाई है, अगले 20 वर्षों में 2047 तक आप भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को शहरी परिवहन के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं?
1: देखिए, जैसे हम लोगों ने बात किया कि 7 सिटीज पे लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विजन 47 में ये भी प्लानिंग है कि 3 शहर कम से कम ऐसे हों जो विश्व स्तर की क्वालिटी, ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग को पा सके। कहने की जरूरत नहीं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा और दूसरा जो सबसे बड़ा होगा वो सस्टेनेबिलिटी रहेगा और इन्वायरमेंट रहेगा, कि अभी हमारे देश में वो एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में चाइना ने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है, हमारे यहाँ भी मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए और प्लान करने के लिए जो जरूरत है वो सारे इंग्रेडिएंट ऑलरेडी अभी आज की तारीख में अवेलेबल है और उसी दिशा में प्लानिंग भी हो रही है। अगर हम ये बात करें कि देश में आज की तारीख में 1000 किलोमीटर से ज्यादा नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है, तो ये कहना कि हम यूपी में अकेले यूपी में 1575 किलोमीटर प्लान कर रहे हैं, जिसमें से 800 किलोमीटर ऑलरेडी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, जिसके लिए DPR तैयार हो रही है या फाइनल अप्रूवल की स्टेज में, तो ये दर्शाता है कि जो हमारा सपना है वो दूर नहीं है। महज 21 साल में हमें जो करना है वो मुझे तो लगता है कि अगर हम इसी गति से

0: काम करते रहें और एक दूसरे के साथ में जो तो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं वो इंटीग्रेट करते रहें, जो कि पक्का होगा, तो ये लक्ष्य बहुत पहले ही हासिल हो जाएगा।
1: निश्चित रूप से UPMRC अपने लक्ष्य को हासिल करेगी और लोगों को एक बेहतर परिवहन का साधन मुहैया कराती रहेगी। आकाशवाणी समाचार को समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को ये अवसर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्षों के दौरान मेट्रो के विस्तार से भारत के शहरी परिवहन को गति देने के प्रयास पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे केंद्र में NDA सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।

0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बातें यूं ही होती रहें। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। पर श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम आधारित होता है आप जो हमें कॉल्स करते हैं और उस पर होती हैं आपकी ढेर सारी फरमाइशें। फरमाइशें किन के लिए? आपके अपनों के लिए, जिनको आप सुनवाना चाहते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0522223825 पर। और जैसे कि हमारे सारे श्रोता सभी कहते हैं ना, आप जानते हैं कि भाई ये कार्यक्रम जो है क्योंकि उनका पसंदीदा भी है तो भाई फ़ोन नंबर भी जानते हैं, तो पहले से ही हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे उन सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया जो कि हमारे साथ लगातार जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ भी जाते हैं। तो भाई देखिए, कार्यक्रम में हमारी ये पहली कॉल भी लग चुकी है और हमारे पास एक कॉल आ चुकी है। देखिए किसकी आती है, बात करते हैं कौन है हमारे श्रोता, हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर। हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कृष्णपाल परमार, छह महीना सोनभद्र तहसील देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: कृष्णपाल जी,
1: नियमित श्रोता है मैम, कार्यक्रम सुनते रहते और फोन भी लगाते।
0: आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है कृष्णपाल जी।
1: और आपका जो परिचय देने का अंदाज है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज कार्यक्रम में पहली कॉल आपकी लगी है, और तो फिर कौन सा
1: की बात हुई एक दो बार आप?
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हुई है। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं, वो खासकर हमसे रूबरू जरूर हों, फोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। तो ये बताएं, आप हमारे केंद्र के जब नियमित श्रोता हैं तो लगातार सारे कार्यक्रम भी सुनते होंगे?
1: नहीं, सारे तो मैम नहीं सुन पाते हैं क्योंकि डीटीएच के माध्यम से सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: और मेरे पास रेडियो है और फिर दुकान चले जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो चलाते हैं और घर पे रहते हैं, अभी थोड़ा सा सुन पाते हैं थोड़ा।
0: चलिए अच्छी बात है, जितना भी वक्त देते हैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया, आप सुनते हैं कार्यक्रम को।
1: आकाशवाणी भोपाल और इंदौर हम रेगुलर सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। देखिए आकाशवाणी का आप कोई भी संस्था सुनिए, कोई भी जगह से सुनिए, बस आपको यह है कि हाँ जुड़े रहे।
1: 1995 जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब फिर तो आप हमारे बहुत पुराने नियमित श्रोता हो गए।
1: और आज भी हम रेडियो पे ही सुनते हैं वैसे। आप जी, तो जी। बहुत माध्यम हो गए सुनने के,
0: बिल्कुल
1: मोबाइल पे सुन सकते हैं अपन,
0: बिल्कुल
1: डीटीएच के माध्यम से सुन सकते हैं।
0: तो ये बताएं, आज आपने हमें कॉल करी है तो कार्यक्रम में पहली कॉल आपकी लगी है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज सुना दीजिए पतझड़ सावन बसंत बहार।
0: क्या बात है, पतझड़ सावन बसंत बहार, लता जी की आवाज़ में, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में है। तो भाई लीजिए, ये प्यारा सा गीत पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट तक, आप भी सुनिए और अपने परिवारजनों को भी, अपने प्रियजनों को भी सुनवाइए।
1: ठीक है मैम।

0: श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, जिसमें आप मिला रहे हैं हमको कॉल हमारे फोन नंबर पर। तो देखिए, हमारे साथ लगातार हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, तो आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी, मैं सांडली जनपद हरदोई से विजय लक्ष्मी कुशवाहा बात कर रही हूँ मैम।
0: विजय लक्ष्मी जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो अच्छी हूँ, ठीक हूँ फिलहाल।
0: फिलहाल बढ़िया है।
1: आप बताइए मैम, आप कैसी हैं?
0: बस हम भी बढ़िया हैं। आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोताओं का साथ बना रहता है तो कार्यक्रम और हम दोनों अच्छे हो जाते हैं।
1: जी मैम।
0: जी, तो ये और बताइए, क्या करती हैं विजय
1: जी? मैम कुछ नहीं करती हूँ, बस घर के काम करती हूँ, घर पर रहती हूँ।
0: क्या बात, मतलब आपको लगता

0: कि घर के काम करना बहुत आसान होता है।
1: आसान
0: नहीं, घर के काम,
1: तो होता ही, रेडियो साथ में लगा रहता, मैं रेडियो की बहुत शौकीन हूँ,
0: ये तो अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: शौक है
0: हाँ
1: रेडियो सुनने का।
0: जी, कह सकते हैं कि रेडियो के साथ घर के काम आसान हो सकते
1: जी
0: हैं।
1: मैम,
0: है ना। चलिए,
1: और
0: अच्छा
1: आपके यहाँ से जितने भी कार्यक्रम आते हैं मैं सभी सुनती हूँ,
0: तो सब
1: खासकर
0: आपको,
1: आकाशवाणी लखनऊ
0: जी
1: के मीडियम वेव को मैं ज्यादा सुनना
0: अच्छा
1: पसंद करती हूँ।
0: अच्छा तो ये बताएं, आपको सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: हाँ मैम, बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपने भी कॉल करी है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी ये बताएं।
1: नगीना मूवी का सॉन्ग है भूले बिसरिया एक कहानी,
0: भूली बिसरी एक
1: और मैं
0: कहानी।
1: सभी को डेडिकेट करना
0: जी
1: चाहती
0: जी
1: हूँ मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अनुराधा जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत है, आप भी इंजॉय कीजिए और
1: जी
0: आराम से।
1: मैम।
0: जी, ठीक है,
1: हाँ
0: चलिए।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बातें यूं ही होती रहें और बातें हो रही हैं इस समय कॉल्स पर, मतलब फोन नंबर के साथ। तो भाई आप हमारा फोन नंबर नोट कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0522-223-8825, 0522-223-8825। मतलब कई बार ऐसा हो गया कि भाई बहुत जल्दी बोल दिया, समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारे श्रोताओं को हमारा फोन नंबर रट गया है। तो भाई बात करते हैं हमारे अगले श्रोता के साथ जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, बड़ी दूर से उन्होंने हमको कॉल करी थी लेकिन लग रहा है किसी वजह से या तो हमारी तरफ से कट गया या उनकी तरफ से कट गया है। हेलो, नहीं आवाज़ आ रही है। ये थे हमारे साथ थे जो हमारे श्रोता थे, ये थे अनूप भट्टाचार्य जी और बड़ा प्यारे से गीत की इन्होंने फरमाइश करी थी। तो कोई बात नहीं, इनका गाना तो हम ज़रूर प्ले करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं इन्हीं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। हमें दम नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखने हैं कि कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रोताओं सुन रहे हैं कार्यक्रम आप, आपका अपना पसंदीदा कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बातें यूं ही होती रही और जुड़ते हम अपने अगले कॉलर के साथ जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना परिचय दे, हमारी कौन सी श्रोता
1: बताइए।
0: बात
1: हम
0: कर रही है? नमस्कार, हमारी
1: मैं
0: आवाज़, हाँ
1: गाना बोल
0: हमारी आवाज़ आ रही है आपको?
1: रही हूँ।
0: कम आ रही है तो थोड़ा सा हम और तेज बोल लेते हैं। अब बताएं, आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
1: जी मैम, अब आ
0: जी,
1: रही।
0: अब अपना परिचय दें, क्या नाम है और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी मैम, राम बोगला पोस्ट मोतीपुर जिला बाराबंकी से हम बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, बाराबंकी से बात कर रही हैं। अपना नाम?
1: जी मैम, कांति।
0: कांति जी, कैसी हैं आप ये बताएं।
1: मैम जी अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। तो ये बताएं, आपने इससे पहले भी इस कार्यक्रम में कॉल की है? इस कार्यक्रम में इससे पहले भी आपने बात की है, कभी कॉल लगाई है?
1: यस मैम,
0: लगाई है, बात की है। अच्छा, इसका मतलब तो आप हमारे केंद्र के सभी कार्यक्रम सुनती हैं।
1: जी मैम,
0: कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं मैम।
0: बहुत अच्छे लगते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो ये बताएं, आज आपने हमें कॉल करी है तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई।
0: सात समंदर पार, विश्व फिल्म विश्वात्मा और साधना जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत है। तो भाई लीजिए, ये गीत पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट तक, एंजॉय कीजिए इसको,
1: जी मैम,
0: ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाने के लिए।

0: तो जी हाँ श्रोताओं, देखिए हम भी सात समुंदर पार करके आ सकते हैं क्योंकि आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और ऐप के माध्यम से भी। तो भाई हम सात समुंदर भी अपने श्रोताओं के पास पहुंचते हैं और कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो भाई जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ कि कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते, गुड
0: नमस्ते,
1: मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग। हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है?
1: मैम। मैं आपके चैनल की नई श्रोता बात कर रही हूँ, स्वाति सिंह,
0: जी
1: अमरपुर मनकापुर गोंडा। मैम अभी कुछ ही दिनों से आपके चैनल सुन रही हूँ, लेकिन
0: जी
1: मुझे पूरे कार्यक्रम इतने अच्छे लगते हैं, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती हूँ अपनी खुशियों से। जी
0: हाँ, वो आपकी खुशी आपकी आवाज से झलक रही है स्वाति जी।
1: मैम, जी मैम,
0: अरे अच्छी बात है, हम ये
1: हाँ
0: चाहते
1: मैम,
0: हैं।
1: कैसी हैं
0: जी
1: आप?
0: हम बहुत बढ़िया हैं और आपकी इस खिलखिलाती आवाज को सुन के हम और भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। हम हमेशा
1: जी मैम,
0: चाहते हैं कि
1: थैंक
0: हमारे
1: यू।
0: नए श्रोता हमारे साथ जुड़े, हमसे कम्युनिकेट करें, हमसे बात करें, और यही हम
1: जी मैम,
0: चाहते हैं।
1: आपके यहाँ से जितने भी कार्यक्रम
0: जी
1: प्रस्तुत होते हैं, सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं मैम।
0: चलिए देखिए, यही
1: लेकिन
0: अच्छी
1: मैं अभी
0: बात है।
1: हाल ही से सुनना स्टार्ट करी हूँ, कि
0: जी
1: मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे कार्यक्रम, और
0: बिल्कुल।
1: मतलब याद भी हो गए हमको सारे प्रोग्राम के नाम।
0: चलिए अच्छी बात है, यही अच्छी बात है। देखिए आप लगातार सुनेंगे तो आपको सारे कार्यक्रम के नाम भी याद हो जाएंगे,
1: जी
0: ज्ञानवर्धक भी
1: मैम,
0: हैं और मनोरंजक भी है ना। तो ये बताएं स्वाति, आपने
1: हेलो
0: हमें कॉल करी है तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी स्वाति?
1: हेलो।

0: आवाज आ रही है स्वाति?
1: हेलो
0: स्वाति आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपने आवाज बोले,
1: हेलो,
0: शायद कुछ कम्युनिकेशन गड़बड़ हो रहा है। हेलो, गोंडा से बात कर रही थी, चली गई शायद। हेलो, खुशी इतनी थी कि थोड़ी सी लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन उन्होंने बड़े प्यारे से गीत की फरमाइश हमसे करी थी। इन्होंने सुनना चाहा था फिल्म जीत का ये प्यारा सा गीत। भाई लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर और स्वाति जी आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत पहुंचता है आपके रेडियो सेट तक। एंजॉय कीजिए इसको।

0: तो जी हाँ श्रोताओं, प्रेम नगर भी चलेंगे साथ साथ, लेकिन अभी हमें करनी है बात हमारे अपने श्रोताओं से जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई जुड़ते हैं हम अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, ये इतनी बुरी आवाज़ है क्या मेरी? कोई तो बोलो, कहीं से तो बोलो। अभी तो आप बात कर रहे थे, कोई बात नहीं। सत्यम पायल जी थे जिन्होंने हमको कॉल करी थी और बड़े प्यारे से गीत की फरमाइश करी थी उन्होंने हमारे से, और हम चाह रहे हैं अब भी कहीं से उनकी आवाज़ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन लग रहा है गड़बड़ हो जा रहा
1: हेलो
0: है। अरे आ गई आ गई, देखिए आवाज़ आ गई। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: कहाँ थे आप, हम आपको इतनी देर से आवाज़
1: ना मैं
0: दे
1: था
0: रहे
1: तो लाइन पर, आपकी आवाज़ ना बहुत ही कम आ रही थी, मैं
0: अच्छा
1: समझ नहीं
0: कम आ रही
1: पाया।
0: थी, चलिए हो सकता है मैं और तेज
1: जी
0: बोलने की कोशिश करूंगी।
1: जी
0: तो ये बताएं हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर
1: मैं
0: रहे हैं
1: सत्यम
0: अपना?
1: पाल बात कर रहा हूँ,
0: जी
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम रफातपुर से।
0: सत्यम पाल
1: तो
0: जी,
1: ये
0: मुरा
1: मैम फर्स्ट टाइम है जब मेरा कॉल लगा है इस कार्यक्रम में या मतलब चैनल पे।
0: क्या बात है। देखिए फिर तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कि हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जी मैम, थैंक
0: तो ये बताएं
1: यू।
0: सत्यम पाल जी, और क्या करते हैं इसके अलावा?
1: मैम पढ़ाई लिखाई करता हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो
0: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: दिन भर इसमें निकल जाता अपना।
0: और साथ में साथ रेडियो का, रेडियो जो है वो साथी बन के आपके साथ रहता है जी।
1: जी हाँ बिल्कुल, ही चलता रहता है। और जो है फोन पे इधर बात हो रही है तो उधर मैंने अपने डेस्कटॉप पे खोल रखा है, वो आपका वेबसाइट के माध्यम से सुन रहा हूँ उसको, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि
0: अरे
1: दोबारा
0: बाप
1: सुन
0: रे,
1: सकूँ उसको।
0: कोई गलती वलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है?
1: अरे
0: रिकॉर्डिंग भी
1: नहीं,
0: चल रही
1: ऐसी कोई बात
0: है।
1: नहीं, गलती तो हो ही जाती है कभी कभार,
0: चलिए
1: से कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो ये बताएं, आपने हमें कॉल करी है तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम तहकीकात फिल्म का है वो गीत जो है, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा।
0: बड़ा प्यारा सा गीत है, तो भेज लीजिए। कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में है ये प्यारा सा गीत, पहुंचता है आपके रेडियो सेट तक, एंजॉय कीजिए इसको।
1: जी धन्यवाद मैम,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके।

0: अभी अभी जो हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बातें यूं ही होती रहें, आपका फ़ोन इन प्रोग्राम जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0522223 8825 पर, और क्योंकि कार्यक्रम है हमारे कॉल्स का जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं कॉल्स के माध्यम से हमारे श्रोता, तो आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो,
0: पीछे जो रेडियो चल रहा है ना सर, वो थोड़ा सा कम कर लीजिए क्योंकि मुझको मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है।
1: जी जी
0: जी, थोड़ा सा कम कर लीजिए।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आई मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी?
1: हेलो,
0: आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो,
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, आवाज आई?
1: धीरे आ रही है, बहुत धीरे है
0: जी, बहुत धीरे आ रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझे प्रॉपर आ रही है पूरी तरह से।
1: अच्छा जी, बहुत दिन से कॉल लगा रहा था, आज आवाज मिल गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: चलिए, हमें भी बहुत खुशी है कि आपकी कॉल लगी है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये बताएं हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी जी, पाकीज़ा फिल्म का बोला था गाना जी।
0: हाँ जी बिल्कुल, गीत भी आपको सुनवाएंगे।
1: पाकीज़ा फिल्म का गाना।
0: आप अपना नाम तो बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रामराज जी बोल रहे हैं, सिंधौली सीतापुर से।
0: सिंधौली सीतापुर से रामराज जी, तो चले भी आपने जो जी पसंद किया है गीत, वो आपके गीत आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है,
1: काफी दिन से ट्राई कर रहा था, आज लग पाया।
0: चलिए आज लग गया, ये भी अच्छी बात है, आगे भी ट्राई कीजिएगा, जरूर लगेगा। ठीक है
1: जी, सारे कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रेडियो से।
0: अच्छा, आप सुनते हैं हमारे केंद्र के सभी कार्यक्रम?
1: जी लगातार कंटिन्यू।

0: बता रहता हूँ,
1: कंटिन्यू सुनते रहते हैं, क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने हमें कॉल करी
0: जी,
1: है
0: जी मैम
1: और
0: जी,
1: इतना प्यारा गीत आपने फरमाइश करी है फिल्म पाकीज़ा का, तो लीजिए ये।
0: 2 महीने बाद लग पाई मेरी कॉल,
1: 2 महीने बाद लगी है, कोई बात नहीं, आगे ट्राई करेंगे, आगे भी जरूर लगेगी आपकी कॉल, ठीक है।
0: जी जी
1: चलिए लीजिए सुनिए ये प्यारा सा
0: जी,
1: गीत अपना।
0: सुनवा दीजिए पाकीज़ा
1: जी जी जी

0: श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। भाई जो है समय जो है वक्त जो है वो बहुत ही कम रह गया है, जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: राधे राधे मैम जी।
0: राधे राधे, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: आशुतोष जी,
1: काफी दिन बाद मेरा फोन लगा है लखनऊ में।
0: भी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में, और आपने हमें इतनी दूर से कॉल करी उसका तहे दिल से शुक्रिया।
1: और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ तुम कहो कुछ हम कहे प्रोग्राम में मेरे को शामिल किया।
0: नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारे नए नए श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो और दूर दूर से हो, तो और भी हमारी खुशी जो है दुगनी हो जाती है। तो ये बताएं आशुतोष जी, आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: बिल्कुल सुनता हूँ मैम जी।
0: कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत बढ़िया लगता है मैम, ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: क्या इसलिए जी जी प्रोग्राम में फोन फोन पाना बहुत मुश्किल।
0: अच्छा, मतलब कॉल लग पाना कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे।
1: बिल्कुल मैम।
0: चलिए, आपने हमें कॉल करी है उसका तहे दिल से शुक्रिया। कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
1: मैम जी? आज मुझे याद आया
0: जी,
1: 1978 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। टाइटल सॉन्ग लता जी की आवाज में सुना दीजिए
0: जी जी।
1: और इस गाने को लिखा है संगीत का सबसे बड़ा राइटर आनंद बख्शी जी ने,
0: बिल्कुल,
1: और सुरों का जादूकर लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने सुर से सजा इस गाने को।
0: क्या बात है, देखिए आपको पूरी जानकारी है इस गीत की, और वाकई में गीत बहुत प्यारा रहा है और अपने टाइम में ये कितना माइलस्टोन रहा था ये गीत। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: लोगों को तो मैम जी कभी कभी तो याद करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं वो आपके नींव के

0: पत्थर है, उन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लीजिए भाई प्यारा
1: और
0: संगीत
1: मैम जी,
0: जी
1: आपका इजाजत हो तो मैं दूसरे दोस्त को याद करता हूँ।
0: हाँ
1: काफी दिन बाद मेरा फोन
0: बिल्कुल
1: लगा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए।
1: पहले सुनेंगे प्रेमदास बाबा जी, शारदा प्रसाद जी, अविनाश तेली मेरा छोटा भाई, भगवान सिंह पारमार, गंगाधर जी, देवी शंकर जी और राम बाबू शर्मा, केसरी सिंह राजपूत और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना। आप भी सुनेंगे मैम?
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम भी सुनेंगे। लीजिए प्यारा संगीत आपकी रेडियो सेट तक पहुंचता है।

0: श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और इस समय जो है वक्त जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और हम चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में एक और कॉल जरूर ले ली जाए। तो आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो,
0: पीछे से मेरी आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा सा रेडियो कम कर लीजिएगा।
1: जी
0: हाँ जी, आप बताएं हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: जी मेरा नाम है रमेश, यहाँ यूपी अयोध्या से बोल रहा हूँ।
0: रमेश जी अयोध्या से बात कर रहे हैं
1: जी,
0: जी तो ये बताएं और क्या करते हैं रमेश जी आप अयोध्या में, खासकर राम जी की नगरी में।
1: ये कुछ नए दृष्टि वाले को घर पर रहता हूँ, रेडियो के कार्यक्रम सुनता रहता
0: हूँ। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम आकाशवाणी लखनऊ के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कार्यक्रम को सुनते हैं। कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम इस केंद्र के?
1: जी मैडम बहुत अच्छे लगते हैं और इस समय कॉमेंट्री प्रसारित किया जा रहा है बहुत।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको कार्यक्रम पसंद आना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। तो ये बताएं आपने हमें कॉल करी है और इस कार्यक्रम

0: में आपकी अंतिम कॉल ये लगी हुई है, तो कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है बैग डिफायर, गाने से बोले
0: उदित नारायण जी की आवाज़ में और अलका याग्निक की आवाज़ में, ये प्यारा सा गीत है, तो भाई लीजिए, पहुंचता है आपके रेडियो सेट तक।
1: जी, ये गीत आपको और जितने भी सुनने वाले लोग हैं।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, और लीजिए भाई, इंजॉय कीजिए आप इस ट्रैक को।

तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपने मेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है pkld यानी पत्र के लिए धन्यवाद @gmail.com पर। और श्रोताओं, कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ ही दीजिए अनुमति अपनी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली को, और बने रहिएगा आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
0: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
0: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी, आपकी, सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहां मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहां लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहां का

0: सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है।

उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी।

0: अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
0: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो।
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो
1: हा?
0: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना

0: उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रहे।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना।

0: रोजाना।
1: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो,
2: तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
3: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
2: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
3: सेठ मुझे देर हो रही है।
2: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
3: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
4: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
5: जी मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
6: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं श्रेया घोषाल और रूप कुमार राठौर की आवाज में फिल्म वीर का ये गीत।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और इस समय आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार नगमों का। ताई श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं औरकों की आवाज में फिल्म रुस्तम का ये गीत।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे सदाबहार इन नगमों का। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
3: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और CEO बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के CEO से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार AI गवर्नेंस पर मिस्ताल AI के सह संस्थापक और CEO आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और CEO रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और

0: मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराई से निर्मला देवी सूचित करती हैं कि पन्नेलाल 18 मई 2026 को सुबह 7:30 से लापता हैं। इनकी उम्र 38 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ व चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने पैंट व टी शर्ट पहनी हुई थी। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिलती है तो वो थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच को सूचित करें। साथ ही इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7525075810। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 7525075810। थाना फखरपुर जनपद बहराई से हनीफ सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी शालमा 23 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ व चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने काला नकाब पहना हुआ था। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिलती है तो वो थाना फखरपुर जनपद बहराई

0: एच को सूचित करें। साथ ही इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8471084381। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 8471084381। थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच से आंचल कश्यप सूचित करती हैं कि उनके पिता ननकू 20 मई 2026 को शाम 5 बजे से लापता हैं। इनकी उम्र 45 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ व चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने सफ़ेद रंग की शर्ट व मेहरून पैंट पहनी हुई थी। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिले तो वो थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच को सूचित करें। साथ ही इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9778360428। ये मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9278360428। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
8: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 101 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ़ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्नाव को तरक्की की दौड़ में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर की तामीर के लिए ज़मीन तहवील की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब तेज़ी के साथ यहां इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और नौजवानों को यहीं रोज़गार मिलेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोज़गार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के ज़रिए मुंतखब ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में हिफाजत के बेहतरीन माहौल में मईशत को रफ्तार मिली है। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में यूपी की मईशत और फी कस आमदनी में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है।
9: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया, भर्ती

0: नीति आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
1: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ डिवीज़न के अवामी नुमाइंदों के साथ माली साल 2026-27 के लिए महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के बारे में मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मौसूल होने वाले तजावीज़ को तरजीह दी जाए और जल्द अज जल्द एक्शन प्लान हुकूमत को भिजवाया जाए ताकि रवां माह के आखिर तक उनकी मंजूरी दी जा सके और काम शुरू हो सके। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मफाद आम्मा के हर मसले के तई हसास है और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आज हम नक्सलिज्म के खात्मे और नक्सल से मुतासर इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की अहम कोशिशों पर बात करेंगे।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के 59 जिलों में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। इस इम्तिहान में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का इम्कान है। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने पर रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुहर्रम के पहले दिन कल लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से रवायती शाही जरी का जुलूस गम और अकीदत से निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता हुआ रात गए छोटा इमामबाड़ा पहुंचा। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए थे। बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर हुकूमत हिंद की वजारत आयुष के ज़र अहतमाम गंगोत्री से गंगा सागर योगा यात्रा के एक हिस्से के तौर पर कल वाराणसी में एक योगा और अवामी राबता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो 21 जून को मनाया जाएगा। रियासती हुकूमत में आयुष के वजीर ममलकत डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वाराणसी के हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ये मुहिम 13 जून को गंगोत्री से शुरू हुई थी और 20 जून को गंगा सागर में अख्ताम पजीर होगी। वाराणसी इस सफ़र का एक पड़ाव था। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों से शिकस्त दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन की सेंचुरियों की बदौलत अफगानिस्तान को जीत के लिए 403 रन का हदफ दिया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर और 3 गेंदों में 232 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

लान है तो देखो भाई, या तो बहुत चिंतनीय और ये कही कि मंथन करे वाला विषय है कि आखिर इतनी गर्मी जो हम पच हाय हाय कह रहे हैं, तो वही के पीछे कारण भी हम ही हैं और निवारण भी हम ही बन रहे हैं। तो खैर, या एक अलग विषय है, तो यही पर अगर चिंतन की जाए, ये पर कुछ काम की जाए, तो स्थिति जरूर बदली। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई देखो, जैसा समय है, जौन समय है, वह माँ अपने आप का ढाले का चाहिए और वह माँ खुश रहे का कोशिश करे का चाहिए। और इतनी वक्त तो जौन गदेल हरे हैं भाई, वही तो विशेष रूप से खुश प्रसन्न हुई हैं, काहे कि स्कूल के जौन छुट्टी है वही 24 जून तलक बढ़ी गई है। और या मौका मिल गवा है कि भाई कहूँ घूमे घामे के जौन कार्यक्रम रहा, अगर वही रही गवा होए कहूँ के कार्यक्रम भाई समय के अभाव में नहीं हो पावा हो, तो बस अभी देखो हफ्ता खाड़ के समय है, आप बिल्कुल घूम घाम सकत हो। और ये घूमे के बाद चली है तो आप सबका एक बात बतावत चली कि आज यानी कि 18 जून का अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनावा जाते हैं। तो भाई देखो, अब यह दिवस काहे मनावा जाते हैं, तो ये के पीछे भी एक कारण है, एक उद्देश्य है। और वह उद्देश्य यह है कि देखो, हम पंचे सभी को अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाए थे कि कुछ आगे पीछे आस पास के होश नहीं रहा था। तो या भाई दिवस के माध्यम से लोगों का जागरूक करा जाते कि थोड़ा ऐसा समय निकालो, हाँ, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के आसपास के जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, चाहे वही धार्मिक स्थल हैं, चाहे कोनो प्राकृतिक स्थल है, तो वहाँ जाओ, उनका देखो समझो, हाँ, और कुछ समय जो उन्हें प्रकृति के साथ बितावे का चाहिए। और यही से देखो होत का है ना कि जो हमारे यू रोजमर्रा के जीवन से जो तनाव उपजत है हमारे जीवन में, तो जब हम थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में रही थन तो वही तनाव कम होते हैं, हमारे स्वास्थ्य अच्छा होते, हमरे सोचे समझे की शक्ति बाढ़ा थी, हमरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के संचार होते हैं। तो जब इतने लाभ हैं भाई, तो यही के तो कर ही इनका चाहिए। लेकिन वह बात है कि हम पंचन के हमेशा अपने दूसरे काम में लगे रही थे, और यही का जो है कहूँ ना कहूँ टाल मटोल हो जाते, तो यह लिए एक दिवस बना दिया गवा कि कम से कम याक दिन तो सोचो बैठ करके। और यही के साथ साथ एक फायदा और होते कि देखो, जब हम पंचन कहूँ घूमे घामे के कार्यक्रम बनाई थन तो का होते कि या तो पूरा परिवार इकट्ठा होते कि सबको मिल के भाई चलते हैं, या मान लो कि परिवार के लोग दूर दराज है, नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो जो अपन इष्ट मित्र हैं उनके संग ही कार्यक्रम बना थी, तो यह बहाना से हमका थोड़ा सा समय मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ समय बितावे के। और जब हम पंचन एक दूसरे के साथ समय बिताई थे ना, तो वैसे का होते कि एक दूसरे का समझे का मौका मिलत है, जो रिश्ते हैं वही और मजबूत होते हैं। कई बार होते हैं ना कि हम एक दूसरे का समझ नहीं पाई थन, और वैसे का होते कि गलत फहमी पैदा होती और कहूँ ना कहूँ रिश्तन में कुछ खटास कह लो, चाहे खट्टी मीठी दरार कह लो छोट मोट, वही उपजा लगा थी। तो उन सब का या जो उन समय है पाट देते हैं जब आप एक दूसरे के साथ है समय बितावत हो। हाँ, तो हमका भाई हम तो यही कहबे कि जब भी मौका मिले तो ऐसे घूमे फिरे के कार्यक्रम जरूर बनावे का चाहिए। और जब भी आप कोनो दर्शनीय स्थल पे जाओ, ऐतिहासिक जगह पे जाओ, हाँ, तो वहाँ जाए से देखो का होते कि हमका अपने इतिहास के जो है वही जानकारी होती, हमका अपने विकास के कहानी जो है वही का देखे सुने समझे के अवसर मिलत है, हमारी धरोहर जो है उनका ज्ञान हमका होते है। तो एक तरह से हम या कही कि भाई जो ये सैर सपाटा है ना, या खाली मनोरंजन नहीं ना, बल्कि यही से हमारे ज्ञानवर्धन भी होते है। और लड़कन बच्चन का तो जरूर भाई लेके जावे के चाहिए, जो ने वही देखें वही का समझें। देखो, तो एक से एक कला पड़ी है ना, एक से एक कलाकृति देखो, तो वही के देख करके भाई ये ज्ञान होते कि हमारे पहले वाले लोग जो है वही कितने ज्ञानी रहें, पुरानी पुरानी बिल्डिंग जो है जो धरोहर जिनका कहा जाते, उनके रख रखाव कैसे किया गया रहा, क्योंकि आज भी वह तान सुरक्षित हैं। तो यह सबसे सीखे के मौका मिलत है, तो हमका जरूर जावे के चाहिए। और एक बात बताइए कि देखो, जब हम कहूँ जा रहे हैं घूमे, चाहे कोनो दूसरे शहर है, गांव है, या कहूँ भी, तो कोशिश करे का चाहिए हमका कि हम वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो उनकी बोल चाल की भाषा है, जो उनका पहरावा ओढ़ावा है, जो वहाँ के स्थानीय खान पान है, प्रसिद्ध व्यंजन है, वही का जरूर भाई सीखी देखी चखी है ना, ताकि एक दूसरे के खान पान रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति का देखे समझे के अवसर मिलते हैं। हाँ, और यही से बहुत कुछ सीखे का भी मिलते हैं। और जो कहा जाता है ना कि अच्छी अच्छी जो बातें हैं भाई, जब वही का हम यह तरह से तिनका तिनका सीख सीख के जब अपने में जोड़ी थन, तो हमार व्यक्तित्व भी जो है वही अपने आप निखरत है। तो यह से अब भी भाई घूमे फिरे के अवसर कहूँ न छोड़े के चाहिए और कबो न चूके के चाहिए। लेकिन हाँ भाई देखो, इसके साथ साथ एक बात और बता दी कि मौसम के ध्यान रखत भाई कार्यक्रम बनायो, या नहीं कि बस भाई घाम निकली भाई और आप जो है बस कहूँ घूमे निकल लियो भरी दोपहरिया में, तो या ना करो, अपने सेहत के मौसम के ध्यान

घर आंगन कार्यक्रम की सबै श्रोता सखियन का प्रतिभा त्रिपाठी क्यार नमस्कार। आशा करिथन हमरी सबै सखी होरी सब परिवार स्वस्थ और प्रसन्न हुई है। वैसे या सुन के कहूँ देखो हमरी सखी भौजी होरी जो ने पीछे से भुन्नात हुई है कि का स्वस्थ प्रसन्न है ही एकदम गर्मी से जीव

रखत भय, अपन कार्यक्रम बनाओ और जब तलक भाई बनाए रहे हो तो कहाँ घूमे गए हो यही का हमका बतायो भी जरूर, और तब तलक जो उन्हें गवनई के आनंद ले लो है, और गवनई के माध्यम से देखो हम तुमका घुमाए दे रहे हैं लखनऊ शहर।

उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न

0: क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सखियों, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति हम सब सुनत पढ़त भय बड़े भाई हैं, सभी लोगन कहूँ न कहूँ ये का सुने हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। जोने माँ 1857 की क्रांति की नायिका वीरांगना रानी रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य साहस के सुंदर वर्णन आए हैं। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अपने देश की रक्षा बदे अंग्रेजन से लड़त भय 18 जून का वीरगति का प्राप्त भई। उनकी शहादत का याद करत भय 18 जून का बलिदान दिवस के रूप में मनावा जाते। और आप सब यहो पढ़े हुई हो कि रानी लक्ष्मीबाई जोने वीरता और साहस के साथ अंग्रेजन से मोर्चा लिहिन, वही का देख के अंग्रेज भी जोन है वो दांते तले अंगुली दबाए लिए रहन। और आज उनकी या बलिदान दिवस पर हम उनका विनम्र श्रद्धांजलि देत भय यह कामना करित हन कि हमारे देश की हर बिटिया के मनमा भाई अपने देश के प्रति स्नेह हो, सम्मान हो, देश के हर बिटिया साहसी हो, वही अपने देश के आन बान शान की रक्षा में अपन योगदान दे सके। लेकिन वही के बदे हम सबके भी कुछ जिम्मेदारी है, अपनी बिटियन के प्रति जिम्मेदारी है कि हम उनका सशक्त बनाई। और यह के लिए जरूरी है कि हम उनका शिक्षा दई, हम उनका सुरक्षा दई, जो उन्हें वही बड़ी हुई करके देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निभा सकें और अपन जो उन्हें अपन जीवन यापन भी बहुत निकेतन कह सकें। तो यही का अच्छे से समझे के लिए कि हमारा आखिर का जिम्मेदारी है, कैसे हम यही का कही सकित हन, तो यही के लिए आज हम अपने श्रोता पंचन का एक वार्ता लेके आए हैं कार्यक्रम में। और यह वार्ता जो हम आपका सुनवाए रहे हैं वही कर शीर्षक भी यह है कि बेटियों को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। ये के बारे में बताए रही हैं सरस्वती देवी तिवारी बहनी। तो चलो सुना जाए यह वार्ता, बेटियों को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट।
4: बेटियन का दहेज जरूरी नहीं आए, जरूरी है उनका शिक्षा और सुरक्षा। प्राचीन काल में बेटियों लड़कने की तरह आश्रम में गुरुजी के पास पढ़ती रहें और खूब विदुषी होती रहें। भारत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत परो है, इनकी माता शकुंतला के पूरी शिक्षा दीक्षा महर्षि कर्ण के आश्रम में भय रहा है। गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वबारा नाम की ऐसी बहुत माताएं बहने रहें जो बड़े बड़े विद्वानन के साथ हैं शास्त्रार्थ करती रहें। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा बहुत विदुषी रहें। उन्हीं की प्रेरणा थे कालिदास इतने बड़े विद्वान भे कि संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े अमर कवि बन के तैयार भे। मंडन मिश्र जब शास्त्रार्थ में हारे लाग तब उनकी पत्नी मंडन मिश्र की तरफ ते शास्त्रार्थ कीने और अपने पति का जिताए नी। उस समय का समाज बहुत अच्छा और स्वस्थ समाज रहा है। कहते कि लड़का बिटियाँ सब समान रूप से पाले जात रहे हैं और पढ़ाई लिखाई जात रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ हैं बिटियनों का शरीर मजबूत करो जात रहा है और आत्मरक्षा के शिक्षा दीन जाती रहा है। तभी तो काली माता, दुर्गा माता, चंडी माता जैसी देवियां राक्षसन का विनाश कर पाई। देवी मातन के बात छोड़ो, वे तो देवी रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का देखो, तीर तलवार सब चलाओ अब सीखें और कितनी बहादुरी ते अंग्रेजन का मुकाबला कीने। सावित्री बाई फुले का नाव पढ़ाई लिखाई के कारण तो आज तक सब जगह मशहूर है। पहले हमारे समाज में स्वयंवर प्रथा ते शादी ब्याह हुआत रहे। बिटिया जे का पसंद कर ले ओके साथ ब्याह हुई जात रहा है। तब दहेज का लेन देन मुख्य चीज न रहा है, मुख्य बात रहा है बरबधू के जोड़ी।

बिटिया का अपनी जोड़ी का बर मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। न जाने कब है और कैसे बर बधू के पवित्र रिश्ता के बीच में दहेज आके घुसेगा और यो दहेज रिश्ता बिगाड़ देने से। दहेज के लोभ में बेमेल बियाह होने लाग और लोग अपनी ही बहुन का तरह तरह ते सतावें लाग। आज के समय में तो दहेज ऐस विकृत रूप धारण कर लिए नैस कि गरीब मातारी बाप का अपनी बिटियन का बियाह करम मुश्किल हो है। लड़का वाले अपने लड़का का बियाह नहीं करत, लड़का का ब्याचत हैं। दुल्हन के बोली लागत ये जहाँ ज़्यादा दहेज मिलत है हुई बियाह हुई जात है, चाहे जोड़ी मेल खाए चाहे ना खाए, चाहे जिंदगी तबाह हुई जाए। लोग अपनी बिटियन के बियाहे में दहेज दे के खातिर एक एक पैसा जोड़त हैं। बिटिया भले पढ़ लिख ना पावे मगर दहेज में कमी ना हो पावे, आइस मानसिकता बन गए आज। दहेज रूपी दानों बुरी तरह ते मुँह फैलाए ठाड़ है और बहुत बिटियन का तथा परिवारन का तबाह कर रहो है। ऐसे भीषण समय में एक परिवार उत्सव हमारे संज्ञान में आओ जेमा 8 बिटियाँ रहें। बिटियाँ बड़ी होने लगी तो गांव वाले उनके महतारी बाप पर उनके बियाहे का दबाव डारें लाग। अब समस्या यह है कि कहाँ ते इतना पैसा आवे कि 8-8 बिटियन का दहेज दे के बियाह करें और बिना दहेज के को बियाहे का तैयार नहीं। तब बिटियाँ सख्ती पकड़ें और जो को बिटियन ते या उनके घर वाले ते बियाहे के बात करें वो ते कह दें कि हम अपनी जिंदगी अपने आप जीबे, आप लोग हमार चिंता ना करो। कोहू का को मुँह तो पकड़ नहीं सकत, जेका जो कुछ कहें कर रहा है कहत रहो। मगर बिटियाँ कोहू के बात ना सुन के संगीत के शिक्षा ले लागी और पढ़ाई करके सब मिलके आर्केस्ट्रा पार्टी बनाए ने। वही जहाँ गीत लोकगीत भजन आदि प्रस्तुत करें हुन समा बांध दें। लोगन का उनके आर्केस्ट्रा पार्टी इतनी पसंद आई कि उन्हें खूब प्रोग्राम मिलने लाग, धन दौलत मान सम्मान के बौछार होने लाग। अब वही सब बिटियाँ VIP श्रेणी में आ गईं और अब अपने आप बिना दहेज के अच्छे ते अच्छे रिश्ता उनके प्रस्ताव लेके आवे लाग। एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मा तथा सुखम। मतलब कि विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता ते योग्यता आवती है, योग्यता ते धन मिलत है, धन ते धर्म के काम हुआत हैं और तब धर्म के कामन ते सुख मिलत है। हे के मारे शिक्षा प्राप्त करा बिटियन के खातिर बहुत जरूरी है। शिक्षा दीक्षा और हुनर के द्वारा वे इतना धन कमा लिया है जेका मुकाबला दहेज कबों न करे पाई। शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी और बिजनेस व्यापार के चक्कर में बिटियन का अकेले दुकेले घर ते बाहर जाए का परत है। उसी समाज इतना विकृत रूप धारण कर ले नैस कि बिटियन के प्रति अपराध चरम सीमा पर हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रत्येक बिटिया का आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जरूर दिन जाए और भली बुरी गतिविधियन ते उन्हें वाकिफ करवाओ जाए। शास्त्र के साथ साथ जब शस्त्र का भी ज्ञान होई तब कौनों के हिम्मत न परी नुकसान पहुँचावे गए। अब तो खैर बिटियों कुश्ती तीरंदाजी भारोत्तोलन जूडो कराटे जैसे खेलन के प्रशिक्षण ले लागी हैं और मुकाबला करके शरीर का पुष्ट तथा मजबूत करें लागी हैं। एक समय रहा है जब बिचारी रो के रह जाती रहें, ना कुछ बोल पाती रहें और ना कुछ जवाब दे पाती रहें। तब ही तो उनके दीन दशा देख के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहो रहे कि अबला जीवन हाय।

0: तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। वो समय रहा है जब बिटियन का जन्म अभिशाप मानो जात रहा है। जन सामान्य में यह कहावत प्रचलित रहा है कि बिटिया मरे घर ही दुख, जिए जन्म दुख। काहे ते कि उस समय न तो बिटियन का पढ़ाओ लिखाओ जात रहा है, न उनका घर ते बाहर निकरें का मिलत रहा है, न नौकरी चाकरी कर सकती रहा है, न उनके हाथ में पैसा रहत रहा है, न संपत्ति में उनका हिस्सा मिलत रहा है, और सही पूछो तो मान सम्मान और इज्जत न मिलत रहा है। घर के साफ सफाई, चौका बर्तन, रोटी पानी, चकिया चूल्हे तक सिमट के रह जाती रहें। एके मारे बेटियां जिंदगी भर दुखी रहती रहें, और जब बेटियां दुखी रहें तो माता पिता दुखी रहत रहें। मगर अब तो वह वैदिक युग वाला समय आ गया है। अब बेटियां लड़का के बराबर मानी जाती हैं। पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, धन संपदा सब में लड़कन के बराबर अधिकार मिले हैं। अब तो बेटियां रेलगाड़ी चलाती हैं, हवाई जहाज उड़ाती हैं, और फौज में डट के दुश्मनन का मुकाबला करती हैं। तो अपने ही अधिकारन का बेटियन का भरपूर उपयोग करो चाहिए, और खूब मन लगा के लगन के साथ पढ़ो चाहिए, जेमा की पढ़ाई लिखाई और शिक्षा दीक्षा के बल पर अच्छी प्रतिष्ठा मिले, अच्छा मान सम्मान मिले, अच्छी नौकरी चाकरी तथा पद प्रतिष्ठा मिले, और बिना दहेज के तमाम लोग ब्याहे खातिर लालायित रहें। बिटियन के बापो मातारी का चाहिए कि बिटिया जितनी उन्नति कर सके उतनी करें, माँ तन मन धन ते ओका सहयोग करें। दहेज और ब्याहे खातिर पैसा जोड़ के न धरें, बल्कि ओकी पढ़ाई में लगावें। पढ़ी लिखी और योग्य बिटियन के ब्याहे खातिर दहेज के जरूरत नहीं पड़त। मगर हाँ, पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के साथ साथ सुरक्षाओं का बहुत ध्यान रखो चाहिए। दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती करा समय बहुत सोच विचार के दोस्त बनाओ चाहिए। कहते कि दोस्तनों पर सोच समझ के विश्वास आज के समय में करो चाहिए। कपटी दोस्त तरह तरह ते नुकसान पहुंचा दिया थे। ओ हाँ, मार्शल आर्ट और कसरत ते शरीर का स्वस्थ और मजबूत जरूर बनाओ चाहिए। तेमा की अगर कौनो दोस्त सामने आ जाए तो ओखा मुकाबला करके पछाड़ सकें, और आइस धूर चटा दें कि एक दाएं जो धूर चाट ले वो दोबारा सामने आवे के हिम्मत न कर सके।
1: तो अभय श्रोता पंचन सुनिन वार्ता, बेटियों को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। वार्ताकार रही सरस्वती देवी तिवारी। तो पंचो देखो, बहुत नीके तान या बताइन बहनी कि हमका जोन है अपनी बिटियन का शिक्षा देवे के चाहिए, ना कि या सोचे के चाहिए कि भाई इनके दहेज के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। कहे से कि जो शिक्षा है ना, वह असली दहेज है। और बिटियन के पास अगर शिक्षा रही, वही मजबूत रही है, सशक्त रही है, तो वही कल कौनों भी स्थिति अगर उनके सामने आवा थी तो वही से वही निपट सकत थी, वही से वही निकल सकत थी। और आपका बताइए कि देखो, हर बिटिया शिक्षित हो, हर बिटिया सुरक्षित हो, या हम सब का जिम्मेवारी आए। और हमारी बिटियन के शिक्षा और स्वास्थ्य बदे सरकार बहुत सहायता करती, बहुत सी योजनाएं चलाई जाती, और उन्हीं मासा आज हम एक योजना की बात अगर करी आप सबके साथ ही, आप सबका जानकारी कर दे साझा करी, तो वही योजना है जो उन्हें के नाम आए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अपन जो बतावा चलिए कि यह योजना जो है वही 25 अक्टूबर 2019 माँ शुरू भई रही, और यह योजना माँ बिटियन के जन्म से लयके और उनके स्नातक तक की शिक्षा जो है जब तक नहीं हो जाए तब तक उनका आर्थिक सहयोग प्रदान की जाते हैं। लेकिन आपका यह बता दें कि यह जो सहयोग धनराशि है या अलग अलग किस्तन माँ, या यूँ कह लो कि अलग अलग श्रेणी है यही कि कब कब यह आर्थिक सहायता जो है दी जाती। तो जैसे कि जब बिटिया के जन्म होते तो वही समय जन्म के समय 5,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि जो है वही प्रदान की जाती, और यह कर उद्देश्य यह है कि जोने से कि जो जच्चा है, बच्चा है, उनके खान पान के उनके जो सहयोग उनका मिल जाए, थोड़ा सहायता मिल जाए, तो यही के बदे उनका 5,000 रुपया के आर्थिक सहयोग किए जाते। वही के बाद जब बिटिया एक बरस की हो जाती

तब जो है बिटिया का 2,000 रुपया के सहयोग धनराशि प्रदान की जाती या योजना के अंतर्गत। लेकिन यही के लिए एक शर्त भी है कि 1 साल के भीतर लगे वाले जो टीका हैं वही पूरे टीकाकरण बिटिया के होवे के चाहिए, यानी कि टीकाकरण के जो कार्ड है वही भाई वही में संलग्न करे का पड़ी आपका। हाँ, यही के बाद अब बात करी थन कि अगली किस्त जो है वही 3,000 रुपया की आर्थिक सहायता के रूप में किस्त मिलत थी, लेकिन यही के लिए भी एक शर्त है, और यह शर्त का है कि बिटिया जो है वही कक्षा 1 माह जो चालू सत्र है वही में कक्षा 1 माह वही कर प्रवेश हुई गवा हो तब है या जो उन्हें धनराशि मिली। यही के बाद जो चौथी अगली किस्त आवत थी वही माँ फिर 3,000 रुपया के आर्थिक सहयोग प्रदान किए जाते, लेकिन वही के लिए जरूरी है कि बिटिया जो उन्हें वही कर चालू शिक्षण सत्र जो उन्हें वही में कक्षा 6 में वही कर प्रवेश हो चुका हो, हाँ, तब जो उन्हें वही का यह धनराशि मिली। यही के बाद अगली किस्त जो है यानी कि 5वीं किस्त जो है वही माँ 5,000 रुपया के सहयोग धनराशि दी जाती, लेकिन यही के लिए फिर एक भाई आपका शर्त कह लो या वो लगा प्रमाण पत्र लगावे का पड़त है कि जोन बिटिया है वही कर चालू शैक्षणिक सत्र जोन है वही में 9वीं कक्षा में वही कर प्रवेश हो गवा हो तब यह धनराशि प्रदान की जाती। यही के बाद छठी और आखिरी किस्त जोन है वही 7,000 रुपया के सहयोग धनराशि के रूप में मिलती थी, लेकिन यही के लिए बिटिया जोन है वही कर चालू शैक्षणिक सत्र जोन है वही माँ स्नातक में या फिर 1 वर्षीय या 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश होवे का चाहिए। तो देखो एक तरह से यह कितनी सुंदर योजना है जेकर की नाम हम बतावा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है कि यही में बिटिया के जन्म वही के स्वास्थ्य टीकाकरण और संपूर्ण शिक्षा सबका सुनिश्चित की गवा है। हाँ, और भाई देखो जब बिटिया का स्वास्थ्य अच्छा रही वही हारी बीमारी से बची रही वही का टीकाकरण हुई वही शिक्षित हुई तो भाई वही सशक्त बनी है। तो या बिटियन का सशक्त बनावे वाली जो महत्वाकांक्षी योजना है। अब यही के हम पात्रता की बात अगर कही ली तो यही के लिए जो परिवार के मुखिया हैं मतलब लाभार्थी परिवार जो है वो उत्तर प्रदेश के निवासी होवे के चाहिए। लाभार्थी जो है उनकर वार्षिक आय जो है वही अधिकतम 3 लाख होवे के चाहिए, मतलब कि 3 लाख से ज़्यादा न होवे के चाहिए। यही के बाद कौनों भी परिवार जो यही का लाभ लेवा चाहत हैं तो उनमें 2 बिटियन का यू योजना के लाभ मिल सकत है। यही के बाद अगर हम बात करी कि या योजना में जो बिटियन का शामिल किया गया है तो उनके जन्म जो है वही 1 अप्रैल 2019 के बाद 1 अप्रैल 2019 या फिर वही के बाद जिन बिटियन का जन्म हुआ है तो उन बिटियन का यह योजना में शामिल किन गवा है। और अगर दस्तावेज की बात कही ली हम तो देखो दस्तावेज के लिए यह माँ जरूरी है कि अभिभावक जो है माता पिता उनके आधार कार्ड हो, बैंक के पासबुक हो, बिटिया जो है वही के नवीनतम फोटो हो। अच्छा एक बात और बतावा चली कि यह योजना माँ गोद ले अगर कोनो भाई मान लो गोद ली गई बिटिया है तो वह के लिए प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। तो आप यहों का जानकारी रखो तो अगर आपके बिटिया गोद ली गई है तो या स्थिति में परिवार के जो है आय प्रमाण पत्र के साथ साथ दत्तक प्रमाण पत्र भी लगावे का पड़ी। तो देखो या तो जानकारी भाई बहुत अच्छी योजना है अगर आप ये का लाभ लेवा चाहते हो या एक बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हो तो यही के लिए आपका महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यालय में या फिर ऑनलाइन भी आप यही के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हो और या योजना के लाभ ले सकते हो। अपन जो देखो हम या कही थन कि इन सब बातन के अलावा हमका एक बात और ध्यान में रखे का है कि बिटिया जो होती ना वही घर की रौनक होती। कोनो भी उत्सव है, तीज त्यौहार है, शादी है, पर्व है तो वही में जब घरे में बहनी बिटिया होती है ना तो एक अलग रौनक आ जाती। और अगर कुछ नहीं भी है और बिटिया बहनी जब घर आ जाती हैं तो देखो रसोई के महक और घर के चहक से पता चल जाते कि भाई कोनो जैसे उत्सवस माहौल हो जाते। तो हमेशा बिटियन के प्रति स्नेह और सम्मान बनाए रखो और या गवनई के आनंद लो।

और श्रोता पंचो, देखो कार्यक्रम की बिरिया समाप्त होने वाली है, लेकिन चले से पहले हम आप सबसे भाई यह कहा चाहिए थे कि कार्यक्रम के प्रति अपन प्रतिक्रिया जो आप हमका मेल से या फिर पाती से भेजत हो तो वही मैं या जरूर भाई बात साझा किया करो, जैसे आज हम बात किए सैर सपाटा किए कि आप कहाँ घूमे गए हो, आपके कैसे अनुभव रहा, कुछ अच्छे अनुभव रहे या कुछ बुरे अनुभव रहे, या फिर आज जैसे बिटियन के शिक्षा दीक्षा की बात भाई, बिटियन का सशक्त बनावे की बात है, तो आप अपनी बिटियन का कैसे सशक्त कर रहे हो, कैसे उनका आत्मनिर्भर बनाए रहे हो, तो यह भी हमसे साझा करो अपने मेल में, जो ने कि आपकी बातन से दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें। और बस अब कार्यक्रम की बिरिया एकदम समाप्त हो गई है, तो आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का दियो अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

अभी हमारी ग्रामीण बहनें सुन रही थी कार्यक्रम अपना घर आंगन, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए। हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम आधारित होता है आप जो हमें मेल भेजते हैं और उस पर लिखी होती हैं आपकी ढेर सारी फरमाइशें। तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। तो भाई श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भक्ति गीत से, माफ कीजिएगा, इस देशभक्ति गीत से।

बहुत सारे श्रोताओं का जो है मेल इस समय मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर है। हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और लगातार मेल हमारे पास बने हुए हैं। ये मेल हमारे पास आया है किसान रेडियो क्लब ग्रामवा पोस्ट ललहौआ जिला खीरी से। लिखने वाले हैं विजयपाल यादव, शुभम, शिखा, ऋचा गुड़िया, बबलू यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी। इन्होंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, सबसे पहले आदरणीय बहन जी को, सर आप बस हमारे साथ कितना चलें उतना ही काफ़ी है, और इतना सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए।

0: और आगे लिखा है कि मीठे बोल, श्रेष्ठ विचार और स्नेहपूर्ण व्यवहार ही व्यक्ति की सच्ची पहचान बनाते हैं। केवल धन संपत्ति होने से कोई वास्तव में समृद्ध नहीं बनता, बल्कि सच्चा धनवान वह है जिसके पास सकारात्मक सोच, सुंदर संस्कार, मधुर स्वभाव और अच्छे संबंधों का खजाना होता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपने गुणों और व्यवहार से सबके दिलों में सम्मान और प्रेम का स्थान बना लेता है। मतलब इतनी प्यारी बात आपने बहुत कम शब्दों में लिखी है। वाकई में ये बात है कि अगर इंसान अपने आप में पॉजिटिव है, अपने आप में अच्छा है, तो वो जहाँ भी जाएगा खुशबू ही बिखेरेगा। और इन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं। और इन्होंने सुनना चाहा है बड़ा प्यारा सा गीत फिल्म कामचोर का। तो भाई लीजिए श्रोताओं, आपका ये प्यारा सा पसंदीदा गीत आपकी रेडियो सेट तक पहुँचता है, इन्जॉय कीजिए इसको।
1: तुमसे बढ़कर

0: मेरा गीत आपकी रेडियो सेट तक पहुंचता है, एंजॉय कीजिए इसको।
1: तुमसे बड़े

तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है हमारे फौजी भाइयों का, कार्यक्रम जवानों के लिए। और श्रोताओं, बहुत सारे मेल इसमें मेरे हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, ये मेल हमारे पास से आया है। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से भेजने वाले हैं राम राज, राजू भानु, राम शंकर, साथ में हैं रक्षा मौर्या, राम सागर साहू रसूलपुर वाले, और साथ में हैं मिर्ज़ा इमरान बेग। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागपुरे, राधेश्याम नागपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम बाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे।

और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल बड़ा प्यारा सा, इन्होंने ढेर सारी फूल पत्तियाँ और ना हाथ जोड़ रहा और दिल ढेर सारे भेजे हैं। लिखा है, गुड आफ्टरनून संजोली मैम, आपको भी गुड आफ्टरनून सर, प्रणाम। आप सभी लोग हैं भेजने वाले हैं, आया कहाँ से है ये? ये मेल जो हमें भेजा है, देवता दीन मास्टर जी हैं, साथ में हैं तुलसी राम गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, शिवा, अंशिका, आकांक्षा, राजेश सिंह चौहान, आप सभी लोग हैं उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने सुनना चाहा है मिथुन दा का प्यारा सा गीत। तो भाई लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पे पहुंचता है मिथुन दा का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला ये मेल हमारे पास आया है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से। भेजने वाले हैं प्रेमपाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेश, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। और अगला ये मेल हमारे पास आया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, आप सभी लोग हैं सेक्टर 68 मोहाली चंडीगढ़ से, और साथ ही साथ कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। उन्होंने लिखा है कि जय हिंद भारत के रखवाले, जल सेना, थल सेना और वायु सेना और रक्षा प्रणाली में जुटे हुए सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। वाकई में बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। साथ ही इन्होंने कहा है कि शहीद फौजी हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को याद करते हैं। ये गलहौटी गांव मेगा जिले के रहने वाले थे और पुलवामा हमले के दौरान ये फौजियों की बस चला रहे थे और इसी हमले में ये शहीद हो गए थे। इनको विनम्र श्रद्धांजलि। और इन्होंने सुनना चाहा है बड़ा प्यारा सा गीत फिल्म वीर का। ताइए श्रोताओं, सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: अभी हमारे फौजी भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार

0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी

0: उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के

0: अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता डॉक्टर प्रियंका सिंह से। वार्ता का विषय है खरीफ में भूमि और बीज शोधन और आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। खरीफ में जहाँ बीज की बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं तो बुआई के पहले भूमि और बीज शोधन कैसे करें ताकि फसल में एक सुरक्षा कवच बने, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट बहराइच से वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका सिंह। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहाँ खरीफ में बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो भूमि शोधन और बीज शोधन आवश्यक क्यों है?
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ का सीजन शुरू हो गया है तो भूमि शोधन और बीज शोधन क्यों आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, भूमि शोधन का तात्पर्य भूमि को रोग से लगे हुए हैं उसमें जो भी कीट हैं, उनके अंडे हैं, उन लोग को बीज डालने से पहले हटाना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि वही भूमि है जो हमें उत्पादकता हमारे फसल का बढ़ाती है, इसलिए हमें भूमि शोधन करना अति आवश्यक होता है।
2: यानी जो बीज जनित बीमारियाँ हैं, भूमि जनित बीमारियाँ हैं, उनसे सुरक्षा कवच हो जाए।
3: जी, एक तरीके से ये टीकाकरण है। जैसे कि हम अपने बच्चों का टीकाकरण करते हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको रोगों से बचने के लिए एक शुरुआत में ही टीकाकरण किया जाता है, बस बिल्कुल वैसे ही ये भी है।
2: तो जहाँ भूमि शोधन करना है यानी भूमि का टीकाकरण कराना है तो कौन कौन से तरीके से भूमि शोधन करें किसान भाई बहन? इस समय
3: भूमि शोधन की बात की जाए तो ये भूमि शोधन हो या फिर हमारा बीज शोधन हो, बीज का उपचार कहें या भूमि का उपचार, ये दोनों ही एक विधि जो है एक ही है।
2: जैसे लेकिन कि शुरुआत करते हैं भूमि शोधन।
3: हाँ,

0: जैसा कि खेती करने जाते हैं तो हमें पहले मृदा की आवश्यकता होती है, बीज हम लोग मिट्टी में डालते हैं, तो हम शुरुआत भूमि के शोधन से करेंगे। भूमि शोधन करने की 3 विधियां हैं, जैसे कि भौतिक विधि है, रासायनिक विधि है और आपकी एक तीसरी जैविक विधि है।
1: तो भौतिक विधि में क्या करना है?
0: भौतिक विधि में क्या होता है कि पहले परीक्षण कर लेते हैं भूमि का, जिसे हम लोग मृदा परीक्षण कहते हैं। उसमें हम लोग देख लेते हैं कि भूमि में पहले से कोई कीट, कोई उसके अंडे नहीं हैं, या फिर मृदा का पीएच क्या है। ये सब कारक जो है वो भौतिक कारकों में आता है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, आपका पीएच 6.5 से 7.5 होना
1: यानी
0: चाहिए,
1: 6.5 से 7.5,
0: साढ़े सात।
1: यानी
0: हाँ
1: सामान्य मृदा।
0: हाँ ये इसको उदासीन कहते हैं, इतना ही होना चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा जो होता है वो खेती के लिए सही नहीं माना जाता।
1: भूमि शोधन में मृदा का सौरीकरण भी है,
0: हाँ सौरीकरण भी है जी।
1: तो कैसे करें किसान भाई?
0: ये जब हम लोग रबी की फसल काट लेते हैं, जैसे गेहूं, सरसों आदि है, इसको काटने के बाद आपकी जो खेत है वो खाली रहती है। बहुत जगह लोग कुछ उसमें हरी खाद लगाते हैं, बहुत जगह क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। जब हम खाली छोड़ते हैं अपने खेत को, तो उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। उसके 2 विधि हैं ये करने के लिए। एक तो है कि आप अपनी क्यारियों को थोड़ा गीला कर लें और उसके ऊपर पॉलिथीन 200 गज की लगा दें, और पॉलिथीन के किनारे किनारे आप माटी से ढक दीजिए। और उससे क्या होगा कि सूर्य की रोशनी से मिट्टी के अंदर जो भी कीट होंगे, जो भी उनके अंडे होंगे, जो भी रोग होंगे, फंगस होगा, वो सब गर्मी से वो बाहर निकल जाते हैं और मर जाते हैं।
1: यानी हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन हो जाएगा भौतिक उपचार से।
0: जी, और एक है कि आप डीप लॉगिंग मतलब कि गहरी जुताई भी कर सकते हैं इसमें।
1: हाँ, तो इस समय किसान भाई बहन खेत खाली है जहाँ नहीं किए हैं,
0: हाँ
1: तो गर्मी की गहरी जुताई कर लें। रासायनिक उपचार और जैविक उपचार में भूमि शोधन कैसे करें डॉक्टर साहब?
0: रासायनिक उपचार में आप कार्बेंडाजिम है, हाँ उससे आप भूमि का उपचार कर सकते हैं। जैविक में है सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता जो है वो है ट्राइकोडर्मा और वेवियाना बेसियाना। इन दोनों से आप क्या कहते हैं अपना खेत का भूमि उपचार कर सकते हैं।
1: 1 एकड़ की बात करें तो 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या ब्यूवेरिया
0: विवेरिया
1: बेसियाना ले लें।
0: वैसियाना ले सकते हैं जी।
1: कितनी गोबर की सड़ी खाद दें?
0: 60 से 70 kg गोबर खाद, या फिर आप इसको वर्मी कंपोस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। आप उसको एक गीले बोरे से ढक दीजिए और 7 से 8 दिन बाद आप उसको अपने खेत में अंतिम जुताई के बाद इसको डाल सकते हैं।
1: और बीज शोधन की बात करें तो
0: बीज शोधन, ये जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बच्चों को जैसे टीकाकरण करते हैं बिल्कुल वही चीज इसमें भी है। तो आप जब भी बीज की रोपाई करने जा रहे हैं, बिजाई करने जा रहे हैं, तो आप उसको उससे पूर्व शोधित कर लें। इसको शोधित करने के कई उपाय, रासायनिक भी है, जैविक भी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो और आप इसे अपने घर में भी कई चीजें होते हैं जिनका उपयोग करके आप इनका शोधन कर सकते हैं।
1: जैसे रासायनिक बीजोपचार की बात करें, बीज शोधन की बात करें, तो फफूंदजनित बीमारियों से
0: जी,
1: बचाव के लिए कौन कौन सा
0: जैसे
1: फफूंदीनाशक?
0: अभी जो खरीफ का मौसम है, सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई बहन धान की बिजाई करते हैं। हमारे यहाँ धान की बहुत ज्यादा खेती होती है, तो उसके लिए उसमें बहुत से फफूंद रोग होते हैं, बहुत से आपके कीट होते हैं, जिनको हमें अगर पहले से उनका उपचार कर दें तो वो खेत में नहीं दिखाई पड़ते हैं। और जैसा आपने कहा, धान में ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, सीड ब्लाइट आदि कई कवक ऐसे वो होते
1: और
0: हैं, सीड
1: डैम्पिंग
0: बॉल,
1: ऑफ भी?
0: डैम्पिंग ऑफ भी है नर्सरी में बहुत ज्यादा ये लगता है। तो इसके बचाव के लिए आप कार्बेंडाजिम, या फिर आप इसकी जगह
1: थीरम?
0: थीरम है, थायोफेनेट है, थायोफेनेट मेथाइल है, जो कि आप 2-2 ग्राम लेके पर केजी के हिसाब से इसका उपचार कर सकते हैं। अगर आप एक उदाहरण के लिए 20 kg धान लिए हैं, तो उसमें कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम लीजिए,
1: प्रति किलोग्राम
0: हाँ
1: बीज
0: प्रति
1: के
0: किलो के हिसाब से। 20 kg के लिए आप
1: 40 ग्राम।
0: चालीस ग्राम लेंगे, हाँ। फिर उसको आप करीब 30 लीटर पानी में घोल बना लीजिए और धान को इसमें भिगो दीजिए। 24 घंटा भिगोने के बाद निकाल दीजिए इसको, फिर छाए में बोरी से ढक के रखिए। उसके बाद आप उसको नेक्स्ट डे सोइंग कर सकते हैं उसका।
1: और आजकल फफूंदी नाशक में कई रेडी मिक्स भी आ रहे
0: जी
1: हैं,
0: हाँ, एक
1: जैसे
0: है
1: कार्बेंडाजिम और थीरम का
0: थीरम का
1: कॉम्बिनेशन।
0: कॉम्बिनेशन है, एक इसी तरीके से साल्ट्रो आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी कई फंजीसाइड्स के मिक्सअप हैं।
1: और जहां बीज शोधन जैविक तरीके से करना है वहां?
0: जैविक विधि से करना हो तो आप ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का 2 से 2.5 ग्राम आप
1: यानी माचिस की 1 डिबिया, 1 किलो बीज।
0: 1 किलो बीज में ये ले सकते हैं आप इतना।
1: और बहुत सारे बायो एजेंट्स हैं,
0: जी,
1: जैसे
0: एजोवेक्टर है और आपका बायो फर्टिलाइजर है, ये इसको धान के लिए आप यूज कर सकते हैं। एजोस्पर्लियम है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें दलहनी फसलों में आप राइजोबियम

0: कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी बढ़ाता है और जर्मिनेशन के लिए भी अच्छा होता है।
1: और फास्फेटिका कल्चर
0: हाँ, पीएसबी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं,
1: सभी फसलों में?
0: सभी फसलों में कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे बायो एजेंट्स हैं, जैसे स्यूडोमोनास है या ब्यूवेरिया बेसियाना से भी दीमक की समस्या है, भूमिगत कीट
0: जब
1: है।
0: आपकी भूमि में दीमक लग रहा है या सफेद लट लग रहे हैं, तो आप ब्यूवेरिया बेसियाना से भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते
1: बीज
0: हैं।
1: शोधन,
0: बीज बीज
1: माचिस,
0: शोधन भी कर सकते हैं, भूमि शोधन भी कर सकते हैं,
1: तो बीज शोधन में माचिस की एक डिबिया 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से
0: प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे किसान भाई बहन अपने घर का बीज प्रयोग कर रहे हैं, तो बीज शोधन के पहले क्या नमक के घोल में
0: जी
1: भी?
0: हाँ बिल्कुल, तो माना कि आप रसायन नहीं ले रहे हैं, माना कि आप जैविक ऐसा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा और सस्ता बीज शोधन का एक ये भी तरीका है कि आप अपने घर पे अगर धान का ले रहे हैं, तो आप उसको 10 लीटर में करीब
1: 1 किलो,
0: 10 लीटर में करीब 200 ग्राम आप नमक का घोल बना लें और उसमें आप अपने बीज को डालें, और डालते वक्त धीरे धीरे उसको डंडी से घुमाते रहिए। इससे क्या होता है, जो हल्के बीज हैं आपके या जो रोग वाले बीज हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, और जो भारी बीज होते हैं जिन्हें हम अच्छे बीज में गिनते हैं वो नीचे दब जाएंगे। तो वो हल्के बीजों को आप हटा दें और फिर उस अच्छे बीजों को निकाल के 2-3 बार साफ पानी से धुल के आप प्रयोग कर सकते हैं उसको।
1: तो जो भी खरीफ की फसलें हैं उनकी बुआई के पहले एक एक दाना बीज का शोधन करें किसान भाई बहन, और जिस खेत में बोने जा रहे हैं या रोपने जा रहे हैं
0: जी
1: उसका भूमि शोधन आवश्यक है?
0: हाँ, भूमि शोधन और बीज शोधन दोनों ही एक बहुत आवश्यक चरण है जो सारे हमारे किसान भाई बहनों को अपनाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में भूमि और बीज शोधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी बिल्कुल, 9415300763, 9415300763, 94-1534-300-700-763।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में भूमि और बीज शोधन के बारे में डॉक्टर प्रियंका सिंह?
0: हम चलते चलते यही कहेंगे, आप लोग शोधन करिए, बीज शोधन करिए, भूमि शोधन करिए, साथ में जितना हो सके आप हरी खाद का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार और हमारी भूमि दोनों ही हरी खाद मांग रही है। सरकार का भी यही कहना है कि आप हरी खाद प्रयोग करें, इससे हमारी जो भूमि दूषित हो गई है वो अच्छी हो जाएगी।
1: यानी अगर खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ाना है
0: तो वो
1: और जो भी खरीफ फसलें हैं उनकी भूख मिटानी है तो हरी खाद का प्रयोग
0: अपनाना
1: जरूर
0: है,
1: करें किसान भाई बहन, और भूमि और बीज शोधन शत
0: आवश्यक।
1: प्रतिशत जरूर करें। डॉक्टर प्रियंका सिंह, आज आप कार्यक्रम में आई और खरीफ में भूमि और बीज शोधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान और किसान के अंतर्गत एक भेंट वार्ता डॉक्टर प्रियंका सिंह से। विषय था खरीफ में भूमि और बीज शोधन, और आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। थाना रिसिया जनपद बहराई से रामचंद्र सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी रूपा कुमारी 7 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 28 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ व चेहरा गोल है। घटना के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिलती है तो वो थाना रिसिया जनपद बहराइच को सूचित करें। थाना फखरपुर जनपद बहराइच से शालू देवी सूचित करती हैं कि उनके पति भीमसेन 10 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ व चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिले तो वो थाना फखरपुर जनपद बहराइच को सूचित करें। साथ ही इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6393341105। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 6393341105। थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती से जनाब जमील अहमद सूचित करते हैं कि उनके पुत्र सुहेल 21 मई 2026

0: पुलिस को शाम 3 बजे से लापता है। इनकी उम्र 18 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा व चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने हरा कुर्ता व सफ़ेद पजामा और नीली गोल टोपी पहनी हुई थी। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिले तो वह थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को सूचित करें, साथ ही इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9082487767। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9082487767। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
4: राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पी जी आई एम एस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, वह प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में सतीश चंद्र श्रीवास्तव के स्वर में ये भोजपुरी लोकगीत। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं ये कहरवा।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में सतीश चरण श्रीवास्तव के स्वर में ये भोजपुरी लोकगीत। आइए सुनते हैं अब ये खेमटा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में सतीश चरण श्रीवास्तव के स्वर में ये भोजपुरी लोकगीत। मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:15 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे विविध कार्यक्रमों के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ हो रही हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवर्टिक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवर्टिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी CGM ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सात से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले 3 दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूवेस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग

0: 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 11:10 पर। आज का विषय है विरासत। कार्यक्रम में उपस्थित होंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00 सुनिएगा डॉक्टर करुणा शंकर दुबे की वार्ता, साहित्य और जीवन संतुलन में योगदान। खेल जगत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें आज नवदृष्टि के अंतर्गत सुनिएगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन पर अदिति उमराव से ज्योति वर्मा की भेंटवार्ता आप सुनेंगे लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक पर डॉक्टर नेत्रपाल सिंह यादव जानकारी देंगे खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। आपसे बातचीत की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई गजलों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार वादन हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुन सकेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 19 जून 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 11:10 पर। कल का विषय होगा पर्यावरण। कल कार्यक्रम में होंगे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में आप सुनेंगे कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर। कल की स्वास्थ्य चर्चा का विषय होगा जरूरी है पैरों की देखभाल। जानकारी देंगी नीना सोनकर और समय होगा प्रातः 7:00। राजकुमार झा का पखावज वादन हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। प्रीति लाल के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। अपराजिता कार्यक्रम होगा दिन में 1:15 पर। पशुओं में चारा विषाक्तता कारण और निवारण पर डॉक्टर केशव कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता सुनिएगा विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर। साइबर अपराध मोहित बजाज की ये वार्ता आप सुनेंगे युवा तरंग कार्यक्रम में कल शाम 5:10 पर।

नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें हमारी नज़र में सुनिएगा लोकतंत्र में नागरिक अभिव्यक्ति, जन स्वर और लोकतंत्र, अमिता की ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम। परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव, डॉक्टर सौरभ राय की ये वार्ता होगी लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर। कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर। आलेख एवं वाचन है नवेद शिकोह का और संपादन है डॉक्टर सुशील कुमार राय का। अंग्रेजी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, जिसमें कल सुनिएगा एन इंटरव्यू विद कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड मीडिया कंसल्टेंट प्रियंका दीक्षित। इंटरव्यूअर होंगी डॉक्टर शीबा राकेश। हिंदी कार्यक्रम होगा रात 8:00, जिसमें कल सुनिएगा कला संस्कृति और चेतना का संगम रंगमंच, इस विषय पर ललित पोखरिया से सुरेंद्र राजेश्वरी की भेंट वार्ता। साबरी ब्रदर्स की गाई कव्वाली का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में कल रात 8:10 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि और आज लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसा विषय जो हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, जो हम सभी के लिए एक वरदान भी है और अभिशाप भी बन सकता है। जी साथियों, अब आप सोच रहे होंगे, ओफो सुरभि ने आते ही आते ये क्या बम फोड़ दिया, आखिर ऐसा कौन सा खतरनाक विषय है जिस पर सुरभि आज डिस्कशन करेगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। देखा साथियों, इतना खतरनाक विषय नहीं है, ये तो आप सभी का पसंदीदा विषय है। भाई, हमारी आँख खुलती है सोशल मीडिया पर अपडेट लेने से और आँखें बंद भी होती हैं सोशल मीडिया पर अपडेट लेने के बाद, है ना साथियों। सोते सोते हम एक बार तो ज़रूर सोशल मीडिया पर चक्कर लगा लेते हैं। भाई, आज दौर ही आज का डिजिटल है और इस दौर में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। हम घर बैठे कुछ ही पलों में दुनिया को घूम आते हैं। हमारे वर्चुअल दोस्तों के जीवन में क्या हो रहा है हमें तुरंत पता चल जाता है और अपनी एक्टिविटीज़ को भी हम लोगों से शेयर करते हैं। लाइक्स भी मिलती हैं और कभी कभी डिसलाइक्स भी मिल जाती हैं, है ना साथियों। तो सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों हम एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, दुनिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो सोशल मीडिया बड़ा ही उपयोगी है। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ये हमें जोड़ रहा है या बिखेर रहा है? क्या ये हमें सिखा रहा है या भटका रहा है? आपने कभी इन प्रश्नों पे गौर किया? और सबसे बड़ा सवाल तो साथियों ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या ये हमारा इस्तेमाल कर रहा है? है ना बात सोचने वाली? दोस्तों, सोशल मीडिया उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें अपनी कला, कौशल और विचार को अभिव्यक्त करने के लिए एक सुगम मंच देता है। जी दोस्तों, एक क्लिक के ज़रिए हम अपनी आर्ट को, अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। और प्रशंसा भी मिलती है, कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं। और इसके साथ ही कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी स्किल जिनके ज़रिए सुधार भी सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सोशल मीडिया हम सबके लिए उपयोगी है। कुल मिला के देखें तो सोशल मीडिया एक ऐसी खिड़की है जिसके माध्यम से हम दुनिया का कोई भी कोना घूम सकते हैं, झांक सकते हैं उस कोने में क्या हो रहा है। इस रूप में सोशल मीडिया का प्रयोग हम सबके लिए वरदान साबित हो जाता है।

लगता है। देश में कहीं भी कोई अन्याय हो रहा हो, हम सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं और वो बड़े महकमे तक पहुंच सकती है वो बातें, है ना। इसी तरह हमने अपने घर में कोई बढ़िया सी डिश बनाई या बढ़िया सी पेंटिंग की, उसे भी सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया, मन में कोई विचार आया, सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया और लोगों ने उसे सराहा, तो है ना वरदान। लेकिन दोस्तों, एक कहावत भी है कि अति का भला न बोलना और अति की भली न चूप। एक सीमा के बाद हर चीज़ नुकसानदेह हो जाती है। सोशल मीडिया का प्रयोग भी हमारे लिए अभिशाप बन जाता है जब हम अधिक समय तक सोशल मीडिया का प्रयोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि ये एक बुरी लत बन जाती है दोस्तों, जो हमारे कीमती समय को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, हम में से तमाम दोस्त ऐसे हैं जिनकी सुबह की शुरुआत ही सोशल मीडिया पर रील चलाने से होती है। और देखिए, अक्सर देखा गया है, पहले हम लोग किस लिए सोचते हैं कि चलो एक बार ये देख लेते हैं, एक रील 30 सेकंड की ही तो होती है, एक रील देखते हैं, दो रील देखते हैं और फिर 20 रील देखते हैं, और जब पलट कर घड़ी पे नज़र डालते हैं तो देखते हैं, अरे रील देखते देखते 2 घंटे बीत गए और हाथ में हमारे कुछ नहीं होता, बस थकी हुई आँखें होती हैं और खाली दिमाग। आप जानते हैं दोस्तों, रोज़ 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया देखना हमारी आँखों को कमज़ोर करता है, नींद को उड़ाता है और दिमाग को सुस्त भी बनाता है। जी साथियों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम अचानक से कुछ सुनते सुनते ही कहीं हम ब्लैंक, हमारा माइंड हो जाता है, हम अचानक से बातें भूलने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ का प्रभाव है कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, एक शब्द है डोपामाइन लूप। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है तो हम उस चीज़ को दोबारा करते हैं और करते हैं। सोशल मीडिया भी कुछ इसी तरह है। जितना रील्स स्क्रॉल करो, जितने पोस्ट स्क्रॉल करो, दिमाग कहता है और करो और करो, और फिर आधी रात हो जाती है और फिर आप सोचते हैं कि मैंने क्या पाया। अंदर से उत्तर मिलता है, कुछ नहीं, बस थकान पाई है। आँखों की रोशनी पे भी फ़र्क पड़ता है इससे, है ना साथियों। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की लत बहुत बुरी है और हम सभी चाहते हैं कि इससे निजात मिले। तो भाई, सुरभि किस मर्ज की दवा है। आज मैं आपको 5 गोल्डन टिप्स देती हूँ साथियों, तो इसके ज़रिए आप अपने आदत पर नियंत्रण रख सकते हैं और इस वरदान को अभिशाप बनने से बदल सकते हैं। साथियों, पहली टिप है डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि दिन में कम से कम 2 घंटे, जैसे खाना खाते वक्त या बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले फ़ोन को खुद से दूर रख दें। असली दोस्तों से बातें करें, किताब पढ़िए या कहीं कुछ नहीं, नीचे आप फ़ोन रख दीजिए और छत पर जाइए, खुली हवा का आनंद लीजिए, चांद देखिए, इतना खूबसूरत प्रकृति है, उसे देखिए, एंजॉय करिए, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। ये एक हिसाब से कहीं ना कहीं मेडिटेशन जैसा होगा। दूसरी टिप ये है साथियों कि नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। खाली जो ज़रूरी माध्यम है सोशल मीडिया के, तो उनकी नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं तो बीच बीच में वो जो पिंग की आवाज़ आती है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। और तीसरी ट्रिप है कि फॉलो जो करिए, मान लीजिए सोशल मीडिया आप चला रहे हैं तो जो भी चीज़ फॉलो करिए तो क्वालिटी कंटेंट फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे सभी चीज़ें बेकार हैं, कुछ नहीं मिलता। सोशल मीडिया पे भी बहुत सी जानकारी मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें प्रेरणादायी होती हैं, तो ऐसे ही कॉन्टेंट को फॉलो करना है, है ना। जो पेज आपको इनसिक्योर करे या जो एक दिखावे की दीवार बनाए, ऐसी चीज़ों को अनफॉलो करिए। फॉलो करिए उन लोगों को जो आपको सिखाते हैं, जो आपको हंसाते हैं, है ना, जो आपको ऊपर उठने में मदद करते हैं। तो ये तो हमारी 3 टिप्स हो गई। चौथी टिप्स है साथियों कि आप फैक्ट चेक करिए। देखिए, सोशल मीडिया जितना ही इजी माध्यम है जानकारियों को आगे बढ़ाने का, उतना ही अफवाह की गुंजाइशें इसमें ज़्यादा रहती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा संदिग्ध मैसेज है या जिसकी जानकारी

के विषय में आप संतुष्ट नहीं हैं, उसको प्लीज़ दोबारा ज़रूर चेक करिए। गूगल पे एक बार उसे फैक्ट उसका चेक कर लीजिए कि सच में ऐसी बात है कि नहीं है, और उसी के बाद उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करिए। इससे क्या होगा, अफवाह नहीं फैलेंगी। एक क्लिक से दोस्तों जिंदगी बदल भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, तो इस चीज़ की संवेदना को आप ज़रूर समझिए। और पांचवा बहुत ज़रूरी टिप है कि आप अपनी एक स्क्रीन टाइम सेट कर लीजिए। फ़ोन में डिजिटल वेलनेस का ऐप होता है, वहाँ आप लिमिट सेट कर लीजिए कि मान लीजिए 1.5 घंटा सोशल मीडिया है, तो पता चलेगा कि पूरा दिन कितना खाली है, तब आप उस दिन में उस समय में एक कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया एक हथियार है, जैसे हम चाकू का प्रयोग फल या सब्जी काटने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमने उस चाकू के प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो हमारा हाथ कट सकता है। वैसे ही सोशल मीडिया का प्रयोग करते वक्त हमें अगर सावधानी हम बरतेंगे तो वो सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। यही सोशल मीडिया वरदान से अभिशाप कब बन जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों किसी चीज़ का प्रयोग, कितना कोई चीज़ सदुपयोगी है कितना दुरुपयोगी है, ये हमारे प्रयोग करने के तरीके से निर्भर करता है। तो सोशल मीडिया का प्रयोग करिए, लेकिन अपना नियंत्रण रखिए, सोशल मीडिया के नियंत्रण में आप ना आइए। कार्यक्रम में वक्त हो चुका है गीत का, आइए सुनते हैं गीत, मिलते हैं गीत के बाद।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: दोस्तों, ईश्वर ने प्रकृति में कई रंग दिए हैं और मनुष्य में कई भावनाएं दी हैं, और उन सभी भावनाओं में जो सबसे ऊपर है वो भावना है प्रेम की। प्रेम वो भावना है जिसके जरिए ये दुनिया में लोग रहते हैं, जीवन है, रंग है, तरंग है। साथियों, प्रेम के तमाम रंग हैं। इन्हीं रंगों से आपका परिचय कराएंगी श्रेया सिन्हा। आइए सुनते हैं उनकी बात।
4: आजकल ना हर कोई मोहब्बत पर लिख रहा है, पर ना मुझे है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, मुझे है फियर ऑफ मोहब्बत। अब आप सोच रहे होंगे कि ओ से क्या, ओ तो मेरा एक्सप्रेशन है, तो मुझे है फियर ऑफ मोहब्बत, उप्स यार। तो मैं हूँ अनकही श्रेया। बातें तो मैं बहुत करती हूँ, पर शायद बातें नहीं कर पाती, इसलिए लिखती हूँ। खैर, एक रोज मैंने सोचा कि कुछ मोहब्बत पर लिखते हैं। ये दुनिया जिसे खूबसूरत कहती है, ये दुनिया जिसे इबादत कहती है, आज उसे अपनी कागज पर उतारते हैं। यह सोच मैं अपना हाथ मेज पर टटोलने लगी कलम की तलाश में। पहला कलम मुझे काले रंग का मिला। काले रंग के कलम देख मैं कह पड़ी, मोहब्बत काले रंग से लिखने वाली चीज थोड़ी ना है, इसे तो लाल फूलों से सजाया जाता है, इसे तो लाल रंग से निखारा जाता है, इसे तो लाल दिल से जताया जाता है। फिर क्या, मैं काले कलम को कोने में रख लाल कलम की खोज में चल पड़ी। और ये क्या, मेरे बगल में रखा हुआ था लाल कलम जिस पर पीले रंग की परत थी। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा, बस वही वाली बात हो गई। फिर मैं कलम लिए अपनी सखी के पास दौड़ी। सखी ने मुझे देखा, मैंने सखी को देखा। हमारे बीच ना काफी इंटेंस माहौल था। वो मुझे देख समझ गई, मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गई। मैंने उसे आंखों ही आंखों में बताया कि आज दिल में एक इच्छा आई है, कि मैंने उसे आंखों ही आंखों में बताया कि आज दिल में एक इच्छा आई है, मोहब्बत को कागज पर उतारने की दिल ने ख्वाहिश जताई है। वो मुझे देख मुस्कुराई, और ये वाली जो मुस्कुराहट थी वो थोड़ी अलग थी। वो जो आजकल हम व्हाट्सएप पर यूज करते हैं ना, वो स्मर्क वाली, वैसी मुस्कुराहट थी। मैं थोड़ा हिचकिचाई। उसने कहा, क्या लिखना चाहती हो मोहब्बत पर, जिसे तुम रंगों में बांट आई? मैंने कहा, अरे मोहब्बत लाल रंग से ही लिखी जाती है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो उसने कहा, मोहब्बत कभी किसी को बांटती नहीं, मोहब्बत कभी किसी को बांटती नहीं, चाहे वो रंग हो चाहे हो इंसान, मोहब्बत तो खुदा से मिलाती है, मोहब्बत तो खुदा से मिलाती है, ये तो तुम हो जिसने भगवे और हरे में बांट दिया हिंदुस्तान।

0: कुछ ना कह सकी। मेरी आंखें जमीन को तक रही थी और मेरी सखी मुझे। हमारे बीच सन्नाटे की लहर सी आई। इस सन्नाटे को चीरते हुए उसने मुझसे दोबारा पूछा, क्या लिखना चाहती है मोहब्बत पर? मैंने कहा, वही वही जो सबको पसंद आए, वही जिसे सुन सब मुस्कुराए। वो कहती, मुझे सच्चाई के सिवाय कुछ ना आए, ये फर्जी बातें मैं ना कर पाऊं। मैंने कहा, ठीक है यार, सच ही बता दे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। जिस पर ये जमाना इतना मरता है, उस पर आखिर क्या लिखा जाए? उसने कहा, अपनी आप बीती लिख दे। मैंने कहा, क्या? मेरी आप बीती? मैंने कहा, जमाना अधूरे प्यार की कहाँ सुनता है, जहाँ मोहब्बत मुकम्मल ना हुई, जहाँ मोहब्बत हमारी बाहों में ना हुई, ऐसी मोहब्बत पर आखिर कौन लिखता है? वो मोहब्बत जो हमारे दहलीज पर दस्तक देकर चली गई, वो मोहब्बत जिसे हम रोक ना पाए, वो मोहब्बत जिसे हम पूरा ना कर पाए, वो मोहब्बत जिसमें हम ना हो पाए, वो मोहब्बत जिसे हम अपना ना कर पाए, ऐसी मोहब्बत पर आखिर कौन लिखता है? वो मुस्कुराई और मुझे गले लगाई। मेरे हाथों में कलम देख उसने कहा, कोशिश तो कर, शायद कुछ लिख जाए। हाथ कांप रहे थे मेरे, पर ना मैं कागज पर एक शब्द ना लिख पाई। मोहब्बत हमें रासी नहीं आई, इसलिए हमने उस पर कभी हुकूमत ना चलाई। वो कह रहा था कि मुझे रोक लो, पर मैं समझ ना पाई, और इस तरह मोहब्बत हमें रासी ना आई। खैर, मैंने पूछा मेरी सखी से कि तुझे हुई है मोहब्बत? उसने कहा, बहुत बार। मैं कलम लेकर तैयार थी। मैंने कहा, बोल, आज तेरी मोहब्बत पर मैं लिखूंगी, पूरी दुनिया तेरी मोहब्बत की दास्तां सुनेगा। वो हंसने लगी और बोली, अरे पगली, जब पहली बार इस दुनिया में आंखें खोली थी तो माँ को देख हुई थी मोहब्बत, जब घर हार कर आई थी और पापा ने मेरी फेवरेट चॉकलेट लाई थी, तब हुई थी मोहब्बत, जब जमाने ने हाथ छोड़ा पर दोस्तों ने साथ निभाया, तब हुई थी मोहब्बत, और जब खुद पर यकीन आया, तब हुई थी खुद से मोहब्बत। मैं फिर कुछ ना कह सके। हमारे बीच फिर से शांति की चादर आ गई और मुझे ये समझ आया ना कि मोहब्बत एक पन्ने में सिमटने वाली चीज नहीं, मोहब्बत सिर्फ प्रेमी से करने वाली चीज नहीं, मोहब्बत तो खुद में एक किताब है। मोहब्बत तो खुद में एक किताब है, शायद इसीलिए मोहब्बत हर किसी को समझ आती नहीं। फिर मैंने कलम उठाया और अंततः मैं कागज कोरा ही छोड़ा। शुक्रिया
1: जी। दोस्तों, मोहब्बत का कागज कोरा ही होता है जिसमें आप रंग भरते हैं। दोस्तों, प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, एक अनुभव नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा है जो हमें माँ की गोद से दोस्ती की बेंच तक, पहले प्यार की बारिश से लेकर आईने में अपने प्रतिबिंब तक ले जाती है, और हर रंग हर मोड़ पर हमें कुछ सिखाती है। बस हमें उसे महसूस करना है, उसे पहचानना है, और सबसे ज़रूरी, उसे जीना है। क्योंकि प्यार कहीं बाहर नहीं, प्यार हमारे भीतर है, और जब हम इसे भीतर पा लेते हैं तो पूरी दुनिया प्यारी लगने लगती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, ये वक्त है जब हम सभी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और सफलता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति की भी परीक्षा होती हैं। लाखों अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो योजनाबद्ध तैयारी करते हैं। तो साथियों, आज मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कुछ टिप्स जो आपकी सफलता की राह को और आसान करेंगे और मंजिल को करीब लाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो जरूरी है कि हम अपने गोल को क्लियर रखें, यानी कि जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट निर्धारित होगा और भटकाव नहीं होगा तो हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाएंगे। जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि परीक्षा को क्रैक करने से पहले ज़रूरी है कि आप सिलेबस को क्रैक करें। उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, रोज़ उसके टॉपिक्स को पढ़िए, इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है इस विषय की समीक्षा करिए और तब आप अपनी तैयारी को दिशा दीजिए, रणनीति निर्धारित करिए। दूसरा दोस्तों, सबसे बहुत ज़रूरी बात है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाएं और उसका नियमित रूप से पालन करें। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों विश्राम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। जी साथियों, देखिए साथियों, पहली बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपका स्वास्थ्य। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनी पढ़ाई पे आपका फोकस होगा। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने टाइम टेबल को भी फॉलो कर पाएंगे। इसलिए ये बात मेक श्योर करिए कि आपके टाइम टेबल में आपकी हेल्थ के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए ज़रूर समय हो और उसको कतई स्किप मत करिए। तीसरा टिप है साथियों कि नियमित अध्ययन और

और रिवीजन। जी दोस्तों, कहते हैं जिसका रिवीजन, जो भी काम आप कंटिन्यू करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। केवल नया पढ़ना पर्याप्त नहीं है, जो पढ़ चुके हैं उसके नियमित रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो विषय लंबे समय तक याद रहे और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखिए, चाहे आप जो भी समय निर्धारित किया है पढ़ाई का, उसे ज़रूर उस समय पे पढ़ाई करिए, और जो भी पढ़ा है उसे ज़रूर हफ्ते में दो बार या दिन में एक दिन में दोहराइए ज़रूर उसको। चौथा बहुत ज़रूरी टिप है साथियों, वो है अपने आप का आकलन करना ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे वो कैसे संभव है, तो साथियों मॉक टेस्ट, यानी कि आप घर में या जो है किसी टेस्ट सीरीज़ में से, या ऑनलाइन भी आजकल टेस्ट अवेलेबल हैं, तो उन्हें टेस्ट लगाकर देखिए और अपना आकलन करिए कि मैं कितना मेरा तैयार है और मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, कितना मुझे कवर करना है और क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। स्मार्ट स्टडी के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि हम PYQs को सॉल्व करें, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका हम अध्ययन करें। जी साथियों, आपका सिलेबस अध्ययन करने तो ज़रूरी है ही है, आप अपने पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी पढ़िए, उनको देखिए कि क्या किस टॉपिक से कितने वेटेज का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर जब आप दोबारा सिलेबस जब उठाएंगे तब आपको अपने सिलेबस की और डीप नॉलेज होगी और आपको मालूम होगा कि हमें किस टॉपिक पे अधिक फोकस करना है, किस पे कैसा हमें तैयारी करनी है। तो इससे साथियों परीक्षा का लेवल पता चलता है, प्रश्नों की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, ये पता चलता है, और फिर किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये भी हमें पता चलता है। तो हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ जानने का मौका मिलता है जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। साथियों पाँचवा टिप्स है कि सही अध्ययन सामग्री का चयन। तो साथियों सही अध्ययन सामग्री का चयन तभी होगा जब आप पिछले चार जो ये सुझाव हैं उनको फॉलो करेंगे। तो अपने मन से जैसे आप मॉक टेस्ट लगाए हैं, आप PYQs किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी अध्ययन सामग्री फिर समझेंगे कि मुझे ये पढ़ना है। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय साथियों सीमित और प्रामाणिक स्रोतों पर ही ध्यान दें, इससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती है और तैयारी अधिक प्रभावी होती है। तो मित्रों सफलता की यात्रा में सकारात्मक सोच का बहुत महत्व होता है। जी साथियों असफलता यदि मिले तो उसे सीखने का अवसर समझें, ये नहीं कि अगर आप एक परीक्षा में फेल हो गए हैं तो फिर अगली बार आप अपनी कलम तोड़ दें और बिल्कुल नेगेटिव सोचें, बिल्कुल नहीं। वो पेपर उठाइए और देखिए कि कहाँ कमी रह गई है, जैसा कि वो कविता है ना, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। तो उन कमियों को देखें, निराश ना हों, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागें और पढ़ाई अपना, नहीं मैं ये तो कतई नहीं कहूँगी कि नींद चैन को त्यागें, ये तो कविता का अंश था। तो इसी तरीके से अपना नींद भी पूरी लें, अपनी डाइट को भी अच्छा रखें और मेहनत करें और पॉजिटिव सोच बनाए रखें। इसके लिए कुछ हॉबीज़ को फॉलो करें, कुछ प्रोडक्टिव हॉबीज़ को फॉलो करें ताकि आपकी कमियों का विश्लेषण हो सके, और पुनः प्रयास करें। और याद रखिए साथियों कि हर सफल व्यक्ति ने संघर्ष और चुनौतियों का सामना किया है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो अंत में यही कहना चाहती हूँ साथियों कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर मेहनत करिए, अनुशासन, आत्मविश्वास और सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफलता की कुंजी है, है ना साथियों। तो कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक कविता का, तो आइए सुनाते हैं आपको एक कविता। दोस्तों ये कविता मेरी बहुत पसंदीदा है कि खग उड़ते रहना जीवन भर। दोस्तों कविता इस तरह है कि खग उड़ते रहना जीवन भर, तू भूल गया है अपना पथ और नहीं पंखों में गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही।

देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, तेरी खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर। दोस्तों, इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी आनंद मिश्रा का नमस्कार, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। और हाँ, इतना ज़रूर है कि इस समय जो मौसम की मार है वो सभी लोग झेल रहे होंगे, लेकिन कई बार हमारे मन में सवाल भी आता है कि ये जो गर्मी इतनी पड़ रही है इसके पीछे का कारण क्या है, और आने वाले समय में हम अपने भविष्य को क्या देकर जाने वाले हैं, क्योंकि इतिहास बहुत याद किया जाता है। अगर इतिहास में हमने कुछ अच्छा किया है तो हमें अच्छे के लिए याद किया जाएगा, और अगर इस तरीके के कार्य कर रहे हैं जैसा कि अभी फ़िलहाल हम लोग प्रकृति के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इतिहास हमें इसी तरीके से याद करेगा, और लोग कहेंगे कि इतिहास में कैसे कैसे लोग रह के गए जिन्होंने हमारे लिए एक अच्छी हवा भी नहीं छोड़ी, अच्छा पानी भी नहीं छोड़ा, और इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां हो गई हैं। क्योंकि हम जब आज इतिहास को याद करते हैं तो हम तो अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए न सिर्फ बलिदान दिया बल्कि बहुत सारे साहसिक कार्य भी किए। और इसी कड़ी में आज हम याद कर रहे हैं भारत की वीरता और नारी शक्ति की प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई को, जिनकी शहादत दिवस को आज हम एक तरीके से देश प्रेम के रूप में याद कर रहे हैं। और महारानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ, उन्होंने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया था तब रानी लक्ष्मीबाई ने उनका डटकर सामना किया था, और उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया था। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास में युद्ध करते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और उनका ये बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे अमर अध्याय बन गया। लेकिन साथियों, आज के समय में अगर हम महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन को याद करें तो हमें पता चलता है कि कितना आत्मविश्वास था उनके जीवन में, कितना साहस था उनके जीवन में, और क्या दृढ़ संकल्प था उनके जीवन का कि लगातार वो डटकर परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, कितने भी कठिन क्यों ना रही हों, उन्होंने लगातार डटकर सामना किया। अन्याय और अत्याचार के सामने उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया, और इसीलिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए उनका जीवन संदेश हमेशा से प्रेरणादायी रहा है और आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाला रहा है। और इसीलिए हम युवाओं को भी और लोगों को भी जो आगे भविष्य में एक नई उड़ान भरना चाहते हैं उनके लिए उनके जीवन से सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी कह सकें कि विजयी भव।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: साथियों, जैसे अभी हम इतिहास के पन्ने पलटते हुए हमने महारानी लक्ष्मीबाई को याद किया, ठीक उसी तरीके हम आज बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को, क्योंकि आज तिथि के अनुसार उनका शहादत दिवस है और उनका पूरा जो जीवन काल रहा है वो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया उसकी वो याद दिलाता है। और देखिए साथियों, जब हम इतिहास के पन्नों पर नज़र डालते हैं और हम ये सीखते हैं कि इतिहास में किस तरीके के महान विभूतियां किस तरीके हुई हैं और पहले क्या समय था और किस तरीके से काम हो रहा था, और समय के साथ साथ जब हमारी संस्कृति बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है और तमाम जो आसपास की एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं वो सब कुछ बदल जाता है। और ये ज़रूरी हो जाता है कि जब समय बदल रहा हो तो समय के साथ हम भी थोड़ा सा परिवर्तन करें, और इसीलिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जिस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है खासकर डिजिटल तौर पर, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आज के युवाओं के लिए।

0: और आज के युवाओं के भविष्य के लिए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरीके के इनोवेशन हो रहे हैं और उसका लोगों के जीवन पे किस तरीके का असर पड़ रहा है, लोगों के कार्यों पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथी कपिल तिलहरी जी ने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम विशेषज्ञों से बातचीत की। तो इस बातचीत को सुनिए और ये समझने की कोशिश करिए कि हम समय के साथ खुद को इस रफ्तार में कैसे रख सकते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नई उड़ान और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त कपिल। हमारे सेगमेंट प्रगति पथ में आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। आखिर कैसे नई तकनीक हमारे जीवन, शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं को बदल रही हैं। आइए जानते हैं लोगों की राय।
2: मेरा नाम युवराज चौधरी है, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ।
1: युवराज, आप टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है दिन पर दिन, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं?
2: जी, हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे अब टेक्नोलॉजी की अन्य सेवाओं से हमारा काम बहुत ही आसान और सरल हो गया है और हमारे पास कई तरह के गैजेट्स भी उपलब्ध हो गए हैं, जैसे मोबाइल फोन है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है हमारे लिए, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और बैंकिंग सुविधा का समय बचाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ चुका है और शिक्षा को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं। और इसी तरह हम अगर इसका सही तरीके से उपयोग करें तो हम बहुत इसको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं और घर बैठे जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं वो लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और पेमेंट में जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई हमारा व्यक्ति दूर है, हम उसे कैश ना दे पाए तो हम उसे ऑनलाइन पेमेंट कर पूरे वक्त में उसका सहयोग भी कर सकते हैं।
3: मेरा नाम दिव्यांशी अरोड़ा है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एक वैज्ञानिक औजार है और इनोवेशन वो सोच है जो इसे एफिशिएंटली यूज करना सिखाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज घर बैठे नेसेसिटीज एक्सेस करना हो या मुश्किल वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन और बिजनेस ग्रोथ, ये सब इसी का एक हिस्सा है। लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाता है। मैनकाइंड आज टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुकी है कि अगर हमने इस डिपेंडेंसी को कंट्रोल नहीं किया तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देने लगेगा। मेरा मानना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए होना चाहिए, हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए नहीं। हम डिजिटली तो सबसे कनेक्ट हो गए हैं पर शायद रियल कनेक्शन कहीं पीछे छूट रहा है। बदलाव ज़रूरी है पर लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। इनोवेशन का मकसद हमें एम्पावर करना है, अपना गुलाम बनाना नहीं, क्योंकि हद किसी भी चीज़ की हमेशा हानिकारक ही साबित होती है।
4: मेरा नाम अक्षांश पांडे है। आज की दुनिया तेजी से आगे बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने का तरीका, सीखने का तरीका और सोचने का तरीका बदल दिया है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है। मैं खुद एक वीडियो एडिटर हूँ और मैंने बहुत करीब से महसूस किया है कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव फील्ड को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। पहले एडिटिंग में घंटों और कभी कभी दिनों दिनों का समय लग जाता था, लेकिन आज एडवांस सॉफ्टवेयर, AI टूल्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी की वजह से काम ज्यादा फास्ट, स्मूथ और क्रिएटिव हो गया है। अब हम सिर्फ वीडियोज एडिट नहीं करते बल्कि इमोशन, स्टोरीज और आइडिया को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन हर जगह, हर फील्ड में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और एंटरटेनमेंट, हर जगह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव साफ दिखाई देता है। भारत भी इसे डिजिटल क्रांति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन एजुकेशन और UPI जैसी सुविधाएं यह दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं, विकास का एक माध्यम बन चुका है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स को नहीं बल्कि ड्रीम्स को भी पावर देती है।
1: तो दोस्तों, अब इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नंदिनी सिंह, जो कि एक BTech स्टूडेंट रह चुकी हैं और उसके अलावा ये एक एक्टर भी हैं। नंदिनी, आपने कंप्यूटर साइंस और थिएटर दोनों अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव इंडस्ट्री और परफॉर्मिंग आर्ट्स को किस तरह डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया है?
5: मैंने BTech किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और मैं अभी भारतेंदु नाट्य अकेडमी से मास्टर्स मेरा खत्म होने वाला है। दोनों फील्ड्स में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। सबसे पहली बात तो दोनों चीज़ों में मुझे कुछ चीज़ें ऐसा कॉमन लगी कि हाँ, जैसे कंप्यूटर साइंस या टेक बेस्ड

जो चीजें हैं वो थोड़ा डेटा बेस्ड है. यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम लाइव चीजें कर रहे हैं, बट दोनों में ही एक कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब डील करने की चीज होती है. पर जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से, जो सबसे पहले तो जैसे हम लोगों के पास एक फिजिकल ऑडियंस, लिमिटेड ऑडियंस थी या सिर्फ स्टेज था, टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ग्लोबल रीच जो बड़ा है उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज और करने के मायने बदल गए हैं. प्लस क्रिएटिव प्रोसेस में भी कितना चेंज हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से

0: प्लेटफॉर्म या ग्लोबल रीच जो बड़ा है उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज और करने के आईने बदल गए हैं, प्लस क्रिएटिव प्रोसेस में भी उतना चेंज हुआ है. जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी हम साउंड लाइटिंग डिज़ाइन या प्रोजेक्शन या जो भी हम वर्चुअल सेट्स बना पाते हैं, तो ये स्टोरी टेलिंग को एनहांस ही किया है टेक्नोलॉजी ने. फिल्म मेकिंग में अगर हम देखें, CGI एडिटिंग में, जो भी AI टूल्स हैं, उसने एक्सपेरिमेंटेशन को एक्सेसिबली बनाया है, उसको और एफिशिएंट बनाया है. प्लस अभी किसी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं कि वो ऑनलाइन अपना टैलेंट या अपनी जो भी उसकी कैपेबिलिटीज है शोकेस कर सकता है, खुद से ही पोस्ट कर पाते हैं, उसके पोस्टर्स जो बना पाते हैं. सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हेल्प हुई है कि हम जो भी हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्रिएटिविटी कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सपैंड कर सकें, उसका प्रमोशन कर सकें.
1: टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हम हर फील्ड में ही देख रहे हैं, हर जगह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर इंसान इस चीज़ से अपडेटेड रहे. AI को हम देख रहे हैं कितना आजकल बढ़ गया है, तो AI के बारे में हम जितना जान सके और उसको एज अ टूल अपनी लाइफ में यूज़ कर सके, ताकि वो हमारी हेल्प करे एक टूल की तरह.
2: यानी तकनीक ने शिक्षा को नई दिशा दी है. जी हाँ दोस्तों, अब हमारे साथ हैं जसविंदर कौर जी, जो कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और ये एक मेकअप स्टूडियो चलाते हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है जसविंदर जी हमारे कार्यक्रम में.
3: थैंक यू कपिल जी.
2: क्या आप ऑनलाइन पेमेंट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस के लिए?
3: हाँ जी कपिल जी, मैं बहुत टेक्नोलॉजी का आभार मानती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है. जहाँ लोग पहले मैनुअली वर्क करते थे, वहाँ आजकल हम लोग को बहुत सुविधा हो गई है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट ले सकती हूँ क्लाइंट से, और उसके बाद सोशल मीडिया की वजह से मेरा जो काम है वो मैं लोगों तक पहुँचा सकती हूँ. ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए.
2: तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप किस तरीके से करती हैं, मतलब अपने बिजनेस को लेके?
3: बिजनेस को लेके अगर मैं कहूँ तो टेक्नोलॉजी में आजकल जैसे AI का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो उसी तरह से मैं भी अपने बिजनेस में जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है मेरे काम को सोशल मीडिया पर देखने के बाद, और वो मुझसे सुझाव मांगते हैं कि वो शादी या पार्टी में किस तरह का लुक चाहेंगे, तो उसके हिसाब से मैं उनको करती हूँ कि AI के माध्यम से मैं उनको उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट मेकअप या उनको लुक उनके दिखा सकती हूँ कि कैसा लगेगा उनके ऊपर, और उस हिसाब से उनको अपने लुक चूज करने में भी बहुत आसानी हो जाती है. साथ ही साथ इसकी वजह से जो ऑर्डर मिलने में हमें बहुत हुई है, क्लाइंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है. जो चीज हम पहले उनको डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाते थे, वो अब कहीं भी बैठे हुए उनको सिर्फ एक क्वेरी आती है, वो एक क्वेश्चन हमसे करते हैं और हम उन तक पहुंचा सकते हैं. तो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए जिनके थ्रू हम क्लाइंट तक बहुत आसानी से पहुंच पाते हैं, और इससे बिजनेस को बढ़ावा तो मिलता ही मिलता है. और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को बहुत आसानी हो गई है कि हम लोग घर बैठे ही कुछ भी सीख सकते हैं. मेरे पास ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकती हैं, दूर होती हैं, दूसरे छोटे शहरों में रहती हैं और वो इतनी दूर नहीं आ सकती लखनऊ जैसे बड़े शहर में, तो वो मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होके, अलग अलग माध्यम है जिनके थ्रू हम उनको घर बैठे क्लासेस दे देते हैं, और वो अपना घर बैठे ही जो चार्जेस होते हैं वो हमें पे करते हैं, और उसके बाद वो सक्षम हो जाती हैं, उनका भी एक स्किल डेवलप हो जाता है और वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं. और ये बहुत कहते ना जैसे दुनिया मुट्ठी में हो गई है, वही वाला हिसाब हो गया है कि आप घर बैठे ही अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाएं और अपने बिजनेस को बढ़ावा दीजिए.
2: तकनीक छोटे व्यापारों के लिए भी अवसरों के नए दरवाजे खोल रही है. तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं डॉक्टर अनामिका गुप्ता सूरी, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में.
4: थैंक यू कपिल जी.
2: तो आप थोड़ा सा बताएं कि हेल्थ सेक्टर में इसका कितना प्रभाव आया है?
4: आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. जो मेडिकल फील्ड में आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व बढ़ गया है, जो भी मैनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जो हम लोगों की होती हैं वो टोटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गई है. टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम डायग्नोस बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम ट्रीटमेंट लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं. अब हमको किसी तरह की मतलब हार्ड कॉपी नहीं रखनी होती है, पेपर नहीं रखना होता है, सारे एक स्क्रीन पे हमें किसी भी पेशेंट का कहीं पर भी उसका सारा डिटेल मिल जाता है. ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, और ऐसा नहीं ये सिर्फ हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, ये पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है.
2: तो क्या अभी ऐसा भी हुआ है कि जो रोगी है या बीमार व्यक्ति है वो ऑनलाइन भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं डॉक्टर्स उनको या इस तरीके से?
4: जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक्चुअली अब हमारे टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी के थ्रू और एआई के थ्रू बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि जिससे कि हमारे पास ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें पहले से अवेयर कर देता है। इनफैक्ट उसकी सूचना डॉक्टर तक पहले स्वयं ही पहुंच जाती है, जिससे हमारी इमरजेंसी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो यथासंभव पहुंचाई जा सकती हैं। हाँ, और ये भी है कि बाय द वे हम जिस शहर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम वहाँ नहीं हैं, तो ये सुविधा हमारे और पेशेंट के बीच में हो गई है कि हम कहीं पे भी हों हम ऑनलाइन किसी प्रकार का भी ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मरीज की परेशानी को समझ सकते हैं और उसे एडवाइस भी कर सकते हैं कि उसे क्या करना है।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव साफ दिखाई दे रहा है।
2: तो दोस्तों, हमारे साथ अब हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर्ष श्रीवास्तव जी, करते हैं इनसे बात इस विषय पर। तो हर्ष जी, आपका क्या मानना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके?
3: आज की दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी चीज है। पहले जो काम घंटों में होते थे, आज टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ सेकंडों में ही हो जाते हैं। चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्मार्ट हॉस्पिटल्स। इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए गैजेट बनाना नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को स्मार्ट सॉल्यूशन देना भी होता है। इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, वो इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी का सही यूज करना उतना ही जरूरी है जितना इनोवेशन। जिसके लिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हो या फिर और भी जो सिलिकॉन वैली कंपनीज जो हमारे इंडिया में आ रही हैं, उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो हमारी 10 ईयर्स फर्दर इंक्रीज करेंगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: टाइम सेविंग, इजी कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट, बेटर हेल्थ केयर, जो कि आजकल के कितने भी बड़े से बड़े हार्ट के ऑपरेशन हमारी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यूथ में, और वो बहुत ही कम मेहनत में आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। स्मार्ट वर्क हो गया, पेपरलेस सिस्टम जो कि हमारे डिफॉरेस्टेशन के लिए भी काम करती है कि कितने पेड़ काटे जाते हैं साल दर साल और पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, पॉपुलेशन चीज़ें तो उसमें भी काफी हेल्प करता है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो है ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि आप दुनिया के एक कोने से बैठकर दूसरे कोने तक भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो नॉलेज के किसी भी क्षेत्र की बात करी जाए। पहले के समय पे जहाँ पे एक ही क्षेत्र की या एक ही एरिया की फिल्में देखी जाती थी, अब हमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स के बारे में पता है। तो ये सब मुमकिन हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, जो कि एक दुनिया को एक नए और बेहतर आयाम की तरफ ले जा रही है।
2: अच्छा हर्ष, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति जो लोग अवेयर हैं वो तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है कि वो बेसिक चीजों को सीखना जरूरी है आगे जो आने वाला समय उसके हिसाब से?
3: ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी की वो शहरों से ज्यादा गाँव में के लोगों के लिए है। सबसे बड़ी चीज जो तोड़ती है टेक्नोलॉजी वो है भ्रम। हमने शहर में रहकर दुनिया देखी है, पर जो व्यक्ति गाँव में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है और जिसने अपने गाँव के इर्द गिर्द कुछ और देखा नहीं, उसे दुनिया के मायने नहीं पता है, वहाँ के ना सिर्फ लड़के ना की लड़कियाँ, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स रहे हर चीज को लेकर, एज को लेकर, कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे गांव में 40 साल का आदमी सोचता है कि मेरी जिंदगी खत्म है, अब मुझे कुछ जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, अब मुझे 10-20 साल में खत्म, बस बेटी की शादी, बच्चे की शादी नहीं चले जाएंगे। बट अगर आप डिजिटली प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करते हैं तो आप देख पाते हैं कि दुनिया में 40 साल के लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कई ऐसे एक्टर्स है, बूमन ईरानी हो गए जो अपनी उन्होंने लेट जाने शुरू की थी, एक बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं और हैरी पॉटर के जो सेवेरस स्नेप का रोल करते थे, उन्होंने भी 40s में ही शुरू किया था और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और कह सकते हैं कि जीने का मजा भी आता है जब आप सब कुछ देख लेते हैं, सारे ऑप्शन जो आपके सामने होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ। तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी चीज है, बशर्ते इसका गलत इस्तेमाल ना हो जैसे फ्रॉड वगैरह, बट सही अवेयरनेस के साथ सही चीजें लोग भी जाएंगी और एक बेहतर सोसाइटी बनने के भी हेल्प करेंगे।
2: AI, ऑटोमेशन और नई तकनीकें भविष्य की दुनिया को और स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। तो श्रोताओं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन केवल तकनीक का बदलाव नहीं बल्कि सोच और जीवन शैली का भी बदलाव है। आज के प्रगति पथ में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई उड़ान के किसी और सेगमेंट में।
4: तो साथियों, अभी आपने जाना कि कपिल जी ने अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत किया और ये जाना कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, और इस टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट भी इसमें हमारा भरपूर साथ दे रही है।

भी है। अब देखिए ना, जिस तरीके से एआई की बातचीत हुई, इसमें कई लोगों ने कहा कि एआई के टूल्स जो है बदल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति तक पहुँचे, एआई टूल्स हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया कि प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है, ताकि इसके तहत विस्तार दिया जाए और जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक भी इंटरनेट की पहुँच आसान हो। और दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम ये किया कि 1.5 लाख युवाओं को मुफ्त में एआई ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी यूपी सरकार और आईबीएम स्किल फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ, और इसके तहत अब राज्य के लगभग 1.5 लाख युवाओं को मुफ्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिजिटल स्किल प्रशिक्षण है उसको भी विस्तार दिया जाएगा, और इसमें भी राज्य कौशल विकास मिशन के तहत 3 लाख छात्रों को और पेशेवरों को एआई, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका आने वाले समय में रोजगार के रूप में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम कहीं टेक्नोलॉजी से पीछे ना रह जाएं या हम कैसे आगे बढ़ें इस टेक्नोलॉजी के साथ, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपग्रेड होना है और दिल में हाथ रख के बस एक ही बात बोलनी है, ऑल इज वेल।

तो भाई ऑल इज़ वेल तो बोलना है, लेकिन साथ साथ में आपको टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रहना है। ये बहुत ज़रूरी बात, जो कि हमने पहले भी कही थी, वैसा करना भी है। और देखिए, अब समय हो चुका है, हम आपसे विदा लें, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी हमें ज़रूर बताया करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। हमारा पिन कोड है

202-6001। इसके अलावा आप हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है नई उड़ान यानी naiudan.airlko@gmail.com। मिलेंगे आपसे फिर से किसी नए दिन एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। राम नरेश पांडे निवासी गोपालपुर हमें सूचित करते हैं कि विजय लक्ष्मी जिनकी उम्र है 36 वर्ष, कद 4.5 फीट, रंग गेहुआ, दुबला पतला शरीर है और इनका चेहरा गोल है। ये 14 मई 2026 से कहीं लापता हैं। विजय लक्ष्मी के दाहिने कलाई पर भंवर जी लिखा है। जिस समय लापता हुई इन्होंने लाल साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस पते पर दे सकते हैं, थाना प्रभारी, थाना गिलौला, श्रावस्ती। राम दुलारे निवासी चहलवा कोतवाली भिंगा श्रावस्ती से हमें सूचित करते हैं कि आरती देवी उर्फ नीरज कुमारी जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 157.5 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा औसत और इकहरा बदन है। इनके कमर पर दाना फुंसी है। आरती के बाल लंबे और काले हैं। ये 3 माह की गर्भवती हैं और जिस समय लापता हुई इन्होंने काला दुपट्टा हरा सलवार सूट पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7068809642। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 7068809642। एक और प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी नीतू उर्फ शिवानी जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ है, ये कहीं लापता है। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस पते पर दे सकते हैं, थाना प्रभारी, थाना AHTU, जनपद औरैया। एक और प्राप्त सूचना के अनुसार सुनील रावत बहराइच से हमें सूचित करते हैं कि सांवरिया जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा चौकोर है, ये 26 अप्रैल 2026 दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच से कहीं लापता है। इनकी आंखें सामान्य हैं और बालों का रंग काला है। सांवरिया मानसिक रूप से कमजोर हैं। जिस समय लापता हुए इन्होंने पीला कुर्ता, काली जीन्स और सफ़ेद जूता पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 7081554827। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 7081554827। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTU-UP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और

0: विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स तो सुनना न भूलें।
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृत्वा वीवा टेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति। केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणाय 18,900 कोटिरूप्यकाणि विनियोजयति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीट यूजी इति पुनः परीक्षायै सर्वान् संबंधान अधिकारिणः जागरूकाः भवेयुरिति निर्दिष्टवान्। अमेरिका ईरान देशाभ्याम् आगामी 6 दिनपर्यन्तं व्यापक शांति संधि वार्तायां सहमतिः प्रकटिता। अपि च न्यूजीलैंड देशे FIH महिला नेशंस कप इति हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अंतरालेन विजित्य उपांत्यचक्रं प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्रिणः भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृतानि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आल्स्टोम संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा मार्टिन सियोन इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे विदेश कार्य मंत्रालयः अवदत् यत् प्रधानमंत्रिणः आल्स्टोम इत्यस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः च मध्ये आयोजिता चर्चा मोबिलिटी इति अथ रेल आधुनिकीकरणस्य अवसरेषु केन्द्रिता आसीत्। प्रधानमंत्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा च आर्थर मेन्स इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमंत्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषयेपि अवधानं दत्तम्। प्रधानमंत्री मोदी सायंकाले फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैन्युअल मैक्रों इत्यनेन सह वीवाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति। सः शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय संवादानां श्रृंखलायाः नेतृत्वं करिष्यति, यस्य परिसमाप्तिः बहुप्रतीक्षितेन मुख्य भाषणेन भवन्नस्ति, यस्मिन् भारतस्य खमस्पर्शिनं वैश्विक डिजिटल पदचिह्नं प्रकाशिते। वीवाटेक शिखरसम्मेलनं यूरोप देशस्य बृहत्तमं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इति आयोजनम् अस्ति, यत्र मोदी भारतस्य वर्धमानं नवान्वेषणात्मकं पारिस्थितिकव्यवस्थां प्रौद्योगिकीयप्रगतिञ्च प्रकाशयिष्यति इत्यपेक्षते। वीवाटेक शिखरसम्मेलनस्य अस्मिन् संस्करणे भारतस्य बृहत्तमं राष्ट्रीयमण्डपं भविष्यति, यः भारतीय यूरोपीय नवान्वेषणव्यवस्थायाः मध्ये सहभागित्वस्य अपारसम्भावनायाः उपयुक्तं प्रतीकं भविष्यति। प्रधानमन्त्री विशेषप्रवासीनां कार्यक्रमे भारतीयसमुदायस्य सदस्यान् अपि सम्बोधयिष्यति। केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणं करिष्यति। ग्राम विकास मंत्रालयानुसारं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तत्संबद्ध ग्रामीण संपर्क उपक्रमाणां च अंतर्गतं ग्रामीण मार्गाणां निर्माणार्थं 18,900 कोटिरूप्यकाणि विनियोजितानि सन्ति। ग्रामीण मार्ग संपर्क परियोजनानां प्रगति मूल्यांकनं कर्तुं उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य मध्यप्रदेश ओडिशा राज्ययोः 5-दिवसीययात्रां प्रारब्धवती। यात्रायाः प्रथमदिवसे सा बैतूलनगरम् अगच्छत्, यत्र प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थया आयोजिते आध्यात्मिकजागरणेन जन

0: पश्चात् स्विट्जरलैंड देशः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ सार्धद्वादशवादने ग्रुप बी क्रीडायां बोस्निया हर्जेगोविना दले सम्मुखी भवतः। फीफा विश्वचषक स्पर्धायां कोलंबिया देशस्य विजयः। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: तो जय हिंद। लो कुश भैया।
1: हाँ रेणु दीदी,
0: पहले तो ये बताओ तुम इतने दिन बाद आज हमका मिलो, कहाँ रहो, हालचाल सब बढ़िया है ना?
1: बिल्कुल दीदी, सब बढ़िया है। का बताए दीदी, एक पहले तो शादी ब्याह हम बाजा रहे हैं हम, और अभी जल्दी में हमारे घर में जो है बेटी पैदा भई ही, तो जो है वही
0: अच्छा, तो वह हम खुशी मनावत रहे, वह एक लड्डू आए आज हमका खाए मिला इतने दिन बाद। भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो जब बिटिया होती है और कोई खुशी मनावत है ना, तो हमका तो भाई बड़ा निक लागत है। और हमका लागत है अब ज़्यादातर लोग मतलब लड़का बिटियन में भेद नहीं करत हैं,
1: एकदम
0: है
1: सही
0: ना?
1: कहें दीदी।
0: अब लोग बिटियन पर भी हम देखी था इतनी खुशी मनावत हैं जैसे उनका सही में साक्षात लक्ष्मी उनके घर में आ गई हैं। और पहले के तीना नाई कि मुँह फुला बैठ जाते हैं या जहो कहूँ ऐसे पता चला उनके ऊपर टूटा पड़ेगा और मार कोने में दुब के बैठे हैं, पूछो तो कहीं अरे का करी बिटिया घर में बिटिया हो गए, अब ऐसे गरीबी माटा गील हो गया। लेकिन अभी बहुत कहूँ कहूँ चाहे सुने के मिलत हो।
1: अब आपका बताइए दीदी, अब तो पहले देखत रहे लड़का जब पैदा हुआ रहा तो बहुत खुशी सब मनावत रहे, अब देखी थे कि बिटियों के उतने खुशी मनावत हैं, और जब जो है प्रसव कराए के लौटत हैं सब, तो देखी थे गाड़ी वाड़ी बढ़िया सजाए के और बढ़िया
0: हाँ।
1: बैंड बाजा बजाए के, मतलब लागत है कि केहू परिवार में आज बेटी के जन्म भा है, तो
0: हाँ
1: बहुत निक लागत है दीदी। और ये भेदभाव जब खत्म हुई तब भी हमारा समाज जो है आगे बढ़ी।
0: आगे बढ़ी बिल्कुल भैया। और देखो बढ़ी रहा है, अब अपनी बिटिया जो है कोई लड़कन से कम नहीं है,
1: कम नहीं है
0: चाहे
1: दीदी,
0: कोनो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ जो है वो अपन नाम और अपन परचम लहरा रही हैं
1: बिल्कुल
0: और
1: दीदी।
0: अपने मातारी बाप के नाम रोशन कर रही हैं। और हम ही पंचे नहीं, ई वादे की जो है देखो इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत प्रयास करी से,
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी,
0: ना? तब जो है इतने तिना के जागरूकता अभियान चलाए गए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत तमाम तिना की योजना अभियान सब चलाए गए, जिससे हमारे जो जनता है, जो समाज है, हमारा देश है, वो सब एकदम जागरूक हो गया है कि हाँ बिटिया कोई के ऊपर बोझ नहीं है। उनके लिए जो है तमाम तरह की योजना चलाए के सरकार उनके पढ़ाई लिखे में भी मदद कर रही है।
1: बिल्कुल दीदी, पढ़ाई लिखे में और बिटिया बोझ नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है दीदी। और देखें जब बिटिया पढ़त है लिखत है दीदी, वो बढ़िया से आगे बढ़त है, तो दुई परिवार जोन है बिल्कुल बनत है, दुई परिवार के बिल्कुल जोन है प्रगति हुत है, वह जब सक्षम बनी है वह आगे बढ़ी है, चूंकि ये जिस घर में बिटिया पैदा हुआ थी
0: हाँ
1: वहाँ तो अपन वो बढ़िया जोन है खाना पीना बनावे सीखा थी, और घर परिवार का जोन है खियावत पियावत ही, पढ़ लिख के आगे बढ़ा थी, कल का नौकरी भी वो का मिलत है, और वैसे जब शादी हो जाती दूसरे घर का जाते तो वह के नाम
0: और
1: रोशन
0: भैया
1: करत
0: एक
1: थी।
0: बात और है, नौकरी की बात कहो ना तो ये जानत हो कि आजकल लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बहुरिया आवे तो काम करे वाली, तो भाई हम काम तो हम सब जने मिलके कर
1: बिल्कुल
0: लेवे,
1: दीदी,
0: लेकिन अगर पढ़ी लिखी बहुरिया रही तो भाई चार पैसा कमाए के लाई और हाथ बटाई अपन, तो ये चीज़ सबके मन में रहा था कि हमका पढ़ी लिखी और जो ना नौकरी चाकरी वाली बहुरिया मिले, ये नहीं कि बस वह रोटी पानी बना लीस और काम खत्म होगा। तो इके बदे जो है आजकल जो है जो महतारी बाप भी बहुत मतलब प्रयास करते हैं कि हमारी बिटिया अच्छे से अच्छे पढ़ जाए, तो जो है उनका कोनो तिना के ब्याह गौने में यहाँ दिक्कत नहीं आवती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: दीदी,
0: इस सब मतलब बहुत मतलब देख के बड़ा बढ़िया लागत है कि बिटिया और लड़कन में कोनो भेदभाव नहीं कीन जाते हैं।
1: बिल्कुल दीदी। और एक चीज़ और है दीदी, अब देखें शादी ब्याह जोन है हर एक चीज़ के जोन, पहले का रहा एक दबाव रहत रहा, बिटिया डिसीजन नहीं ले पावत रही है, मतलब
0: हाँ
1: और अब का है दीदी, देखते हैं कितना अच्छे से जोन है खुद अपन जोन है खुद के जोन है
0: हाँ उनके जो निर्णय होते
1: निर्णय
0: है
1: रहत
0: ना
1: है,
0: उससे परिवार भी सहमत रहते हैं।
1: और अब दीदी बदलाव भी आवा है, अपन बहन बिटिया एक उदाहरण बन रही हैं समाज में, वह आगे बढ़ रही हैं, वह खुद से निर्णय ले रही हैं, वह दूर पढ़े जा रही हैं, नहीं तो पहले का रहा दीदी सब कुछ सीमित रहा है, एक समाज में डर रहत रहा कि बिटियां हैं इनका काव पढ़ावा जाए, और अब देखें वही बिटिए देख के एक दूसरे परिवार का जब आदमी देखत है कि उनके बिटिया पढ़ रही है, तो वह निर्णय लेके अपने बहन बिटिया का भेजे के भी शुरुआत कर दी।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: शुरुआत
1: दीदी,
0: करते हो भैया। ओके एक कारण यह है कि बिटिया दिखाइन है अपन की जो है हम कोई से कम नहीं हैं, चाहे वो
1: बिल्कुल
0: कोनो चाहे
1: दीदी,
0: विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे मास्टरी क्षेत्र हो, चाहे

0: डॉक्टरी क्षेत्र हो और चाहे सैनिक हो, चाहे मतलब कौन ही तिना के क्षेत्र में, यहाँ वे पीछे नहीं है, लड़कन के साथ कंधे से कंधा मिलाए के चल रही हैं। तो ये सब उन अपना कैके दिखाई ने तबे महतारी बाप यहाँ उनके ऊपर इतना भरोसा भवा है और जो है वे हर क्षेत्र में अपन नाम रोशन करी है, अपने ई घर के तो नाम रोशन करती हैं, साथे साथे जहाँ दूसरे घर में जाती हैं उन्हों के नाम रोशन करती हैं। तो ये सब देख के बड़ा नीक लागत है, बड़ा बदलाव आवा है, मतलब वे हर स्थिति परिस्थिति में यहाँ हमेशा तैयार रहती हैं जो है अपने घर वाले के साथ में या लड़ाई खातिर और हर आपदा से हर विपत्ति से जो है तैयार रहती हैं कि जो है हम पंचे साथ में या खड़े हैं ना आपके, यही तिना कोनो तिना की जो है परेशानी आ जाए तो हम पंचे पहले से अगर तैयारी करे रही तो हमका दिक्कत नहीं आवत है। अब जैसे मान लो इस समय पर देखो बरखा बूंदी जो है होए वाली है बहुत जगह पर हो लाग है, बहुत तिना की जैसे अब देखो ना पिछले महीना बहुत तिना के मार
1: आंधी आई,
0: हाँ आंधी तूफान आवा, इतनी इतनी नुकसान होएगा सबका कि उमा लोग मतलब जान ही नहीं पाए कि हम कैसे उनसे बची या कैसे उनसे निकली, लेकिन जब हमका पहले से हम पंचे तैयारी करे रही थे तो वही चीजन से उबरे में यहाँ हमका जो है आसानी रहा था, मतलब प्रबंधन बहुत जरूरी है
1: एकदम दीदी।
0: और यही बदे देखो आज हम एक बहुत अच्छी वार्ता लेके आए ना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन कैसे, मतलब हम पंचे ये चीजें में प्रबंधन करी और इसके बारे में यहाँ देखो बता रही हैं अदिति उमराव बहनी और इनसे देखो बातचीत कर रही है ज्योति वर्मा बहनी।
2: पंचो देखो हम लोग गांव रही थे और गांव रह के हम लोग खेती किसानी करे थे और ऐसे और बहुत सारे तमाम काम करे थे, मगर कबो कबो का हुआ थे कि बहुत तरह की आपदाएं आ जाती हैं, विपदाएं आ जाती हैं, ज्यादातर देखा जाए तो हम लोगों के पास जो है जागरूकता नहीं रहा थे। तो यही लिए आज अपने कार्यक्रम में यहाँ आई है अदिति उमराव बहनी जो है परियोजना निदेशक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ से, जो हमारा विषय है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन। तो बहनी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आपका।
2: तो बहनी हम आपसे पूछा चाहिए थे कि जैसे बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनका नहीं पता होता आपदाएं क्या होती हैं और कौनी कौनी तरह होती हैं।
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए आपदाएं तो सब जगह आती हैं, चाहे वो क्षेत्र ग्रामीण हो या वो शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह आपदाएं आती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों के रोजगार हैं वो मौसम पर बहुत ज़्यादा आधारित रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खेती करता है तो खेती बहुत ज़्यादा आधारित है मौसम पर, अगर अतिवृष्टि हो गई तो खेती खराब हो जाएगी, अनावृष्टि हो गई तो खेती खराब हो जाएगी, अगर शीतलहर पड़ गई पाला पड़ गया तो खेती खराब हो जाएगी। तो गांव के लोगों की आजीविका बहुत ज़्यादा मौसम पर आपदाओं पर आधारित रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 दुर्घटनाओं को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा भी 11 आपदाओं को अधिसूचित किया गया है, जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, ओलावृष्टि, कोहरा, शीतलहरी, बादल का फटना, चक्रवात, ये तमाम आपदाएं हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा, भूकंप, इनको केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। साथ ही 11 दुर्घटनाएं हैं, जैसे बेमौसम भारी वर्षा हो जाती कभी कभी जिससे फसलें पूरी की पूरी खराब हो जाती हैं, या आकाशीय विद्युत हो जाती है जिससे तमाम बड़ी संख्या में जनहानियां होती हैं, आंधी तूफान, अभी देखेंगे आप पिछले महीने आंधी तूफान से कितना ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव वन्य जीव द्वंद, डूबकर मृत्यु, साढ़ वन रोज के आघात से मृत्यु, इस तरीके की आपदाओं को राज्य सरकार द्वारा आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये जब घटनाएं हो जाती हैं या इनके होने के पहले लोगों को जागरूक करने के लिए हम तमाम तरीके के उपाय करते हैं, और अगर ये दुर्घटना किसी कारणवश हो ही गई तो उसमें राहत प्रबंधन भी किया जाता है।
2: बहनी जैसे कि सुनन की बरखा हुए वाली है तो उमा जो है बहुत सांप वाप काट लिए थे, तो इस तरह आपदान का हम लोग जैसे कैसे इनमें राहत पाई?
3: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सांप के काटने से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जनहानियां होती हैं क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान राज्य हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में आबादी रहती है और वर्षा के मौसम में या अन्य काल में सर्पदंश की घटनाएं सुनने में और देखने में आती रहती हैं। तो इसके लिए आम जनता को समय समय पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जागरूक करता रहता है कि किस तरीके से रात में टॉर्च लेकर निकलें, कोई हाथ में डंडी हो थोड़ा आवाज करते हुए निकलें कि अगर कोई सांप है तो वो वहां रास्ते से हट जाए, और सावधानी बरतने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है। इसके साथ ही हम ये भी लोगों से आग्रह करते रहते हैं कि झाड़ फूंक में समय व्यर्थ न करें क्योंकि सांप के काटने का उपचार एंटी स्नेक वेनम से ही किया जा सकता है, तो एंटी स्नेक वेनम जितना जल्दी से जल्दी मिल जाए इसके लिए सभी CHCs में, सभी हॉस्पिटल्स में इसकी सुविधा उपलब्ध रहती है, चिकित्सा विभाग इसके लिए बहुत जागरूक रहता है और वो लगातार वहां पर

0: तत्काल ट्रीटमेंट मिल जाता है मरीज को, तो उससे उसकी जान बच जाती है। तो सर्पदंश हो गया, डूबकर जैसे मृत्यु है, डूबकर मृत्यु की घटनाएं बहुत सारी सुनने में देखने में आती रहती हैं। तो लोग डूबने से कैसे बचें, किस तरीके की सावधानियां वो बरतें जब वो नदी के किनारे जाएं या किसी नहर के किनारे जाएं, तालाब के किनारे जाएं। कई बार लोग देखते होंगे विसर्जन करने मूर्तियों का जाते हैं, वहां बड़ी संख्या में गए और किसी का पैर फिसल गया। तो आम जनता के बीच में हम निरंतर सावधानियां कैसे बरती जाएं, क्या क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करें क्या ना करें, इसको सिखाते हैं ताकि लोग इन आपदाओं से स्वयं को बचा सकें।
1: भाई देखो, जैसे कभी वो जो खेत में किसान काम करा करते हैं तो अचानक से आंधी तूफान आएगा, ऐसे वज्रपात होएगा, तो इका कैसे बचाव करें और कैसे जागरूकता बढ़ावें?
0: बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए, मौसम विभाग लगातार चेतावनियां जारी करता है, अलर्ट्स जारी करता है खराब मौसम के। तो हमारी पहली प्रयास है वो ये है कि जन जन तक हमारी चेतावनियां पहुंचे। मौसम विभाग ने तो जारी कर दिया कि अगले 2 घंटे में तीव्र वज्रपात होने वाला है इस एरिया में, या यहाँ तीव्र आंधी तूफान आने वाला है, या यहाँ पर तीव्र वर्षा की आशंका है। तो ये उन्होंने बता दिया, लेकिन वो जो उनकी चेतावनी है अगर आम जनता तक समय से पहुंच गई तभी वो लाभ की है, अन्यथा वो लाभ की नहीं होती है। तो इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहुत सघन कार्य किया गया है कि जैसे ही मौसम विभाग अपनी चेतावनी जारी करता है तत्काल वो जन जन तक वो चेतावनी पहुंचती है। तमाम माध्यमों से हम चेतावनियों को पहुंचाते हैं। जो सचेत ऐप है, एक NDMA भारत सरकार ने उसको बनाया है, सचेत ऐप के माध्यम से जाता है। इसके अलावा सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जाता है। रेडियो बहुत अच्छा माध्यम है, रेडियो के माध्यम से जन जन तक चेतावनियां पहुंचती हैं, टेलीविजन के माध्यम से पहुंचती हैं। तो जो जो माध्यम है उन्हीं माध्यमों को हम इस्तेमाल में लाते हैं ताकि आम जनता तक हम तत्काल चेतावनियां पहुंचा सके विदाउट एनी डिले। जैसे वज्रपात है, वज्रपात की दशा में एक तो सबसे पहला उपाय ये है कि जो व्यक्ति बाहर है वो व्यक्ति बाहर से कहीं इंडोर चला जाए, अंदर चला जाए किसी कमरे के। तो कई बार ऐसा होता है कि धान लगा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं किसान भाई, तो वो अचानक से वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां कोई भवन तो बना नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होने की गलती कर लेते हैं। वज्रपात की दशा में पेड़ के नीचे खड़ा होना और घातक हो जाता है। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हैं, वो सुचालक का कार्य करता है, तो अगर कहीं बिजली सबसे पहले गिरने की संभावना बनेगी, आशंका होगी, तो वो पेड़ होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर वज्रपात की संभावना या वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्राप्त हुई है तो हम या तो अंदर चले जाएं कहीं इंडोर में, या फिर हम अगर बाहर हैं तो उकड़ू बैठ जाएं जमीन में, अपने दोनों घुटने मोड़ कर नीचे बैठ जाएं, सिर को अपना ऊंचाई जितना अधिक से अधिक कम कर सकें। तो कम करने के लिए लेटना नहीं है, हमें बैठना है, दोनों पैरों को जोड़ लेना है और जोड़ करके नीचे घुटने के बल हमें बैठ जाना है और सिर को हाथों से ढक लेना है। इससे जो संभावना है आपके ऊपर वज्रपात होने की वो काफी हद तक कम हो जाती है। वैसे ही आंधी तूफान अगर आने वाला है तो उसमें भी हमें प्रयास करना है कि हम इंडोर चले जाएं। तो मतलब कुल मिलाकर के हम अगर किसी आपात स्थिति में हैं तो हमें ये जरूर सीखना होगा कि हम उस स्थिति से बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है कि हम जन जन तक पहुंच रहे हैं और जन जन को सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी आपदा के दौरान जान बचाएं।
1: बहुत अच्छा बताया बहनी, मगर एक सवाल हमारे मन में और है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है गांव-गांव जाए कैसे आपदन के बारे में बताओ?
0: हम इसके लिए कोशिश करते हैं कि जितने सरकारी कर्मी हैं उनके, जो ग्राम स्तर तक के सरकारी कर्मी हैं उनका प्रशिक्षण अलग से दिया जा रहा है, पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण अलग से दिया जाता है। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होती हैं, हर गांव में कोई ना कोई स्वयं सहायता समूह चलता है, उसकी महिलाओं को अलग प्रशिक्षित किया जा रहा है। आम जनमानस के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से आयोजित किए जा रहे हैं। तो इतने सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, प्रयास ये होता है कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। इसके लिए एक और अच्छा अभिनव प्रयास पिछले कुछ समय से चल रहा है निरंतर, वो है आपदा मित्र का। आपदा मित्र उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बनाए गए हैं और ये आपदा मित्र कम्युनिटी के लोग होते हैं, कम्युनिटी वॉलंटियर्स होते हैं। ये वॉलंटियर्स प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इसके अलावा एक सेफ्टी किट प्राप्त करते हैं और इनका दायित्व होता है कि ये आम जनमानस के बीच में आपदाओं के लिए जागरूकता संवर्धन करेंगे। अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें राहत खोज बचाव का कार्य भी करते हैं। तो जन जन तक पहुंचने का, उसको प्रशिक्षित करने का, जागरूक करने का, क्या करें क्या न करें उसको सिखाने का, ये हमारा लक्ष्य होता है। इसके लिए

0: राज्य स्तर पर एक आपातकालीन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1070 है। कोई भी आपात स्थिति है, किसी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा, या कोई राहत से संबंधित प्रश्न है, या आपदा से चेतावनी से संबंधित उसको कोई प्रश्न है, तो वो 1070 नंबर पर, टोल फ्री नंबर है, उसमें कॉल करता है, उसको तत्काल 24 घंटे इस पर सहायता और उसको अपनी प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है।
1: भाई नहीं, अब हम जानना चाहिए थे कि अगर कोई तरह के आपदा हमारे गांव या आसपास घटित हो गए है, तो उसके लिए हमका कौन कौन सावधानियां बरतने चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा। जैसे शीतलहर है, मैंने आपको सर्पदंश की दशा में कौन सी सावधानियां बरती जाए मैंने बताया, आपको वज्रपात की दशा में बताया, आंधी तूफान की दशा में बताया। जैसे शीतलहर है, अब शीतलहर के दौरान कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के कारण बड़ी संख्या में जनहानियां होती हैं। उसमें हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम ऐसे समय में यात्रा न करें रोड पर जब बहुत ज्यादा कोहरा हो, हम जो फॉग के लिए विशिष्ट प्रकार की लाइट्स प्रयोग की जाती हैं उनका लाइट्स का प्रयोग करें, अपनी स्पीड को नियंत्रण में रखें। तो हर आपदा के लिए अलग अलग प्रकार के डूज एंड डोंट्स होते हैं और हम इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं लोगों को इसमें जानकारी देने का। न सिर्फ प्रशिक्षण और जागरूकता संवर्धन करते हैं, बल्कि अगर कोई आपदा घटित ही हो गई, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमने समस्त सावधानियां बरतीं और फिर भी कहीं किसी क्षेत्र विशेष में आपदा घटित हो गई, तो आपदा पीड़ित को राहत मिलती है। अगर उसकी पशु हानि हो गई तो भी आपदा पीड़ित को राशि मिलती है। अगर उसकी फसल खराब हो गई या उसका घर टूट गया, तो इस तरीके की जो आपदा से क्षतियां होती हैं, उन क्षतियों के लिए उसको राज्य सरकार राहत भी प्रदान करती है। इस राहत को प्राप्त करने के लिए वो कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय तहसील है वहां पर संपर्क कर सकता है। उपजिलाधिकारी इसके लिए नोडल हैं, अपर जिलाधिकारी हैं, उनके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, तो जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स होते हैं उनमें से किसी को भी वो अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, विवरण दे सकते हैं। वो स्थलीय सत्यापन करेंगे और उसके बाद अगर वो आपदा के कारण वो क्षति हुई है और वो राहत सहायता के लिए अनुमन्य है, तो उनको राज्य सरकार राहत सहायता भी उपलब्ध कराती है।
1: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ से नू परियोजना निदेशक अदिति उमराव बहनी जी आज हमारे कार्यक्रम में रही। देखो कत्ते सरल और प्रभावी ढंग से राज्य आपदा प्रबंधन की योजनाओं का, आपदा से पूर्व तैयारी और बचाव और नागरिकन के जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लोकेश भैया,
3: हाँ रेनु जी,
2: देखो ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन ये विषय पर इतनी बढ़िया तरह से जानकारी दीन अदिति उमराव बहनी और अतिन निकी तेना से उनसे बातचीत करें ज्योति वर्मा बहनी, इसके लिए इन दोनों जन का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो अब जानकारी हो गया है, कुछ मनोरंजन भी हो जाए।
3: बिल्कुल दीदी,
2: तो कहे ना एक लोक भजन सुन लीन जाए आज।
3: बिल्कुल सुन,
2: तो हम संजोली पांडे बहनी के स्वर में यहाँ लेके आए हैं, सीता सोचे अपने मन में और का सुना जाए।

0: लो कुश भैया,
1: हाँ रेनू दीदी,
0: देखो बड़ा नीक रहे भजन, हम तो खोए गए रहे
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी,
0: ना।
1: मजा
0: लेकिन
1: आएगा
0: भाई देखो जो है, अब खोए से काम न चली, कहे
1: एकदम
0: कि यहाँ
1: दीदी,
0: बरखा बूंदी वाला महीना देखो शुरू हो चुका
1: बिल्कुल
0: है और जगह जगह पर मौसम कबो कबो खराबो हो जाते हैं और बड़ी दिक्कत होए लागत है इसे महीना। और दिक्कत होते है, लेकिन कुछ चीज़ें दिक्कत तो पैदा करती हैं लेकिन वो अच्छी होती
1: वह
0: हैं अपने
1: दीदी हम वो
0: प्रकृति
1: कहा
0: के।
1: चाहते हैं,
0: हाँ
1: ये मौसम जोन है समय समय बदलाव बहुत निको
0: बहुत
1: है, और
0: नीक
1: यह टाइम
0: होते।
1: तो अपने पंच भैया के लिए तो बिल्कुल नीक है,
0: हाँ
1: जब बारिश हो जाते तो बिल्कुल जीव गदगद हो जाते हैं,
0: काहे
1: और
0: कहीं भैया गदगद काहे हो जाते हैं, काहे कहीं। अब देखो जैसे मौसम बदलत है तो कुछ ना कुछ, मान लो अगर तनिक परेशानी होते है
1: गर्मी
0: तो
1: से राहत
0: अच्छी,
1: मिलत
0: हाँ
1: है
0: और
1: दीदी
0: अच्छी चीजें लेके आवत है। और अपने खेती बाड़ी में
1: खेती
0: यहाँ
1: के,
0: तो भाई हर चीज मौसम पर आधारित तो होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: दीदी
0: अब इस समय पर यहाँ अपन जो प्रकृति है वो हमका जो बरखा बूंदी ये सब जो प्रदान कर रहे थे, इस समय पर हम पंचे बहुत सारी चीजें नई नई कह सके थे। अब जैसे इस समय का है ना कि हम पंचे अगर नए बिरवा लगावा चाहिए, नए
1: बिल्कुल
0: बाग
1: दीदी,
0: लगावा चाहिए, तो उनकी तैयारी के बड़ा मुफीद समय चल रहा है इस समय पर,
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी,
0: ना। उनके लिए हमका बस थोड़ी तैयारी अगर हम पहले से कर ली और सचेत हो जाए तो समझ लो कि हमार फिर जो है ना एकदम कहत नहीं है सोने सुहागा वाली बात हो
1: सोनेप
0: जाए।
1: सुहागा दीदी, और देखो गर्मियों के फायदा उठावे है, और
0: ओ हाँ
1: अब जो है हमें बरखा का फायदा, गर्मी के तो तैयारी हम सब है, बिरवा लगावे ताई बाग लगावे ताई कैलीन का है, और अपने पंच भैया भी कैले हुई है, और अब जोन है जैसे बारिश का इंतजार कर रहा है कि जैसे अच्छी बारिश हुई, एक दुई बारिश हो जाए तुरंत बिरवा
0: लगा दी
1: लगा दी जाए,
0: बिल्कुल। लेकिन भाई देखो कुछ तैयारी जोन होती है उसके ध्यान जरूर रखे
1: बिल्कुल
0: पड़ते
1: दीदी
0: हैं। मान लो अब जैसे भाई जोन लोग रहे हो तो उन माटी की जांच भाई का जरूर करावे चाहिए
1: बिल्कुल
0: कि कहाँ पर कोने तेना के पेड़ लगा सकत हो, या हमारी माटी में कोनो कमी है तो का हम पहले से पूर कर ले कि भाई पता चला हम मेहनत बड़ी करें और माटी जो माटी गुणवत्ता है उसका जचबे नहीं करें, और उससे कहा है कि हम पेड़ वेड़ जोन लगाए के बैठे ना, पता चला हमारे हिसाब से जो है बढ़ते
1: बिल्कुल
0: नहीं रहे।
1: आपके बात बिल्कुल सही दीदी, हम वही चीज़ सोचत रहे कि देखें पंच भैया अपन देखें एक के दो चीज़ के बहुत ज़्यादा ध्यान देखें, आप मिट्टी बतेबे भाई, और दूसर चीज़ जलवायु, और देख लिए कि अपनी वो पौधा उगत है कि नहीं, और नहीं तो का होते है शौक शौक में हम सभी देखा जाते कहूँ कुछ लाग है कोनो अच्छा पौधा, और सोचा जाता ये बिरवा ये बगिया हम अपने यहाँ लगा ली, तो वो सब मौसम और जलवायु के आधार पर हुआ है दीदी, तो ये सब चीज़ अपन पंच भैया जनतो हैं, और ये सब चीज़ के समय के ध्यानों भी देखे कि कब कौन जोन है पौधा हम का लगावे के
0: बिल्कुल भैया।
1: चाहिए,
0: और सबसे बड़ी बात है भैया कि जब नवा बाग लगाओ

0: ना तो लोग पहले गढ़ा जरूर खोद लेते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: दीदी,
0: है
1: वह हम कहें कि जो
0: ना।
1: है
0: तो
1: गढ़ा कहके, यानी गर्मी के वाले दिन की तैयारी अपने
0: हाँ,
1: पंच भैया कर
0: उके
1: लेने
0: पीछे
1: हैं।
0: के कारण कहा उठे जान सो कि जब हम कोनो चीज जैसे गड्ढा खोद लेन तो भाई उमा जोन किड़वा फतिंगा जोन कुछ जोन बीमारी आजारी होते, तो जब ये घाम खूब तेज जोन इस समय हो रहा है वो जब लागत है ना तो वही सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। और फिर उमा जोन है भाई गोबर के खाद भर दियो, जब वो सब थोड़े दिन गढ़ा खोद के डाल दियो,
1: बिल्कुल
0: फिर
1: दीदी,
0: गोबर के खाद भर दियो, और फिर जब समय आवे तो उका उलट पलट के तब देखो माटी कितनी नीक हो जाते भैया,
1: बिल्कुल। और
0: है ना।
1: गड्ढा बिल्कुल वही जहाँ आप सड़ी गोबर खाद डाले हैं वो सब बिल्कुल जो है वह चिन्हित करे रहें और वही लगाएं, तब फिर देखें पौधा बिल्कुल, जब पौधा लागे ऊपर है तो निश्चित दीदी के वृद्धि विकास अच्छा हुई।
0: बिल्कुल। और मान लो भाई अगर हमका तुमका जानकारी नहीं है तो भाई अपने जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं हुआ चले जाओ, वही तुमका बता दें कि तुम्हारे यहाँ की जलवायु के हिसाब से कौन पेड़ पौधा यहाँ नीकी तेना से लागी और
1: और
0: कौन
1: बिल्कुल
0: हमका।
1: दीदी, और कृषि हेल्प अगर ना जाए पाए तो कृषि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लिए।
0: बिल्कुल भैया, तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमका नवा बाग लगावे को तो ये छोटी छोटी बातें का अगर हम ध्यान देबे तो देखो हमका बहुत बढ़िया जोन है उसे उपज मिली और आगे हमारे जोन है जो बाग बगीचा है वो स्वस्थ रही
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: दीदी,
0: ये मान लो अगर हम कोनो काम करी थे तो उनकी तैयारी पहले करे चाहिए। अब जैसे कोनो चीज़ अगर हम पहले से तैयार कर ली तो हमका ओके बाजार में यहाँ भैया भाव बड़ा नीक मिलाती है।
1: एकदम
0: अगर
1: एकदम
0: मतलब कहे मतलब है कि कोनो चीज़ हम अगेती अगर अपने यहाँ लेके आए जैसे आगे से तैयारी करें तो भाई हमका जल्दी सामानों मिली और जल्दी हम बाजार में लेके जाबे तो हम कहो के जो है भाव ज्यादा मिली है। लेकिन इस सब चीज मान लो पहले अगर हम का लिए के तो वह के तकनीक होता ही नहीं कि बस हम गैन और सोचें और हमारा काम होएगा, हर चीज के तकनीक होता, वो तकनीक का जब अपनई हो तब भाई देखो तुम उन्नत किसान कहलाई
1: बिल्कुल।
0: हो।
1: अब खेती किसानी के बात करें दीदी, तो अगेती पछेती मध्यमा जब जैसे लगाई हैं वैसे कटी हैं, लेट कई दिन तो का भा, जब सबके उग रहा है वही समय पे आपके फसल
0: तो
1: उगी
0: भाई बाजार
1: और
0: भाव ना
1: मार्केट
0: निक
1: में आके
0: मिली।
1: भावे नहीं हैं। अब जैसे देखें गोभी वोभी के देखे थे दीदी कि जे अब यह टाइम लगा ले
0: हाँ
1: तो वह के तो भाई बढ़िया फायदा हुए, समय
0: बिल्कुल
1: से आगे पहले बाजार में पहले बार
0: भाई
1: जाए
0: महंग बिका
1: और
0: थे।
1: महंग बिकाए वो।
0: और तो ये सब चीजों के लेकिन तैयारी करे रहा थे। तो देखो आज हम यही तीना के भैया एक भेंटवार्ता भी लेके
1: का
0: आए
1: है
0: हैं
1: दीदी,
0: कि ताकि हमारे जो पंच भैया हैं वो पहले से जाने समझे और इससे जो है फायदा उठावे। देखो भेंटवार्ता है अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक, वार्ताकार हैं डॉक्टर नेत्रपाल यादव भैया और देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो इनके दोनों जन की बतकही सुनी जाए और जो है लाभ उठावा जाए।
1: बिल्कुल दी।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन जहां आप कर रहे हैं और इस मौसम में अगर अगेती फूलगोभी की खेती करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उद्यान निदेशालय उत्तर प्रदेश से उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर नेत्रपाल यादव। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां अगेती फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या कुछ संभावना है?
3: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बहुत सारी संभावनाएं हैं डॉक्टर साहब। जहाँ पे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो और बलुई दोमट मिट्टी हो वहाँ पे खेती करना बहुत उत्तम माना जाएगा।
2: तो तापमान अगेती फूल गोभी के लिए क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब?
3: अगेती किस्मों की खेती करने के लिए जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री होता है, क्योंकि अगेती किस्में जो होती हैं वो अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है और जब इनका फलने का समय आता है तब ये 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर
2: यानी जब
3: उच्च
2: फूल की
3: माना
2: अवस्था
3: जाता है।
2: हो।
3: जी,
2: तो उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिसको चुने किसान भाई बहन?
3: हाँ, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से वैरायटियाँ निकाली गई हैं। ये पूसा दीपाली, पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिक शंकर, अरली कुमारी, पूसा मेघना, पूसा कार्तिक, पंत गोभी 3, पंत गोभी 2, काशी कुमारी, काशी गोभी 25, पूसा अर्ली।
2: ये सब उन्नत प्रजातियां जिनको चुन सकते हैं अगेती के रूप में।
3: जी,
2: तो नर्सरी डालने का सबसे उपयुक्त समय क्या है?
3: जहाँ तक नर्सरी डालने का समय है जो जून के लास्ट सप्ताह तक नर्सरी डाल सकते हैं।
2: तो नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है अगेती फूल गोभी में?
3: हाँ, इसमें सबसे पहले ध्यान देना है किसान भाइयों को कि ये बारिश का मौसम है, इसमें जो है जो नर्सरी डालने के लिए खेत का चुनाव जो करेंगे उसमें 1 मीटर चौड़ी मतलब 3 फीट चौड़ाई होना चाहिए और लंबाई अपनी आवश्यक

0: आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। और जो क्यारी बनाना है किसान भाइयों को, वो जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा रखना है, जिससे उत्तम जल निकास हो।
1: यानी लगभग 6 से 8 इंच
0: जी
1: ऊंचा हो,
0: जी जी जी जिसमें
1: और
0: पानी न भर सके, बारिश का
1: जल निकास अच्छा हो
0: अच्छा हो
1: जाए।
0: जाए।
1: तो नर्सरी तैयार करने की कई विधियां होंगी, ये तो
0: जी,
1: क्यारी विधि हो
0: एक
1: गई।
0: क्यारी विधि है, एक पोट्रे विधि है,
1: हाँ
0: जिसमें किसान जो है पोट्रे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट का मिक्सचर जो है भरकर, और एक एक सीड जो है उन छिद्रों में डाला जाता है,
1: जी
0: तो उससे जो है जल्दी भी मिल जाती है पौध, और उसमें तना गलन की समस्या कम होती है।
1: तो पोल्ट्री में जहां तैयार कर रहे हैं, क्या इसके लिए पाली हाउस में रखना पड़ेगा?
0: हाँ, इसके लिए किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि उद्यान विभाग द्वारा हम हमारे सभी जनपदों में हाईटेक नर्सरी जो है संचालित हैं, जिसपे किसान भाई अपना अगर खुद लेके जाते हैं, बीज देते हैं, तो विभाग के द्वारा खाली उसको उत्पादित कर

0: कर रहे हैं, क्या इसके लिए पॉली हाउस में रखना पड़ेगा?
1: हाँ, इसके लिए किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि उद्यान विभाग द्वारा हम हमारे सभी जनपदों में हाईटेक नर्सरी जो है संचालित हैं, जिसपे किसान भाई अपना अगर खुद लेके जाते हैं, बीज देते हैं, तो विभाग के द्वारा खाली उसको उत्पादित करने का लागत लिया जाएगा जो 1 रुपये है,
0: जी
1: और अगर विभाग के द्वारा सीड लेके किया जाता है तो वो 2 रुपये प्रति पौध लगेगा।
0: यानी हर जनपद में जो हाईटेक नर्सरी हैं या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं,
1: जी जी
0: वहाँ अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार है
1: हाँ, नर्सरियाँ तैयार हैं और किसान भाई जाके वहाँ से पौध प्राप्त कर सकते हैं।
0: और सीधे रोपाई कर सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: सीधे रोपाई कर सकते हैं।
0: लेकिन जहाँ किसान भाई बहन सीधे नर्सरी अपने खेत पर तैयार करना चाहते हैं, तो और कौन-कौन सी बारीकी है?
1: उसमें बीज दर का, जैसे अगेती किस्मों के लिए प्रति एकड़ 250 से 300 ग्राम बीज लगता है, और संकर किस्मों के लिए 100 से 150 ग्राम
0: और एक
1: बीज।
0: एकड़ में रोपाई के लिए अगेती फूलगोभी की कितनी पौध की आवश्यकता होगी?
1: लगभग 15,000 से 18,000 पौध की आवश्यकता होती है।
0: तो जहां नर्सरी डाल रहे हैं वहां बीज शोधन भी आवश्यक होगा।
1: जी, बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, बीज शोधन करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 घंटे तक बीजों को इस घोल में भिगो कर रखना है,
0: हाँ,
1: और उसके बाद उसको छांव में सुखाकर बो देना है।
0: और जब नर्सरी डाल रहे हैं तो क्या लाइनों में डालना
1: हाँ,
0: आवश्यक है?
1: लाइनों में नर्सरी डालना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ रेतीली भूमि होती है वहाँ फसल उगाने में तना गलन की समस्या आती है,
0: हाँ,
1: तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 50% को 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से शोधित करके बुआई करना चाहिए लाइनों में।
0: क्या जैविक फफूंदी नाशक से भी बीज शोधन कर सकते हैं, भूमि शोधन भी?
1: जी, भूमि शोधन करने के लिए ये ट्राइकोडर्मा है हर्जेनियम, 10 ग्राम
0: प्रति किलोग्राम
1: प्रति
0: बीज के
1: किलोग्राम
0: हिसाब
1: बीज के दर से शोधित करके बुआई कर सकते हैं।
0: कितने दिन की नर्सरी रोपाई के लिए तैयार होगी डॉक्टर साहब?
1: 40 से 45 दिन की नर्सरी, या 4 से 6 सप्ताह पुरानी नर्सरी हो, जिसमें 3 से 4 पत्तियों वाली पौध हो, उसको जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर पे रोपाई करना चाहिए।
0: यानी 4 से 6 सप्ताह पुरानी जो
1: जी
0: पौध है जिसमें 3-4 पत्तियां हैं,
1: जी जी
0: उनकी रोपाई 1.5 गुणे 1.5 फीट पर करें किसान भाई,
1: जी जी
0: क्या रेज्ड बीज विधि सही रहेगी?
1: हाँ, बारिश का मौसम है तो रेज्ड बीड जो है अति उत्तम रहेगा, जिससे पानी का निकास आसानी से हो सकेगा और रोग जो है कम लगेंगे।
0: डॉक्टर साहब, आजकल प्रति बूंद अधिक फसल की बात हो रही है, यानी कम पानी में अधिक सिंचाई की बात हो रही है, तो क्या इसमें भी माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग हो सकता है?
1: जी, इसमें जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से जो पानी और खाद को सीमित मात्रा में प्रति पौध पहुंचाया जाता है, जो बूंद बूंद करके
0: यानी
1: पौधे,
0: फर्टिगेशन के माध्यम से।
1: हाँ, फर्टिगेशन भी हो जाएगा और पानी की सिंचाई भी हो जाएगी साथ में, और इसमें हमारा 80% जल का संचय किया जा सकता है।
0: बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन अगेती फूलगोभी में कैसे हो?
1: खरपतवारों के लिए निराई गुड़ाई करके खेत को साफ कर लें, या फिर जब रोपाई करने के 1 दिन पहले पेंडेमिथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ छिड़काव कर दें।
0: बहुत सारे हानिकारक कीट और बीमारियों का भी प्रकोप होता है, चूंकि अगेती फसल होती है तो ढेर सारी समस्याएं आती हैं।
1: जी, फूल गोभी में सबसे हानिकारक कीट है डायमंड बैक मोथ, जिसमें ये हरे रंग के कीड़े जो है पत्तियों के निचले हिस्से पे रहते हैं, जो उसे खाकर छलनी कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम,
0: यानी आधा ग्राम।
1: आधा ग्राम प्रति लीटर, या फिर नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर
0: पानी
1: की
0: के
1: दर
0: हिसाब
1: से
0: से छिड़काव कर
1: छिड़काव
0: दें।
1: करें।
0: क्या कोई जैविक उपाय भी है,
1: ब्रेसिलस थ्रूजेनेसिस है,
0: यानी
1: इसका भी
0: बीटी?
1: प्रयोग कर सकते हैं, बीटी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: कभी कभी रस चूसने वाले कीड़े भी, जैसे माहों का
1: जी जी
0: प्रकोप होता है।
1: माहू का प्रकोप होता है, तो इसके नियंत्रण के लिए एमिडा क्लोरपिट 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर, या थियोमैक्सम 0.3 ग्राम प्रति लीटर का।
0: यानी थायोमेथाग्जाम

0: या इमिडाक्लोप्रिड की आधा ग्राम मात्रा आधा ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक की बात हो रही है तो फूल गोभी में कुछ विकार आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे भूरापन होता है या फूल छोटे रह जाते हैं या कई ढेर सारी समस्याएं आती हैं।
1: हाँ, इसमें जो है सूक्ष्म तत्वों की कमी से जो शारीरिक विकार आते हैं उसमें एक है ब्राउनिंग, भूरापन, जो बोरान के तत्व की कमी से होता है। इसमें किसान भाई जो है बोरेक्स जो है 1-2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं
0: फसल पर। और इसके अलावा
1: विप्टेल एक आता है, शारीरिक विकार है, जो मॉलीब्लेडिनम सूक्ष्म तत्व की कमी से होता है, जिसमें अमोनियम मॉलीब्लेट का 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं।
0: इसमें पत्तियों का चौड़ा भाग विकसित नहीं हो पाता।
1: हाँ, इसमें पत्तियों का चौड़ा भाग जो विकसित नहीं हो पाता है, केवल बीज की मोटी नस बढ़ती है बस,
0: और इससे पत्ती व्हिप की तरह से चाबुक की तरह
1: जैसी दिखती है।
0: और जो बटनिंग की समस्या आती है,
1: बटनिंग का सबसे बड़ा कारण है कि नाइट्रोजन की कमी से या फिर पुरानी पौध की रोपाई से,
0: अगर बहुत पुराना पौध है तो।
1: जी।
0: और इसके अलावा कई बार फूल की सतह पर मखमली या दानेदार या चावल के दानों जैसी बिखरी हुई भी विकार दिखाई देते हैं।
1: हाँ डॉक्टर साहब, ये रेसिनेस कहते हैं इस विकार को। इसमें जो है मखमली और दानेदार चावल जैसी दिखाई देती है फूल की सतह। इस पे फूल बनते समय अगर तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है और अधिक नाइट्रोजन के कारण भी यह विकार देखा गया है।
0: यानी संतुलित उर्वरक का प्रबंधन आवश्यक है।
1: संतुलित उर्वरक और मौसम के अनुसार सही किस्म का चुनाव बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उद्यान निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 8896535421 8896535421 88-96-53-54-21।
0: डॉक्टर नेत्रपाल यादव, आज आप कार्यक्रम में आए और अगेती फूल गोभी की उन्नत खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो इसकी उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लोकस भैया,
3: हाँ रीन दीदी,
2: देखो अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएं डॉक्टर नेत्रपाल यादव, और अतनी निकी तिना से इनसे पूछें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो अति बढ़िया जानकारी दिवावे खातिर इनका दोनों जनन का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जैसे जानकारी के बाद अब हम कहन रहे ना कि कुछ फिर से मनोरंजन हुई, और हमें पंच भैया भी इंतजार करा कर रहे थे कि भाई जानकारी तो हो गए तो अब कुछ जो है अबे सुनवावा जाए। तो जो है देखो आज हम लेके आए हैं बहुत बढ़िया खिमटा अक्रम अंजाना भैया के स्वर में, यहाँ चाहनी के लय आईला तो आओ सुना जाएगा।

0: लवकुश भैया।
1: हाँ रेणु दीदी।
0: भाई हम तो सोच रहे हैं कि हम उस कोई पूछे कि हम का चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कबो कबो पूछू लीन जाते हम यही खुश हो जाते। और हमका लगा था तुम्हों से कहा जात हुई, जब कहूँ जात हुई हो कि भाई हमरे खातिर ई लिए आयो वो लिए आयो।
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना। तो खैर चलो, ये तो घर द्वार की बातें आए, ये सब तो हुन करत है, लेकिन अब जो जरूरी बात है कि हमका सबका बाजार के भावों पता रहे चाहिए, तबे तो सामान ला पौबे घर में। तो आज देखो हमरे लगे चार जो है मंडी के बाजार भाव थोक में यहाँ उपलब्ध है, वो है लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या। तो सबसे पहले हम बात करी थे गेहूं दड़ा जो लखनऊ मंडी में रहा 2590 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर 2585 रुपया, गोंडा 2543 रुपया और अयोध्या 2560 रुपया। चावल कामन वाला बात करी जाए तो लखनऊ मंडी में रहे 3520 रुपया, कानपुर 3500 रुपया, गोंडा 3025 रुपया और अयोध्या 3080 रुपया। चना छोटा वाला लखनऊ मंडी में रहा 6660 रुपया, कानपुर 6350 रुपया, गोंडा 6750 रुपया और अयोध्या में रहा 6450 रुपया। मटर सफ़ेद वाली लखनऊ मंडी में रही 4470 रुपया, कानपुर में रही 4560 रुपया, गोंडा 4225 रुपया और अयोध्या में रही 4320 रुपया प्रति क्विंटल। आलू सफ़ेद वाला लखनऊ मंडी में रहा 870 रुपया, कानपुर 770 रुपया, गोंडा 950 रुपया, अयोध्या 880 रुपया प्रति क्विंटल। प्याज लाल वाला लखनऊ मंडी में रहा 1450 रुपया, कानपुर 1310 रुपया, गोंडा 1600 रुपया और अयोध्या में रहा 1400 रुपया प्रति क्विंटल। बैगन लखनऊ मंडी में रहा 1800 रुपया, कानपुर 1640 रुपया और गोंडा रहा 2400 रुपया और अयोध्या में यहाँ 2000 रुपया प्रति क्विंटल। और यही तीन अगर बात करी जाए टमाटर की तो लखनऊ मंडी में रहा 2890 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर 2840, गोंडा 2700 रुपया और अयोध्या में रहा 2500 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो रहे भैया बाजार भाव की बात। और अब बात कर ली जाए अपने मौसम के लिए, तो अगर मौसम के लिए जानकारी आपके लगे हो तो वह अपने पंच भैया का बता दी जाए।
1: दीदी, भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्षा पूर्वानुमान आज से 20

0: जून तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। 21 एवं 22 जून का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और मौसम संबंधी चेतावनी की बात करें तो पश्चिमी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं लू चले की संभावना है।
1: अच्छा, तो ये तो रही बात भाई मौसम के लिए। अब पहले बता दें जाए कि अपने कल के कार्यक्रम में का रही, फिर आगे के लिए बात कर बैठे। तो कल देखो अपने लोकायतन कार्यक्रम में रही वार्ता परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव। वार्ताकार हुई हैं डॉक्टर सौरभ राय भैया। खेती किसानी में हुई किसान डायरी जो उनकी कृषि समाचार पर आधारित हुई। आलेख एवं वाचन नवेश सिकोह जी के हुई है। संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय जी के हुई। तो ये तो रहे भाई कल अपने जो है कार्यक्रम में यहाँ का चीजें रही हैं। और उससे पहले भैया एक चीज और बता दो तब हम आगे के लिए बात करवाए, नहीं तो भुला जाए थे। वो ये है कि हमारे कार्यक्रम कस लागत है हमारे पंच भैया बहनिन का यहाँ, तो के लिए हमका वो पाती लिख सकत हैं, हमका मेल कर सकत हैं, तो ई के लिए लेकिन उनका पता हमारे नोट करेक पड़ी, तो कॉपी पेन उठा लें हमारे पंच भैया और आप जो है पता बता दो पाती लिखा
0: तो पता अपने पंच भैया नोट कर लें। कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन है 22601। और अपने पंच भैया ईमेल आईडी भी लिख पर जोन है अपन
1: मेल कर सकते
0: मेल
1: हैं,
0: कर सकते हैं, तो
1: उनके लिए ईमेल आईडी बता दो।
0: ईमेल आईडी नोट कर लिए farmandhomeairlko@gmail.com farmandhomeairlko@gmail.com।
1: तो भैया ई पर हमका जो पंच भैया मेल करा चाहे तो मेलो कर सकते हैं और पता लिखी है तो ऊपर हमका पातियों भेज सकते हैं। तो भैया और रही बात कि अब हमारे जो हरहा गोरु घर पर खड़े हैं द्वारे, तो उनका भी हम इनका ध्यान रखे है, उनका जो है ध्यान ही गर्मी में यहाँ बहुत अच्छे से रखे है और बरखा बूंदी शुरू होने वाली है, तो उनके भी हमका तैयारी पहले से करे है कि उनका हम कोनी तिना स्वच्छ और सुरक्षित रख सकें।
0: बिल्कुल दीदी, देखें आप जब हरहा गोरु की बात करें तो हम एक चीज़ कहा गैयन के लिए तो बिल्कुल ध्यान दिए, चूंकि गैये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके रहे के लिए उनका बरखा बूंदी से बचाव के लिए उनका उनके लिए जरूर व्यवस्था करें।
1: बिल्कुल भैया जरूर व्यवस्था करें। और अब हमरे जोन हरहा गोरु बंधे हैं हम पंचे उनकी व्यवस्था देखी चले, तो अपने पंच भैया से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद, हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका

0: और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉ. शैलेंद्र तोमर ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था, प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया, समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता।

ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का 6वां चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। लीजिए अब सुनिए खेलों की गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत।

नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत का आज का कार्यक्रम लेकर मैं आपका दोस्त हाजिर हूं। आज के इस अंक में आप सुनेंगे फुटबॉल के महाकुंभ का रोमांचक सफर और अभी चल रहे फीफा 2026 के बारे में। इसमें स्वर दिया है रमनप्रीत सिंह ने और आलेख है आसिफ इकबाल का। आइए सुनते हैं आज का विशेष कार्यक्रम।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, मेक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ 3 देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप 2 टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है। डियोगो माराडोना, साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हरा कर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या

कपड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: This time for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: अभी आप सुन रहे थे फुटबॉल का महाकुंभ फीफा 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम। खेल जगत के अगले अंक में हम पुनः हाजिर होंगे कुछ रोमांचक लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त रमनप्रीत सिंह को इजाजत दें। नमस्कार।
1: अभी आप खेलों की गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत सुन रहे थे। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की मिलीजुली आवाजों में ये गीत। समीर ने इस गीत को लिखा है, जिसकी तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है सड़क।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है ताल फिल्म से। इस गीत को आनंद बख्शी साहब ने लिखा है और इसे संगीत से सवारा है AR रहमान ने। इस गीत में जो आवाज़ आप सुनेंगे वो है अनुराधा श्रीराम, सुजाता मोहन, सोनू निगम और खुद AR रहमान की।

अनुराधा श्रीराम, सुजाता मोहन, सोनू निगम और एआर रहमान के गाए ताल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता साहित्य का जीवन संतुलन में योगदान। वार्ताकार हैं डॉक्टर करुणा शंकर दुबे।
1: साहित्य मनुष्य जीवन के विविध चैतन्य आयामों का प्रत्युत्तर है। साहित्य के आधार पर मनुष्य नैतिक अथवा आदर्श मौलिक मूल्यों की स्थापना करता है। साहित्य का मूलभूत विषय जीवन मूल्य है, जो मानव संवेदनाओं को महत्व देता है। कालखंड से चली आ रही परंपरागत व्यवस्था समाज की उपज होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इसलिए परंपरा में जीवन मूल्य प्रमाणित होते रहते हैं। मानव जीवन की आवश्यकता, आकांक्षा, अभिरुचि परंपरा को बदलकर नहीं प्राप्त किए जा सकते। सद्भावना, करुणा, मित्रता, परोपकार, प्रेम।

जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, लोगों को प्रेरित करने का कार्य भी करता है। यह सत्य के सुखद परिणामों को रेखांकित करता है, असत्य का दुखद अंत कर सीख और शिक्षा प्रदान करता है। अच्छा साहित्य चरित्र निर्माण में सहायक होता है। साहित्य के मूलतः तीन विशेषताएं हैं, अतीत से प्रेरणा लेना, वर्तमान को चित्रित करने का कार्य करना और भविष्य का मार्गदर्शन कराता है। साहित्य मानव की आंतरिक विकृतियों और खूबियों को चिन्हित करता है। साहित्य का मूल तत्व सबका हित साधन है। मानव अपने मन में उठने वाले भावों को लेखनीबद्ध करके रचनात्मक ज्ञानवर्धक अभिव्यक्त रूप साहित्य प्रस्तुत करता है। साहित्य की पारदर्शिता समाज के नवनिर्माण में सहायक होती है। साहित्य समाज की उन्नति विकास की आधारशिला रखता है। एक प्रकार से साहित्य जीवन में सत्य को प्रकट करने वाले विचारों और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। जीवन मूल्यों पर आधारित साहित्य का जीवन दर्शन होता है, इसलिए परिवर्तनशीलता के कारण व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है। साहित्यकार समाज के मूल्यों को अपने साहित्य के अंतर्गत अंकित करता है और साहित्य उस समय के जीवन मूल्यों को धारण करता है, साथ ही नवीन मूल्यों से समाज को दिशा प्रदान करता है। साहित्य परंपरा से जुड़ा होने के कारण नई दिशा भी प्रदान करता है। साहित्य नैतिक मूल्यों से संघर्षरत रहता है और परंपरा को भी सहेजता रहता है। भारतीय साहित्य में न पूर्ण त्याग और न आत्मसात, यही वर्तमान की दशा है। साहित्य सामाजिक मूल्यों को धारण करता हुआ नए जीवन मूल्यों को सृष्टि के मार्ग से गतिशील रहता है। इसलिए प्रत्येक युग में जीवन मूल्य तथा जीवन दर्शन से भिन्नता स्वाभाविक पाई जाती है। जीवन मूल्य पर साहित्य का जीवन दर्शन आधारित रहता है। जीवन परिवर्तनशीलता के कारण मनःस्थिति बदलती रहती है। साहित्यकार अपने साहित्य के अंतर्गत समाज के मूल्यों को रचता है। साहित्य तत्कालीन जीवन मूल्यों को धारण करता है, नवीन मूल्यों से समाज को दिशा देने का कार्य करता है, परंपरा से जुड़ा होने के कारण नई दिशा भी देता है। विज्ञान से विनाश भाषा आंदोलन की पृष्ठभूमि बदल जाती है। साहित्य की स्थिति भी बहुमुखी हो चली है। जीवन संतुलन डगमगाता चल रहा है। नए युग में नए और पुराने की टकराहट है। आधुनिक को स्वीकार किया जा रहा है। धार्मिक दार्शनिक और राजनीतिक गतिविधियों के मध्य मन मस्तिष्क सामंजस्य स्थापित करके सहज मार्ग खोजने में नवीन मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। पुराने संतों कबीर रहीम और तुलसी को समझने से अलग राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समन्वय और नए विचार, नए चिंतन, नए जीवन मूल्यों को जोड़ने से पूंजीवाद ने मानवीय मूल्यों को मानव से दूर किया है। मानवता का पाठ साहित्य और पाठशाला में पनपती है। आज नैतिक जिम्मेदारी से परे गुरु की गरिमा घर घर पर्ची बांटते रोजमर्रा के अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। साहित्य काठ की पट्टी पर धूल के गर्त का आवरण ओढ़े अपना दम तोड़ती है। शिक्षक दूसरों के दरवाजे पर माता पिता और बच्चों की संख्या जोड़ रहा है। मूल्य विहीन समाज में मानव जीवन स्थायी नहीं बनता है। साहित्य के आयाम दशा और दिशा का बोध कराते हैं। किसी भी काल के साहित्य से उस समय की परिस्थितियों के रहन सहन जीवन यापन का पता चलता है। साहित्य समाज से प्रभावित भी होता है। शरीर और आत्मा के संबंध की ही भांति साहित्य और समाज का संबंध होता है। समाज नष्ट हो सकता है, किंतु साहित्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। साहित्य का लक्ष्य मनोरंजन और उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य ज्ञान राशि का कोष वर्धन होना चाहिए। वैदिक कालीन साहित्य और रामायण महाभारत के साथ ही नाटक साहित्य समृद्ध ज्ञान परंपरा के वाहक रहे हैं। बोलियों के साहित्य तो शिक्षित और अशिक्षित समाज के लिए रहे हैं। कहावतों और कथाओं के मार्ग से राष्ट्रीय समृद्धि के मार्ग सुसज्जित हुए हैं। आज भारतीय साहित्य वैश्विक संपदा की धरोहर हैं और परंपरा सन्मार्ग की पथ प्रदर्शक हैं। मानव जीवन में क्या घटित हो रहा है, साहित्यकार अपने चिंतन विश्लेषण और अनुभव के आधार पर अपने शब्दों में लिख देता है। साहित्य सदैव जनमानस को सकारात्मक सोच तथा लोक कल्याण के कार्यों के लिए प्रेरणा दे रहा है। प्रत्येक देश का साहित्य अतीत और

0: वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्य करता है। साहित्य स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने की विचारधारा का पोषक है। भारतीय परिवेश विविध संस्कृति का देश है, जहां मार्मिक और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। भारत विविध संस्कृति का देश है। यहाँ की मूल समस्या असमानता, गरीबी और बेरोजगारी है। जनसंख्या बहुजाती और बहुभाषी होने एवं लोकतंत्र की व्यवस्था के अधीन संचरित है। विज्ञान, तकनीक और भाषा बोली के बीच शिक्षा के परिवर्तन से प्रभावित समाज और भावनात्मक मानक गरिमा की ऊंचाई पर पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहा है। उच्च शिक्षा पलायन को जन्म दे रही है। इसे साहित्य और शिक्षा की उपलब्धि या अवसर के सदुपयोग का अभाव कहा जाएगा। कम खाएं, गम खाएं, घर से न जाएं। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में नई युवा पीढ़ी को परिचित कराया। चिंता व्यक्त की, रचनात्मक सुधार की कामना की। देश की परतंत्रता से स्वतंत्रता तक का साहित्य इस बात का प्रमाण है। विचारधारा का सहज और सरल प्रयोग साहित्य में होता है। साहित्य भी विशिष्ट भाव से बनता है। राष्ट्रीयता का मूल संस्कृति ही होती है और आधार साहित्य बनता है। राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में भूगोल, इतिहास, संस्कृति की भाषा को साहित्य समृद्ध करता है। वर्तमान को कलात्मक और यथार्थ रूप में समाज के सम्मुख रखता है। सभ्यता भौतिक प्रगति इसे दर्शाती है। आंतरिक सभ्यता मानवता को तथा मानवीय मूल्यों को, आदर्शों को साहित्य ही दर्शाती है। साहित्य ने तत्काल पीड़ित के आंसू भी पोंछे हैं। वास्तव में तन मन की सोच साहित्य में है। जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। समाज समय से और भावनात्मक रूप से मानवता को साहित्य ही रेखांकित करता है। इसी कारण जीवन संतुलन में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर करुणा शंकर दुबे की वार्ता, साहित्य का जीवन संतुलन में योगदान। आवाज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलों का। पहले आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में प्रदीप राव की लिखी ये गज़ल।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलजार साहब की लिखी ये गजल भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

0: अभी आप भूपेंद्र सिंह की आवाज में गुलजार साहब का ये कलाम सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

अभी आपने आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ में ये गीत सुना वेलकम फिल्म से। चित्रपट से कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दाग द फायर फिल्म से। इस गाने को गाया है अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार सानू ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार राजेश रोशन।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम के गाए हम आपके हैं कौन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion.

0: एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका

0: के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून

0: को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI

0: Donald Trump during a dinner with French President Emmanuel Macron on the sidelines of the G7 summit in Versailles. Before signing the document, President Trump said the deal had not been easy to achieve. The signed agreement was later shared with Tehran and endorsed by President Pezeshkian. Ukraine struck a Moscow oil refinery overnight for the second time within a week, while additional targets were hit in Russia's Rostov region. Moscow Mayor Sergei Sobyanin confirmed the strike, saying several drones hit the Moscow oil refinery on the southeastern outskirts of the city. Russia's defense ministry said that 555 Ukrainian drones were intercepted and destroyed across the country. The Russian Transport Ministry said that flights from four Moscow airports were halted following the attack. Russia's state news agency said the attack on Moscow was one of the biggest this year. Meanwhile, in a social media post, Ukrainian President Volodymyr Zelensky described the attacks as a justified response to Russia's ongoing military actions. In sports news, India's Meenakshi Hooda advanced to the quarterfinals of the World Boxing Cup 2026 in Kuyang, China today. Meenakshi secured a convincing 5-0 victory over Poland's Natalia Kuczewska in the women's 51kg round of 16 bout. Four Indian boxers will be in quarterfinal tomorrow. In the women's 51kg category, Meenakshi will face Kazakhstan Alua Balkibekova, while Sani will take on Poland's Kinga Krovaka in the women's 65kg division. Prachi is set to meet Chinese Taipei's Chengyu Yang in the women's 57kg quarterfinals. In the men's competition, Nikhil will face Azerbaijan's Amin Mamadzadeh in the 55kg category. In hockey, India defeated Uruguay 3-2 in their third Pool A match of FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवरटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। और मीनाक्षी हुडा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। कल चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवरटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए। उन्होंने आलमी इख्तिराआत कारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं।

ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला एलएनजी जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज़ को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इंटरेक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल

0: निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नतालिया को 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चैंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवर टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आप सुनिए पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। समय हुआ है रात के 9:30 और ये समय होता है आपके अपनी पसंद के फिल्मी नगमों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आज इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका रेडियो साथी पंकज शुक्ला। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप अपनी फिल्मी गीतों की फरमाइश हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। कार्यक्रम में पहले आपको बता दें अपनी ईमेल आईडी जिस पर आप हमें अपनी फरमाइश भेजेंगे। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। इसके साथ साथ आप अपनी फरमाइश हमें खत के द्वारा भी भेज सकते हैं। खत भेजने के लिए पता हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम में आपकी फरमाइशों का सिलसिला। आज के कार्यक्रम की ये पहली फरमाइश की मेल हमें मिली है ग्राम पहाड़ीपुर जिला रायबरेली से, और ये फरमाइश भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्या रामसागर साहू रसूलपुर वाले, रामचरण प्रजापति। आप सब सुनना चाह रहे हैं फिल्म चरणों की सौगंध का ये गीत किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ में। आपको ये गीत सुनवाऊं उसके पहले आपको बता दूं कि इसी गाने को सुनना चाहे हैं पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से, शिवा गोप प्रेम गोप कपिल गोप शिवांश संगीता लिपि दीपाली और ज्योति गोप ने, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन संदीप जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा और स्प्रीत शर्मा ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत चरणों की सौगंध फिल्म से।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, पसंद आप सब श्रोताओं की। ग्राम ललहुआ मितौली जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव।

सुधा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। इसी गाने के लिए छत्रपति संभाजी नगर से हमें मेल भेजी है राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में राज फिल्म का गीत। इस गीत को सुनना चाहा है कांकेर संबलपुर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव जी ने। और इसी गाने के लिए एक मेल हमें मिली है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की सांडी जनपद हरदोई से। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में है, राज फिल्म से।

अभी आप मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में राज फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। आपकी पसंद कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है सौगंध फिल्म के एक गाने के लिए, जिसे गाए हैं मोहम्मद अजीज के साथ अनुराधा पौडवाल ने।

फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। इसी गाने के लिए मेल हमें की है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत सौगंध फिल्म से।

आपकी पसंद कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए उत्सव फिल्म का गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी ने, ग्राम जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसर जी ने, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेम लाल वर्मा, वेदिका वंश निकेश धर्मेंद्र मेघा नंदिनी हर्षिता और ममता बाई वर्मा जी ने, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा नीरज शिवम धीरज चिंता वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत उत्सव फिल्म से।

श्रोताओं, घड़ी इशारा कर रही है कि आपकी पसंद कार्यक्रम का आज का सफ़र यहीं समाप्त किया जाए। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, अपनी फरमाइश के खत भेजने के लिए हमारा पता, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001। इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी रोज़ होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और दीजिए अपने रेडियो साथी पंकज शुक्ला को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

इस समय आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को बुढ़ा मिल गया फिल्म में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, जिसे संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना इम्तिहान फिल्म में। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत। इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

इस समय आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को मेरे जीवन साथी फिल्म में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का राग पूरिया कल्याण में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत की है कुमार लाल मिश्रा ने।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का राग पूरिया कल्याण में सितार वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत की थी कुमार लाल मिश्रा ने।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर और 24 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से

वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन

0: साइकिल में बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएमडीवाई को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की

0: बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो है एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।